मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 43 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है कि कल जो अधूरा रह गया उसे आज पूरा कर लिया जाए, जो अच्छा मिला उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद भी कर लिया जाए और साथ ही आने वाले दिन को विश्वास और सकारात्मकता से शुरू किया जाए। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का नमस्ते लखनऊ के आज के सफर में। दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। प्रातः के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा

0: कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सभी श्रोताओं का स्वागत है नमस्ते लखनऊ में। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता सुनिए। विषय है समन्वित मत्स्य पालन और मत्स्य तालाब की देखभाल। इस विषय पर सुनील कुमार सिंह से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के सह व्यवसाय के रूप में जहां मत्स्य पालन से आप जुड़े हैं, वहां समन्वित मत्स्य पालन कैसे करें और जो मत्स्य तालाब है उसकी देखभाल में क्या कुछ खास करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मत्स्य विशेषज्ञ एसके सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि ये समन्वित मत्स्य पालन है क्या?
3: नमस्कार किसान बंधुओं, समन्वित मत्स्य पालन का आशय ये है कि हम मत्स्य पालन के खेती के साथ साथ अन्य और भी जो हमारे उपयोगी और लाभदायक गतिविधियां हैं कृषि से संबंधित, उसे हम एक जगह ही इकट्ठा करते हैं और उससे एक दूसरे के साथ सहवर्ती लाभदायी प्रणाली में उसको परिवर्तित करते हैं और इसी को ही समन्वित मत्स्य पालन कहते हैं।
2: जैसे
3: मछली के साथ आप या मुर्गी पालन का कार्य करते हैं, या आप उसके साथ बत्तख पालन का साथ करते हैं, या आप औद्यानिक जो हमारी फसलें हैं उनको कर सकते हैं, जैसे कि हमारे धान के साथ भी मछली का काम हो सकता है, साथ ही साथ
2: बागवानी
3: का भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जैसे बागवानी में आप जो है बंधों पर अलग से जैसे अमरूद की या शहतूत की या केले की खेती भी कर सकते हैं, मैंने बंधे के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पशुपालन के जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी तालाब में हम डाल करके हमारी लागत को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मछली का भी लाभदायक मछली स्थिति उत्पन्न होती है, ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन बढ़ता है, साथ ही और अन्य गतिविधियों को भी एक सुगमता प्राप्त होती है।
2: यानी मत्स्य पालन के साथ साथ कोई और ऐसा व्यवसाय हो समन्वित रूप से ताकि वो आपके लिए लाभकारी हो, ये समन्वित मत्स्य पालन
3: है। जी, अगर किसी खेत में पानी लगा हुआ है और पानी में अगर हम कुछ मछलियों के बीज को डाल देते हैं
2: जी,
3: तो जो मछली जो उसके जो खेत में जो कीड़े हैं मकोड़े हैं उनको भी खाती है, और साथ ही साथ जो मछलियों के हलचल से जो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुलती है उसे धान की फसल को फायदा होता है। इसी प्रकार से अन्य भी गतिविधियां, जैसे हम अगर कोई तालाब में उर्वरीकरण करते हैं, खाद का काम करते हैं, तो हमें ज्यादा मात्रा में हमें डालना पड़ता है, तो हम अगर हमारे जानवरों की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं गोबर की खाद यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से तालाब की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है और उसके साथ साथ जो हमारी खाद पर जो लागत आती है वो भी कम हो जाती है।
2: यानी मत्स्य तालाब से जो जुड़ी गतिविधियां हैं उसको और उत्पादक बनाना है।
3: जी,
2: तो अगर डेयरी का काम शुरू करना चाहें बंधों पर, तो
3: डेयरी का काम अगर करना चाहें तो जैसे बंधे पर तो आप डेयरी का कार्य नहीं हो सकता, उसके समीपवर्ती जगह पर अगर हम डेयरी का काम करते हैं तो गोबर की खाद जो हमें प्राप्त होती है डेयरी के कार्यक्रम से, उस गोबर की खाद को हम तालाब में समय समय पर डालते हैं। जैसे गोबर की खाद से हमारा जो उनके सड़ने से हमारे जो जू प्लैंकटॉन्स और फाइटो प्लैंकटॉन्स की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है, जो मछली का प्राकृतिक आहार है। और इसके साथ ही साथ यदि हम मुर्गी पालन या बत्तख पालन का काम करते हैं तो एक अध्ययन ये हुआ है कि उससे हमारी जो खेती है खादीकरण का कार्य होता है, उस पर जो खर्च आता है और जो हमारे उसमें अलग से हमको उर्वरा शक्ति तालाब के बनाने के लिए अन्य रासायनिक खाद इसका इस्तेमाल करना पड़ता है वो कम हो जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कुछ खास सावधानियां भी होंगी समन्वित मत्स्य पालन की?
3: जी हाँ, मत्स्य पालन में सबसे पहली बात तो ये कि तालाब के जो बंधे हैं वो हमारे मजबूत होने चाहिए, बाहर से कोई अवांछित मछलियों का का प्रवेश नहीं होना चाहिए। बंधों के किनारे किनारे पर जो हमको जो फसलें हमारी और भी जैसे हो सकता है, जैसे बंधे पर हेज लगा सकते हैं या हम अरहर का भी हेज लगा सकते हैं या करौंदा लगा सकते हैं, तो इससे एक नेचुरल हेज बनता है जिससे हमारे जो पशु जो बाहर से आ सकते हैं वो भी हमारा बंधा

0: नहीं तोड़ते, बच जाता है नष्ट होने से।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे। समन्वित मत्स्य पालन और मत्स्य तालाब की सामयिक देखभाल के बारे में अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450063183, 94563-18-3, 9450063183। अभी मछलियों की जो मात्रा है कि ग्रोथ को हमें मेंटेन करने के लिए पूरक आहार देने के साथ साथ हमें उनकी रोग न लगने पाए इसकी रोकथाम भी हमें आवश्यक, उसको निरीक्षण करना चाहिए। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या अमोनिया की मात्रा कितनी है, इसका भी हमें किट के द्वारा परीक्षण कर लेना चाहिए।
1: एसके सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और समन्वित मत्स्य पालन है क्या, इसको किसान भाई कैसे करें और मत्स्य तालाब की सामयिक देखभाल कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समन्वित मत्स्य पालन और मत्स्य तालाब की देखभाल, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं की आज की जानकारी पसंद आई होगी। और श्रोताओं, इसी के साथ अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ में, आइए अब चलते हैं आज के सुविचार की ओर। आज का विषय है आत्मविश्वास।
3: दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है। सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्मविश्वास की होती है। आत्मविश्वास के बिना आप किसी भी दशा में सफल जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास का सीधा मतलब है खुद पर विश्वास करना। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आत्मविश्वास में सफलता का वो जादू छिपा हुआ है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं उस व्यक्ति को पराजित नहीं मानता हूँ जिसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि पराजित मैं ऐसे व्यक्ति को मानता हूँ जिसने अपना आत्मविश्वास खोकर अपने को हारा मान लिया है। डर, शंका, निराशा एवं नकारात्मक विचार आत्मविश्वास मजबूत होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आपके मन में अपनी योग्यता अथवा क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो उसे तत्काल निकाल दें। आज के दौर में हमारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, विफलताओं का भी आलिंगन करना पड़ सकता है। यदि आप पूरी तरह से निराश और हताश हो जाएं तो आपका आत्मविश्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करनी होगी जो आपके साथ रहकर आपके अंदर नकारात्मक विचार पैदा करते हों। दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जिनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और उन्हें तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर जिंदगी की तमाम विपरीत परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। जिस कार्य को लगातार समर्पण एवं निष्ठा के साथ करते रहने से आत्मविश्वास स्वयं ही जागृत हो जाता है। आपको अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में किसी भी प्रकार की शंका, डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखते हुए अपने काम में तब तक डटे रहें जब तक वह पूरा ना हो जाए। आपको अपनी क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका कोई मित्र या परिजन आपकी क्षमताओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करता है तो उनके शब्दों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। यदि आप उनके कहे हुए शब्दों एवं टीका टिप्पणी पर ध्यान देंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तथा आपके अंदर स्वयं के प्रति हीन भावना पैदा हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। सदैव ये मानकर चलें कि सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। सफलता का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। यदि आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है तो अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। ये कार्य कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। आत्मविश्वास रूपी जलधारा के सामने बाधाओं की कठिन से कठिन चट्टानें भी चकनाचूर हो जाया करती हैं। यदि आप अपना आत्मविश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं खोते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह सारा जहां भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए और आप स्वयं को अकेला ही महसूस करें तो उस समय भी आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। यदि आप

0: अपने स्वर्णिम भविष्य के प्रति पूरे आत्मविश्वास के साथ आशान्वित हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बेहतर जिंदगी जीने तथा सफलतियों की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दशा में आत्मविश्वास बनाए रखें।
1: आत्मविश्वास, अभी आप सुन रहे थे आज का ये सुविचार। वाचन स्वर था प्रेमचंद्र कौशल का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो नमस्ते लखनऊ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं कि जब मन बेचैन हो और जीवन की राहें कठिन लगने लगे, तब एक ही नाम है जो भीतर से शक्ति भर देता है, भगवान भोलेनाथ का नाम। जी हाँ, महादेव का नाम स्मरण करते ही लगता है जैसे सारा बोझ ही उतर गया हो। तो आइए हम भी इस भजन के साथ करते हैं आज की आराधना का आरंभ और नतमस्तक हो जाते हैं भोलेनाथ के चरणों में।

जय गंगाधर, जय शिव शंकर। श्रोताओं, भगवान श्री राम का मन और उनको अपने हृदय में बसा लेना, जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना, जीवन को सफल बनाने जैसा है। इससे जीवन में शांति और विश्वास का संचार होता है। तो आइए, बिना देर किए हम भी चलें भगवान श्री राम के चरणों में और उन्हें अपने हृदय के मन मंदिर में बसा लें।

भगवान श्री राम सबका कल्याण करे। श्रोताओं, संकटों को हरने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण ही मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। और ये भी सत्य है, जहाँ प्रभु श्री राम का नाम है वहाँ उनके अनन्य सेवक हनुमान जी तो उपलब्ध होंगे ही। तो आइए बिना देर किए चलते हैं हनुमान जी के चरण में और सुनते हैं ये भक्तिमय पावन भजन।

हनुमान जी सभी भक्तों का कल्याण करें। श्रोताओं, प्रभु का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो आइए राम नाम की इस पावन भावना के साथ भक्ति की सुंदर कड़ी को आगे बढ़ाते हैं।

0: doa.
1: श्रोताओं, कुंभा की आराधना में

श्रोताओं, ये सत्य है कि ईश्वर निराकार है, वो हर कण में विद्यमान है और उनकी भक्ति किसी रूप या नाम की सीमा में नहीं बंधती। इसलिए सच्चे हृदय से उनकी आराधना कीजिए। सुबह सवेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 273। आज का प्रसंग है सुग्रीव की विस्मृति से श्री राम का क्षोभ, कुपित लक्ष्मण का होना और बाली पुत्र अंगद की क्षमा याचना का प्रसंग।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बाली पुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और श्रीकांत परगावकर एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बता रही है, आइए सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो वर्षों से भारतीय आहार प्रणाली का हिस्सा रहा है, लेकिन अब दुनिया भी इसके गुणों को पहचान रही है। ये है ताल मखाना, जिसे आम भाषा में सिर्फ मखाना भी कहा जाता है। इसकी जड़ें आयुर्वेद में बेहद गहरी हैं। ये न केवल उपवास में उपयोग किया जाता है बल्कि सेहत के लिए भी किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। ये स्वाद, पोषण और सेहत का ऐसा संगम है जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। ताल मखाना असल में कमल के बीज होते हैं जो तालाबों और जलाशयों में उगते हैं। ये सफेद, हल्के और फूले हुए होते हैं जो दिखने में बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे लगते हैं, लेकिन इनके गुण कहीं अधिक होते हैं। भारतीय घरों में इसे खास तौर पर उपवास के दौरान खाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा आहार है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये हल्का होने के बावजूद बेहद पौष्टिक होता है और यही वजह है कि इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर पोषण की बात करें तो मखाने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो सेहतमंद और लो कैलोरी स्नैकिंग की तलाश में रहते हैं। ये वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। खासकर जो लोग जिम जाते हैं या अपने आहार में हाई प्रोटीन डाइट को शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए मखाना एक बेहतरीन विकल्प है। मखाना पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे अनावश्यक भूख नहीं लगती और बार बार खाने की आदत को कम करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि इसे व्रत में खाने की परंपरा रही है, क्योंकि ये शरीर को हल्का रखते हुए भी ऊर्जा बनाए रखता है। दिल के स्वास्थ्य के लिए भी मखाना किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित बनाए रखते हैं और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये रक्त संचार को सुचारू बनाए रखता है और हृदय की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। मखाना हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की ताकत कम होने लगती है और ऐसे में मखाना कैल्शियम की प्राकृतिक खुराक के रूप में काम करता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को इसका सेवन नियमित रूप से करने की सलाह दी जाती है। अगर त्वचा और बालों की बात करें तो मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स त्वचा को निखारने और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है जिससे त्वचा में प्राकृतिक चमक बनी रहती है। बालों के लिए भी ये लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन और खनिज बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं। महिलाओं के लिए भी मखाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन पोषक आहार है, क्योंकि ये फोलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है जो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान मखाना खाने से शरीर में होने वाली कमजोरी और थकान को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। अब सवाल ये उठता है कि मखाने को अपने आहार में कैसे शामिल किया जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है इसे भून कर खाना। हल्की आंच पर देसी घी में भून कर इसे नमक और काली मिर्च के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसे दूध में उबालकर खीर के रूप में भी खाया जाता है, जो पोषण के साथ साथ स्वाद का भी बेहतरीन मेल है। कुछ लोग इसे सब्जी में डालते हैं या फिर सूखे मेवों के साथ मिलाकर एक हेल्दी मिश्रण तैयार करते हैं। हालांकि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है और यही बात मखाने पर भी लागू होती है। इसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक फाइबर युक्त तो होता है और कुछ लोगों को ये अधिक मात्रा में खाने से पेट भारी लग सकता है। श्रोताओं आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

पोषक तत्वों से भरपूर ताल मखाना। स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से इस विषय पर जानकारी। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी अत्यंत लाभदायी लगी होगी। इसी के साथ अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाअत फरमाइएगा तकरीर हसीने इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रर होंगे डॉक्टर शयारुल्लाह खां। साथ ही इसी कार्यक्रम में हैदर अली से सुनिएगा नातिया कलाम। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे नीलम पाठक के गाए अवधी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। श्रोताओं आज मंगलवार है और आज सुबह कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा प्रातः 7:31 पर। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज अंजू निगम से यात्रा संस्मरण सुनिएगा लेह पहाड़ों की मिट्टी का सौंदर्य। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता तिलहनी फसलों में कीट रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगी रिंकी कुमारी चौहान और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा साइबर सुरक्षा और ग्रामीण जन जागरण विषय पर सुधा द्विवेदी की वार्ता। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज खरीफ फसलों में पोषक तत्व कमी के लक्षण और उपचार इस विषय पर जसवीर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रमेश चंद्र तिवारी की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा जीवन में उतारना ही ज्ञान का मूल्य है। रात्रि 8:10 से आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा रश्मि त्रिपाठी की गाए गजलें। हेलो मेरी पसंद, श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम में समय होगा रात्रि 9:30। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति में सुनिएगा आज कार्यक्रम खेल दर्पण। आपको समय बता दें रात्रि 10:00 से। और श्रोताओं 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा शरद कुमार का शहनाई वादन। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडिया वेव 401.6 अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में। दोस्तों, आज की बातचीत एक ऐसे चीज पर, एक ऐसे विषय पर जो हमारे आसपास होते हुए भी अक्सर हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही है। क्यों गायब होती जा रही है, क्या है ये चीज, यही तो बात है आज की विविधा की। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कभी हम बहुत चुपचाप रहा करते थे, शांत रहा करते थे, अपने जीवन के बारे में सोचते थे, समझते थे, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अब हम बहुत कुछ बोल देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि मौन हमारी जिंदगी से अब गायब होता जा रहा है? जरा सोचकर देखिए, दिन भर हम कितनी आवाजों के बीच रहते हैं, मोबाइल की घंटियां, संदेशों की सूचनाएं, टीवी, लोगों की बातचीत और कई बार तो सड़क का शोर। लेकिन इन सबके बीच क्या हमें कभी अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है? शायद नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमें थोड़ी देर चुप होना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। वैसे एक बात आपको बताऊं कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि कभी मौन धैर्य है, कभी संवेदना है, कभी आत्मचिंतन और कभी बिना शब्दों के किसी को समझ लेने का नाम भी मौन है। दोस्तों, कई बार किसी परेशान व्यक्ति के सामने बहुत सी सलाह देने के बजाय उसके पास चुपचाप बैठ जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी मदद होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी बात कह देना ही जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जीवन में सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब हम शांत होते हैं तभी हम सामने वाले की बात को सही मायने में समझ पाते हैं। वास्तव में मौन हमें एक खूबसूरत चीज सिखाता है, पता है क्या? सोचकर बोलना। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में कहे गए कुछ शब्द रिश्तों में ऐसी दूरी पैदा कर देते हैं जिससे बाद में बहुत कोशिशों के बाद भी मिटाना मुश्किल होता है। इसीलिए कभी कभी जवाब देने से पहले कुछ पल रुक जाना ही समझदारी होती है। इससे अपनापन तो बना रहता है, रिश्ते भी बचे रहते हैं। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो मौन केवल न बोलने की स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर भी है। हमारी भारतीय परंपरा में भी ध्यान, साधना और प्रार्थना के साथ मौन का विशेष महत्व रहा है। लेकिन इसका ये अर्थ तो कतई नहीं कि जहां बोलना जरूरी हो वहां भी चुप रहा जाए। अन्याय के सामने चुप रहना या अपने किसी करीबी से केवल अहंकार के कारण ही बात ना करना अच्छा मौन नहीं है। सही समय पर सही बात कहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने सुना ही होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी का ये दोहा हमें याद दिलाता है कि शब्दों की अपनी ताकत होती है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा ठहरना, शब्दों को तोलना और ये सोचना कि हमारी बात सामने वाले के मन पर क्या असर डालेगी, यही मौन का सबसे सुंदर संदेश है। दोस्तों, मौन तब खूबसूरत बना रहता है जब उसमें समझ और संवेदना हो। साथ ही कभी कभी ये भी करके देखिए कि सुबह सवेरे थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और पेड़ों की आवाज सुनिए, पक्षियों की चहचहाट सुनिए, चाय की चुस्की लीजिए और बस अपने साथ रहिए। शुरुआत में शायद ये

मन जो बेचैन है वो थोड़ा धीर गंभीर ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मौन खालीपन नहीं है, ये तो अपने आप से मिलने की एक जगह है। दोस्तों, रिश्तों की भी अपनी भाषा होती है। माँ बच्चे की आंखों से उसकी परेशानी समझ लेती है। पुराने दोस्तों के साथ कभी कभी बिना बोले बैठे रहना भी अपनापन देता है, क्योंकि वो आपके दिल की बात समझ लेते हैं। और देखिए ना, प्रकृति भी तो बिना शब्दों के हमें कितना कुछ सिखाती है ना? तो अगली बार जब जिंदगी बहुत शोर करने लगे, जब मन उलझ जाए या किसी बात का जवाब तुरंत देने का मन ना करे, तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मुझे अभी बोलना है या पहले सुनना है, क्योंकि अब आप मौन का महत्व जानते हैं। शायद उस छोटे से मौन में आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आप बहुत देर से बेतहाशा बाहर कहीं तलाश रहे थे। याद रखिए, मौन वो जगह है जहां मन स्वयं से मिलता है। तो अब अगली मुलाकात तक के लिए कुछ पल जरूर अपने लिए निकालिए, थोड़ा ठहरिए और कभी कभी मौन को भी सुनिए। दोस्तों, आज का ये सफर बस यहीं तक। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और आप इस बात पर अमल भी करेंगे। बस इसी विश्वास के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास

0: योजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों सहित देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में यह आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
1: ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
2: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में ही 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमरनायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बने अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत भी की।
4: उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने स्कूल हैं वहां पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे।

0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल लखनऊ में मतदाता साक्षरता क्लब और ईसीआई नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ और अमेठी सहित 20 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1,500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत की। वो आज लखनऊ और आसपास के जिलों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में कल 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
1: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र जारी करके स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। श्री पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों पर नजर रखी जाए, साथ ही अस्पतालों में आने वाले संभावित और संक्रमित मरीजों की स्थिति की नियमित निगरानी और आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में स्टेट रिव्यू मिशन SRM के दूसरे चरण के तहत गोरखपुर और वाराणसी मंडल की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मिशन निदेशक ने दोनों मंडलों की स्वास्थ्य इकाइयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1,500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और

0: महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना

0: हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: सुबह का एक खूबसूरत पड़ाव आपके साथ है। दिन की शुरुआत अगर दोस्तों मुस्कान के साथ हो, मन में थोड़ी सकारात्मकता हो और आसपास की दुनिया को देखने की एक नई नजर हो, तो शायद साधारण सी ये सुबह भी खास बन जाती है। इस खूबसूरत से शानदार सी सुबह में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, और आज के इस खूबसूरत बादलों से भरे सुबह में मेरे साथ है प्यारी सी मुस्कान लेकर
1: रेडियो दोस्त श्रद्धा। कीजिए स्वीकार दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: तो भाई सुबह की नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय, और कैसे हैं आप सब लोग। श्रद्धा, उम्मीद है हमारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन और आज तो हम लेकर के आते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है
1: आज सुबह। और पता है रिंकी, दिन इस समय और भी खूबसूरत है क्योंकि राखी का त्योहार सर पर है ना, हर कोई तैयारी में व्यस्त है, तो मतलब उत्साह है, उमंग है, उल्लास है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही है। और देखिए, आज 25 तारीख भी है। अब ये जो अगस्त का महीना है ना, ये भी अपने समाप्ति की ओर है और जाते जाते खूबसूरत सा संदेश भी देकर के जा रहे हैं। पता है क्या
1: क्या?
0: दूसरों के जीवन में खुशियां बांटिए, और इसीलिए शायद ही इतने ढेर सारे त्योहार लेकर के आ रहा है। और चारों तरफ प्रकृति में देखिए, हरियाली ही हरियाली है, मौसम खुशगवार हो गया है,
1: मतलब प्रसन्न है और हम सबका मन भी प्रसन्न है।
0: और आपको बताएं, आज बहुत ही आज से एक और खास चीज शुरू हो रही है। क्या है वो, अपने कार्यक्रम में श्रोताओं को आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, रक्षाबंधन की जो वाइब्स है
1: जी
0: वो
1: हाँ,
0: आनी शुरू हो चुकी है और सारी बहनें तो खास तौर से इंतजार कर रही हैं, और मुझे लगता है कि भाई भी रक्षाबंधन का उतनी ही बेसब्री से
1: तैयारियां भी बहुत जोरदार कर रही हैं। किसी को जाना है और बाजार में देखिए ना कितनी भीड़ है, राखी की सजी हुई दुकान ही ना मन को उत्साहित कर रही है।
0: बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि श्रद्धा बहुत ज्यादा जोर शोर से तैयारी कर रही है।
1: बिल्कुल
0: जी, करें भी क्यों ना, साल भर का त्योहार है। और जब रिश्तों की बात आती है ना, तो हमारे जीवन के कुछ खास रिश्ते, देखिए माता पिता का जो रिश्ता है वो तो सबसे खास है, लेकिन उसके बाद जो ये भाई बहन का रिश्ता,
1: हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा है ना, कहते थोड़ी नोक झोंक है, थोड़ा प्यार है, लेकिन भाई जो भाई बहन का प्यार है ना, कहते ना अच्छे भाई बहन किसी अच्छे दोस्त से भी कम नहीं होते हैं।
0: जी बिल्कुल, और जब साथ देने की बात आए तो सारी दुनिया एक तरफ और आपका भाई एक तरफ, और भाइयों के लिए उनकी बहन एक तरफ।
1: जी हाँ भाई, तो ये गीत गुनगुनाने का दिल करता है ना रिंकी?
0: जी हाँ, रक्षाबंधन का ये जो गीत है ना, इसके बिना शायद ये त्योहार अधूरा सा लगता है। तो आज हम भी अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ, और खूब सारी बातें भी करेंगे। आज से क्या शुरुआत हो रही है तो वो भी बताएंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन पहले रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर ले।
1: जी बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, रेशम की इस पतली सी डोरी से संसार बांधा है, खूबसूरत सा रिश्ता बंधा है, भाई और बहन का रिश्ता। फिल्म का नाम था रेशम की डोरी और आवाज थी इस गीत में सुमन कल्याणपुर की, संगीत था शंकर जयकिशन का और बोल लिखे थे इंदी वर ने। खूबसूरत सा नगमा, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा और आप भी एक बार मुस्कुराकर प्यार से अपने भाई और अपनी बहन की तरफ देख जरूर लीजिए। त्योहार भले ही कुछ दिनों के बाद है लेकिन
1: मेरी लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है रिंकी।
0: जी हाँ, श्रद्धा तैयारियां शुरू हो चुकी है और शायद श्रद्धा खूब सारी तैयारियां कर रही
1: बिल्कुल
0: है।
1: भाई, हम तो राखी की दुकानों पर राखियां खरीद भी ली हैं, है ना
0: जी। तो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो भी जरूर राखियां खरीद लें, क्योंकि देखिए श्रद्धा आगे निकल गई है, उन्होंने राखियां खरीद ली है।
1: ओ भाई रिंकी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को आज का सुविचार भी बता दिया जाए।
0: जी बिल्कुल, सुविचार के साथ दिन की शुरुआत होती है तो दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या है आज का सुविचार?
1: जी हाँ, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम किसी और के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बन सके।
0: वाह क्या बात कही आपने। और देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए आखिर क्या है, पैसा नहीं है तो मदद कैसे करें, समय नहीं है तो किसी के काम कैसे आ सकते हम, है ना। लेकिन देखिए, मदद हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती। किसी को रास्ता दिखा देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना
1: और किसी हाँ, के साथ मुस्कुरा लेना,
0: जी ये भी बहुत बड़ी मदद होती है। और सही सही जानकारियां दूसरों तक पहुंचा देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है।
1: तो रिंकी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और
0: देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, तो इसी भावना का एक बहुत सुंदर उदाहरण है नेत्रदान।
1: बिल्कुल।
0: और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज से यानी 25 अगस्त से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी।
1: तो इस विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
0: जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम नेत्रदान करें और लोगों की जिंदगी में उजाला लाएं। इस विषय पर मौका मिला बात करने का डॉक्टर राजेश सहाय जी से, तो वो बात क्या है, कैसे उन्होंने हमें जानकारी दी, हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
2: सिर्फ दुनिया को देखने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और भावनाओं को महसूस करने की कड़ी भी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी और की दुनिया को रोशन कर सके तो इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। आज यानी 25 अगस्त से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, एक ऐसा अवसर जो हमें नेत्रदान के प्रति जागरूक होने, इससे जुड़े भ्रम दूर करने और ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा एक संकल्प किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज
0: हमारे साथ है लखनऊ आई सेंटर से रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सहाय जी,
2: जिनसे हम जानेंगे कि नेत्रदान वास्तव में क्या है, कौन नेत्रदान कर सकता है, इससे जुड़े लोगों के मन में कौन कौन से सवाल हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सहाय का अपने कार्यक्रम में।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका।
2: सर, सबसे पहले सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि नेत्रदान क्या होता है और नेत्रदान के बाद क्या वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, नेत्रदान महादान है। ये तो आजकल हर मीडिया में इसके लिए जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में नेत्रदान बहुत कम होता है, तो नेत्रदान करना चाहिए। और इससे किसी को भी जिसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, उसमें दूसरे की कॉर्निया लगा करके उसको देखने लायक बनाया जा सकता है।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि नेत्रदान का मतलब आंखों को किसी दूसरे व्यक्ति में पूरी तरह से प्रत्यारोपित कर देना है, तो इस बारे में वास्तविकता क्या है? संक्षेप में हमारे श्रोता जानना जरूर चाहेंगे कि नेत्र का वो कौन सा भाग है जो डोनेट किया जा सकता है।
1: देखिए, जब भी हम लोग जाते हैं तो पूरी पूरी आंख निकालते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ सामने वाला जो पारदर्शी उसका जो स्ट्रक्चर है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं या कुछ लोग उसको पुतली भी बोलते हैं, तो सामने वाली जो पुतली है इस्तेमाल में वही आती है नेत्रदान के बाद।
2: क्या इससे जो नेत्रदान कर रहा है उस व्यक्ति के चेहरे में कोई विकृति आ जाती है?
1: कोई विकृति नहीं आती है, आंखें बंद ही जाती हैं। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिससे हम लोग फाइट कर रहे हैं, मैं तो अयोध्या से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पर लोगों में भ्रांति ये है कि अगर आपके किसी अंग का भंग है तो अगले जन्म में आप नॉर्मल पैदा नहीं होंगे, यू नो, इस तरह की भ्रांति है जो गलत धारणा है। तो मैंने वहां लोगों को सजेस्ट किया था कि नेत्रदान का रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया के अलावा मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे में भी बहुत ज्यादा इसका पब्लिसिटी होनी चाहिए।
2: तो सर, आपने भ्रांतियों की बात की, आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और आप देखते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, आपने कौन कौन सी भ्रांतियां देखी हैं नेत्रदान को लेकर के लोगों में आमतौर पर जो पाई जाती हैं?
1: जो मोस्ट प्रोहिबिटिव है वो यही है कि लोगों की अगले जन्म में क्या होगा। दूसरे उसके अलावा लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किसको बोलेंगे, कौन मेरा नेत्र निकालेगा, मैं तो मर चुका होऊंगा। तो इसको काफी सरकार ने आजकल ईज ऑफ कर दिया है कि जो भी नेक्स्ट टू किन उस समय वहां मौजूद है मृत्यु के बाद, वो कंसेंट दे सकता है। कोई भी जो लोग भी नेत्रदान से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है या कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो नेत्रदान से जुड़ी हुई हैं, जिनके पास आई बैंकिंग की सुविधा है, वो लोग आकर के आपके नेत्रदान ले सकते हैं।
2: ये जो नेत्रदान होता है तो क्या इसे कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे किसी ने चश्मा लगा रखा है या फिर किसी की आंखों में कोई समस्या है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही भाग डोनेट होता है, तो अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो क्या वो भी डोनेट कर सकता है?
1: हम लोग कभी भी डिस्करेज नहीं करते हैं, जो भी आई डोनेशन के लिए बुलाता है हम लोग उसकी डोनेशन लेते हैं, क्योंकि हमको इनकरेज करना है सभी लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन हो। उसके बाद हम लोग का अपना स्क्रीनिंग होता है, जिसमें हम लोग वो जो पार्ट यूजफुल पार्ट है उसका, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये किसके काम आ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब मृत व्यक्ति की आंख निकालते हैं तो हम एक डिटेल्ड उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कोई ऐसी बीमारी की वजह से तो नहीं हुई जो कि संक्रामक हो सकती है, या कोई कैंसर की वजह से तो नहीं हुई। हालांकि कैंसर भी प्योर ये नेगेटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई बीमारी हो जो कि दूसरे को जा सकती है, वैसे कॉर्निया को ट्रांसप्लांट नहीं करें। हालांकि निकालने में कोई परहेज नहीं है, जितना लोग कंसेंट देते हैं हम लोग सबसे निकालने की कोशिश करते हैं।
2: एक समय बहुत महत्वपूर्ण होता है नेत्रदान के लिए, तो कितना समय मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए उचित होता है?
1: जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है, लेकिन 6 घंटा आइडियल टाइम है। हम लोग चूंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ जल्दी ऑर्गन खराब होता है, टेम्परेट जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पर ज्यादा समय तक, लेकिन हम लोग के यहाँ 6 घंटा इज द आइडियल टाइम।
2: सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है और इससे किसी की जिंदगी में किस तरह बदलाव आता है?
1: देखिए, एक कॉर्निया से 2 या 3 लोग को फायदा हो सकता है, तो अगर आप 2 आंख निकालेंगे तो 4-5 लोगों को तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है।
2: और अगर किसी व्यक्ति ने नेत्रदान का संकल्प अभी नहीं लिया है और आज आपकी इतनी जागरूकता भरी बातों को सुनकर उसके मन में ये विचार आता है कि हमें नेत्रदान करना चाहिए, तो कहाँ कहाँ संपर्क किया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी?
1: एक चीज उनको ये ध्यान रखना है कि जिंदा आंख नहीं निकाली जाती है, मतलब कोई जिंदा मनुष्य अपनी आंख नहीं डोनेट कर सकता है, ये मरने के बाद ही लिया जाता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो भी है, हर इंस्टीट्यूशन में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आई बैंक्स हैं और कौन लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो नेत्र प्रत्यारोपण में अपना हिस्सा लगाते हैं, वन कैन फाइंड आउट। और यहाँ पर लखनऊ में मेडिकल कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि इस काम को करती हैं, बखूबी करती हैं।
2: तो अगर

0: किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ये संकल्प नहीं लिया है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोग ये डोनेशन के लिए जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और तुरंत फोन करें और बता दें कि हमारे ऐसी मृत्यु हुई है, हमको उनकी आंख डोनेट करनी है या कोई और ऑर्गन भी डोनेट करना है, तो वो लोग कॉल कर सकते हैं। और आंखों के लिए तो हम प्रतिबद्ध हैं, हम लोग कर ही सकते हैं, तुरंत जा करके निकालेंगे और काम करेंगे।
0: जी, तो नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बारे में बहुत चर्चा कीजिए, सबको बताइए, हर फोरम में बताइए, और मेरे जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मंदिरों मस्जिदों में जहां से भ्रांतियां फैलती हैं वहां पर इसका प्रमोशन कीजिए, उनके जो पुजारी हैं उनको समझाइए ताकि वो लोगों को सही बात बता सकें कि इससे कोई नुकसान नहीं, अगले जन्म अगर आप पैदा होते भी हैं तो आपकी नॉर्मल सब कुछ होंगी, आंखें और सब कुछ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आज इस अवसर पर इतनी जागरूकतापूर्ण बातें हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की, थैंक यू वेरी मच।
0: तो दोस्तों, हमारे साथ थे लखनऊ आई सेंटर से डॉक्टर राजेश सहाय जी, जो रेटिना स्पेशलिस्ट है, और आपने बहुत ही सरल तरीके से नेत्रदान से जुड़े हमारे कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिससे उम्मीद है हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे और आज की जो बातचीत रही उससे श्रोताओं के मन में मौजूद कई भ्रम भी दूर होंगे। एक बार फिर डॉक्टर सहाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ दोस्तों, नेत्रदान यानी अपने जाने के बाद भी किसी की दुनिया में उजाला छोड़ जाना।
3: बिल्कुल, जीवन में इससे खूबसूरत विरासत और क्या होगी कि हमारे बाद भी किसी की आंखों से दुनिया मुस्कुराती रहे।
2: जी हाँ, तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा।
3: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इतनी अच्छी जानकारी के बाद एक खूबसूरत सा गीत भी अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
2: जी बिल्कुल,

0: जी हाँ साथियों, अभी आपने सुना चिराग फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में, संगीत मदन मोहन का था और गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी।
1: जी हाँ दोस्तों, और क्या खूब बात कही गई है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और वाकई ये आंखें ही तो जरिया है इस खूबसूरती दुनिया को देखने का, निहारने का। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और जितना हो सके उतना लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। श्रद्धा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी जानकारियों का पिटारा आपने खोल लिया है, तो क्या जानकारियां देने जा रही हैं आज हमारे श्रोताओं को?
0: भाई रिंकी, कहते ना हर दिन बेहद खास होता है, इसलिए क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ दिवस मनाए जाते हैं जो दिन को और भी खूबसूरत बना देते हैं।
1: जी,
0: तो आज मनाया जाता है उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस। ये दिन स्पेन और ब्राजील से उरुग्वे की स्वतंत्रता की घोषणा की याद में मनाया जाता है।
1: जी, कुछ और जानकारी मेरे पास भी है। आप जानती है आज राष्ट्रीय उद्यान सेवा संस्थापक दिवस भी है।
0: जी,
1: 25 अगस्त 1916 को अमेरिका में नेशनल पार्क सर्विस की स्थापना हुई थी, जिसकी याद में ये खास दिन मनाया जाता है।
0: और इसका उद्देश्य है, मतलब जो देश की प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना।
1: चलिए अब इतिहास के पन्नों के बाद में आज जरा सा ये भी देख लेते हैं कि आज क्या कहता है इतिहास, क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन, है ना?
0: बिल्कुल, तो बता दें अपने श्रोता को, आज ही के दिन सन 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था।
1: जी, और खेलों की दुनिया में खास दिन था तो वहीं भारतीय सेना के लिए भी आज बहुत ही खास दिन माना जाता है, क्योंकि 25 अगस्त 1917 को भारतीय सेना के भारतीयकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। आपको बता दें कि उस समय सेना में सेवा दे रहे 7 भारतीयों को इन्फेंट्री और कैवलरी में किंग्स कमीशन दिया गया था। और बहुत ही खास बात यह है कि इसे भारतीयों के लिए सेना में उच्च स्तर के कमीशन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: और आज ही के दिन सन 1919 में लंदन और पेरिस के बीच पहली बार नियमित यात्री विमान सेवा शुरू हुई थी।
1: क्या बात है, यानी इतिहास हमें बार बार यही बताता है कि किसी भी उपलब्धि के पीछे अभ्यास, धैर्य और लगातार कोशिश रहती है, तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हर चीज से हमारा रिश्ता बहुत खास होता है, है ना?
0: बिल्कुल,
1: तो हमारा रिश्ता हमारे मौसम के साथ।
0: जी हाँ, इससे भी तो भाई मौसम की जानकारी बहुत मायने रखती है कि पता नहीं हम कब घर से निकले और पानी बरस जाए, तो भाई छाता छतरी साथ लेके हमें चलना है। और मौसम का हाल कैसा रहेगा जानते हैं सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी से।
2: हेलो, नमस्ते सर। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। जी सर बताइए, सर मौसम का हाल कैसा रहेगा?
3: जी मौसम की बात करें तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है और पिछले अच्छा का दौर जारी है, तो आज भी
2: जी सर
3: मौसम रहेगा, लेकिन आने वाले अगले 3-4 दिन तक मौसम खुशनुमा बना रहेगा और बारिश का सिलसिला
2: चलता रहेगा सर, अभी
3: ये बीच बीच में चलता रहेगा और कहीं ना कहीं हल्का सा जैसे बादलों की आवाजाही रहेगा, कहीं हल्का सा तो उसमें थोड़ी उमस वाली गर्मी पता है कि बाकी ओवरऑल अगर हम कहें तो मौसम काफी खुशनुमा बना रहेगा और बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिन तक बना रहेगा।
2: जी सर, सर बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका आभार सर।
3: ओके धन्यवाद
2: जी सर।
1: तो भाई श्रद्धा, ये तो थी मौसम की बात और जानकारी हम सबको मिल गई कि हमें कैसे घर से अपने निकलना है। तो
0: बिल्कुल
1: भाई, आप कहती ना कि भाई हम जा रहे हैं, खूब सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, थोड़ी सी बाकी हैं उसके लिए हम जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप जब घर से निकले रक्षाबंधन की तैयारियों के लिए तो खास ध्यान रखें मौसम का।
0: और इस मौसम में मतलब बरसात का तो ध्यान रखें, लेकिन जो उमस और गर्मी ने इससे भी अपना बचाव करें।
1: जी हाँ, क्योंकि देखिए रिश्ता तभी खूबसूरत है जब वो दिल से निभाया जाए, और आप जब स्वस्थ होते हैं तो हर त्योहार का आनंद ले सकते हैं। और जो ढेर सारी मिठाइयां है ना,
0: जी हाँ बिल्कुल, हम यही कहने जा रहे थे,
1: पता था हम यही कहने जा रहे हैं जी। तो जो है दिल का रिश्ता, जो ये बहुत खूबसूरत सा त्योहार अपने साथ लेकर के आता है, इसी को एक सेलिब्रेट करता खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा है और इसी खूबसूरत सोच के साथ शुरुआत कीजिए अपने दिन की। और आज जरा ये सोच करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि आज मैं किसके काम आ सकता हूँ या किसके काम आ सकती हूँ, किसी की मदद में कैसे कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करने में, या किसी परेशान दोस्त को फोन करने में, या किसी जरूरी जानकारी को आगे पहुंचाने में, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये हमारे दिन को और भी खूबसूरत बना देती हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज हमने नेत्रदान के बारे में जाना, और ये जानकारी अपने परिवार के साथ भी साझा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है।
1: तो और क्यों ना अब हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेनी चाहिए मुस्कुराती है।
0: जी बिल्कुल, अनुमति लेते हैं, लेकिन आपको आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अब रिंकी और श्रद्धा कहती हैं आपसे
1: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह, और श्रोताओं इसी के साथ अब सफर संपन्न होता है नमस्ते लखनऊ का भी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री

0: वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव

0: वीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के दो दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे खतरे के निशान से

0: ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: सौ 104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

नमस्ते बरेली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। और सुबह के 8:15 हो चुके हैं, तो ये सफर आज आपका मेरे साथ रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और उम्मीद है कि आपकी ये सुबह आपकी जिंदगी में नई उमंग और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी।

और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अपना शहर बरेली हर दिन विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं अपने नाथ नगरी के इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों की जो हमारी शहर की प्रगति, उपलब्धियां और बदलते स्वरूप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। और सबसे पहले सुनते हैं आपकी सुबह को खुशनुमा बनाता हुआ ये गाना।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और अब बात करते हैं हमारे बरेली के एयरपोर्ट विस्तार की और नई उड़ानों की तैयारी की। बिल्कुल सही सुना आपने, बरेली की हवाई कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रांग करने की दिशा में एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 28.55 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है और योजना के मुताबिक एयरपोर्ट पर एक साथ 7 विमानों

पार्किंग क्षमता भी विकसित की जाएगी। यानी आने वाले समय में बरेली से हवाई सफर के बहुत सारे विकल्प आपको मिलने वाले हैं और जो ये विस्तार है वो शहर के पर्यटन, कारोबार और रोजगार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर में आवासीय भूखंड के बढ़ते विस्तार को लेकर अब लोगों के लिए प्रक्रिया चल रही है और बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से इन योजनाओं में भूखंडों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो अगस्त में ही शुरू कर ली गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले समय में ये इलाके बरेली की नई शहरी तस्वीर का हिस्सा बन सकते हैं। अब बरेली पुराने शहर की सीमाओं से आगे बढ़कर नए आवासीय क्षेत्रों की ओर अपनी खास जगह बना रहा है।

तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और जो बात करें अगर बरेली की, तो ग्रेटर बरेली में भव्य कैनाल और फ्रंट पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जो यहां बरेली वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर बीजे एक भव्य कैनाल फ्रंट के रूप में इसे विकसित कर रहा है, साथ ही घूमने और सेहत के लिए खास पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और चारों तरफ हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता के साथ आकर्षक फव्वारे और लाइटिंग भी आपको मिलेगी। तो आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा शहर जो बरेली का है, वो काफी खूबसूरत पर्यटन स्थल बनने जा रहा है।

0: और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और ये बहुत ही खास दिन की बात कर रहे हैं, अगर कहें तो 25 से लेकर 28 अगस्त तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। और इस पखवाड़े का उद्देश्य उन लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना है जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कि पुतली की खराबी की वजह से नहीं देख सकते। ये तो हम सभी जानते हैं कि नेत्रदान महादान है, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां और झिझक है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम सभी बात करते हैं। और जैसे हम सभी जानते हैं कि इसे लेकर हम सभी नेत्रदान महादान को अपनी जिंदगी में अपनाएं और नेत्रदान महादान की तरह इसका इस्तेमाल करें, ताकि लोग जिनकी आंखें नहीं है वो भी इस खूबसूरत दुनिया को एक बार फिर से देख सके।
1: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी।

और इसमें आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि 26 अगस्त को पूरे देश में दुनिया में ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया जाएगा और ये वो मुकद्दस मौका है जो मानवता, शांति और भाईचारे का रास्ता दिखाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश की याद दिलाता है। और इस मुबारक दिन की रौनक शहर में दिखाई दे रही है। बरेली शहर में आला हजरत की इस सरजमी पर और इस मुकद्दस जश्न की तैयारियां हर तरफ शुरू होने लगी हैं। गलियां और बाजार नूर से सराबोर होने लगे हैं।

और जैसा कि हम आपको बता दें कि मौसम कैसा रहने वाला है ये भी हम सभी के लिए जानना जरूरी है। तो आज का दिन सबसे ज्यादा तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो सामान्य है। वहीं रात के अगर टेम्परेचर की बात करें तो मौसम में हल्की ठंडक घुलेगी और तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हवा में नमी या उमस की मात्रा काफी

अधिक 80 से 90% तक रहेगी और इस वजह से बारिश न होने के समय थोड़ी सी उमस भरी गर्मी हो सकती है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दिन में किसी भी समय अचानक हल्की सी बारिश या फिर रिमझिम फुहारे आ सकते हैं। तो इस तरीके से मौसम को आप ध्यान में रखकर ही चलिएगा और अगर आपके धूप में कपड़े सूखने के लिए रखे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है।

और इसी के साथ नमस्ते बरेली यहीं तक, और इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 एफएम पर, और 8:45 हो चुके हैं सुबह के। अब सुनते हैं लोकगीत इंदु शर्मा की आवाज में।

0: मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया डमरू वाला जपेगा।
1: विनय कुमार निगम के गाए इस लोकगीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं तक।

सबरंग ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी बरेली से, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गाना। केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में ये गाना सईद कैदरी के बोल, और म्यूजिक था मिथुन का।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना बेनी दयाल और साथियों की आवाजों में, अब्बास टायरवाला के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मर्डर थ्री, इस फिल्म से शफकत अमानत अली की आवाज में, सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म से आप सुन रहे हैं कमाल खान और नीति मोहन की आवाज में गाना, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

है देश की सुरील धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया।

मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की

0: सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊँ और मैं गाना सीखूँ। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज़ को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी।

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

0: विजेता पंडित ने अपने समय के लगभग सभी बड़े और नामी कलाकारों के साथ नायिका की भूमिकाएं निभाई।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया।
0: अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामी बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर, और सुबह के 10 बज चुके हैं। समय है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद का, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में, और पूरे एक घंटे तक आपके साथ रहेंगे हम और सुनेंगे आप सभी के पसंदीदा गाने।

और इसी के साथ आप अंदाजा लगा चुके होंगे, ये गाना है फिल्म लव आजकल से, राहत फतेह अली खान की आवाज और प्रीतम साथी इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता की सुवर्णव, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गांधीनगर गुजरात से हैं जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। ये हैं आर्य नगर कोहका, भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि। उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से भीरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु जो कि हैं बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से।

कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना मंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा प्रेम कपिल, शिवांश संगीता लिपि दीपाली, साधुश्री राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, मणिपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार गुड़िया भाव्या निवेश और नियति, ये हैं दाता बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज हसन, बाबू अहद मिफ्रा नास और चाहत, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सतारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, मोहम्मला हलवायान, श्वेतकोट जिला बिजनौर से हैं, सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता और सूरज यादव ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक और संदीप, बीजना मुरादाबाद से हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष अंशिका, यूसुफ और सोफिया, राजकमल रेडियो श्रोता संगाष्टी जिला जालना, मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई तहसील सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार, प्राजक्ता, वैशाली, वैष्णवी, गायत्री और योगेश, जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, फरसाराम, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैन शाह, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और आवाज खान, जगदीश ठाकर, रंजूभाई ठाकर, युवराज और शिवांगी, मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम से हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष, गांव फाना से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा, उमर अंसारी, समीना, गांव गड़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से, सेक्टर 67 मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जैवी, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, चटडोगरी पिपरिया कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम, अजय कुमार, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, बलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम और कृष्णा, गांव नवागांव मोड़ी पार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल, रुक्मणी, तेजेश्वर, कुशाल, और अब आप सभी की पसंद का ये गाना और प्रोग्राम का पहला गाना भी है, सुनते हैं फिल्म लव आजकल से राहत फतेह अली खान और प्रीतम की आवाज में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और देरी न करते हुए आपके नामों को शामिल करते हैं और आपके पसंदीदा गानों को भी। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश और इनका पूरा परिवार। छबीलपुर गुन्नौर यूपी से हैं हरवेश कश्यप, अर्जीत, दिव्यांश और गायत्री। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान। ग्राम लोहडेटा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधी नूतन, भुवनेश्वरी रामानंद कश्यप। करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहेब रामपुर से हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्मात। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबिता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, विपिन चाक के सपना, कुलदीप, खुशी और इनका पूरा परिवार। रामवीरपुर पोस्ट विलसर तहसील अलीगंज एटा से हैं।

शीशगढ़ बरेली से हैं इलियास इदरीसी, नाजरा नईम नदीम और असद, हनुमानगढ़ टाउन से हैं रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान और इरफान, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रोहान शेख, करुणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम और गुड़िया और श्वेब खान। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से, कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं दिवाकर, आदर्श, लव, ओमेंद्रपुरी और कल्लू भाई, गंगवार रेडियो सरोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता और इनके मम्मी पापा, रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाज शकील, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान। ये है चन्मो महतो जमशेदपुर झारखंड से, बदायूं से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया और अंशा, कस्बा उघेती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनका पूरा परिवार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु अर्णव, सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पद्मा टॉकीज नेकपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। शाजीनगर देलगुर नादेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी करिमा। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल परमार। ये है गांधीनगर गुजरात से ही सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। बेड़ी एमपी से हुकुम करमकर, सुनीता और तनु करमकर। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु। जामनिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति। गमरिया जमशेदपुर से रोहान और आर्य। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बास से निघा, शुहान अब्बास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बान और इनका पूरा परिवार। गड़िया मौजे उस्तु भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह, संगीता, तुषार और रिंकी। ये हैं हमारे श्रोता। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी, रानीगंज बंगाल से आर के शुक्ला। शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, रंजीत और नारायण चिरके। बमबड़ा चौक खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय और बेबी किट्टू। ग्राम चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा, मधु और सत्यार्थ के अलावा थियारा है। अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड ढुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर, यामिनी, उद्यन और अर्पिता। बड़ी गैबी चुराह वाराणसी से अरुण कुमार मालवे और सरिता। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, गीतिका और भानुप्रकाश। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल। दादरी गेट भिवानी से हैं और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सियार कुलकर्णी। ये है हमारे श्रोता। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू ज्योति, चारौदा बार, नवापारा अभ्यारण, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। अजीत कसाना, माया देवी और ऋतिक आदित्य लदावली जिला मुरादाबाद से हैं। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। महेंद्र मोदी, रविन्द्र, इनका पूरा परिवार और लिसनर ग्रुप ऑल इंडिया से है। साथी तहसील मिला ग्राम एचोरा जिला रामपुर से सौरभ श्रीवास्तव, चंद्रपाल और विकास। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर से हैं रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज, अंकद, आयुष, आर्यन, आदर्श और हार्दिक। साथी प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ हागोड़े परिवार। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, सिया। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष कुदारा, विमला, इंदु, हिमांशु और ये हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील, आरफा, इल्मा, एम असलम, शमसुल, कमर राही और गांधीनगर महेश्वर से श्याम।

यादव और सोना यादव ग्राम लसोडिया नरसिंहगढ़ जिला एमपी से हैं। राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी, कटरा चांदखा, पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद, किरण, दृष्टि, मानवी और इनका पूरा परिवार। और इसी के साथ सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया, सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज।

0: मेहमान आएंगे। हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और अब आप सुनेंगे अपनी पसंद का अगला गाना, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम। कटरा चांद खां पुराने शहर बरेली से, जमरा प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल लाडो, लवली खन्ना, रजत, लव, कुश और इनका पूरा परिवार। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर यूपी से श्रमण कुमार, शिवम आर्यन, लवेश और मुन्नेश। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनका पूरा परिवार। राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम, सविता घनश्याम, हरिशंकर, रत्नेश, प्रशांत, हेमंती, प्रजापति। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक। कुलस्वामिनी रेडियो क्लब भवानी चौक से हैं। श्रीरामपुर भोकार महाराष्ट्र से हरिभाव, शुभांगी, श्रावण और अनीता। कोल सिटी बरकाना से अफजाल, ताज, शाहीन, सोनू, तस्नीम, निप्पी और अफजल मलिक। फरमाइशी करता हमारे ये भी हैं, रिंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र, भगत, मालती, भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल। ये हैं सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, साथ ही परवीज अहमद, रतिनाथ त्रिपाठी, सुजीत राय शुक्लपुरा बनारस से हैं। और शेरवानी स्कूल गंज टंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबनान सारी, आलिया अंसारी। अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से हैं। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, बाबूदीन मेरठ कैंट से हैं। जबलपुर एमपी से माधव नामदेव, सीमा नामदेव। शाहू नगर यवतमाल से राहुल, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं। उत्तम कुमार भगत, रुक्मणी भगत, बघेल साहिल और भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से। खरगोन एमपी के कंवर कॉलोनी बड़वा से हैं प्रवीण शिमाले और मीना। मनकारे मंदिर बीजे कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खगन, शगुन, आशारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हैं। ये हैं प्रकाश कुमार, नैतिक पिहू, विमल और पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फालिसबिस गंज बिहार से। नवरतन हाता बाड़ीहाट पुणिया बिहार से, ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, दिव्यांशु और डब्लू। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष। और ये हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे। ग्राम अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से बैजो मास्टर सुनील, शिव कुमार, बेबी तनिष्का, उमरेश्वरी और नौबत यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश, अंकिता, वेवी वैदही, हंसिका। और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू।

0: अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, हिना, सुल्ताना, सूरज अंसारी और इनका पूरा परिवार। छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी, होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री वंदना, मनोरमा, अजय खेमकरन और लक्ष्मी देवी, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश। ऊंचे गांव नादेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल और इनका पूरा परिवार। ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, नसरीन, समा अंसारी। ये है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेश, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज, अर्जुन मौर्य, करण, गोधन मौर्य, नितिन, हर्ष मौर्य, विजय मौर्य। ओसर से रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज बिचरीपुरी गांव से हैं। सोंगर धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार, चंदन और हेयांश। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता, सत्यम, सुंदरम, राजनगर, गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम। सुनते हैं आप सभी के लिए ये गाना जो कि है, फिल्म का नाम है धुरंधर, और इस गाने को आप सभी के लिए हम भेज रहे हैं आपका पसंदीदा गाना। तो चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। और हाँ, आपको याद दिला दें कि आज 11:15 पर सुनना मत भूलेगा प्रोग्राम झुमका गिरारे। और अब आपके पसंदीदा गानों को सुनने की बारी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ग्राम मैचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद अर्शद, अलविया वी, शुभ अमीर अगले गाने को सुनना चाहते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन और यूपी से राजेश वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, ये है उच्च भट्टी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश, मधु, आशीष, शिवन्या और अनु, पटेलनगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार, जाजौरिया गीता रानी, गगनदीप बारजू और गुड्डू, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती, रमेश, विनीत, मिथिला, गोपाल और तिलक, ये है कर्नाटका स्टेट चिना, तिरुपति से प्रकाश श्यामाला, और लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश, जाजिनेन्द्र, श्रोता संघ परभरी, महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और इनका पूरा परिवार, ग्राम गोपी खीरिया तहसील भांडेर जिला दतिया एमपी से राहुल पाल, ज्योति अंजना, हरिमोहन और लक्ष्य, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मकिल्लिक, आकांक्षा और माही, चतुपुर कुंदकी से हैं एम मुजारिर खान, फिरासत फारूकी, मुजम्मम और मुस्तफा गौसिया बी, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हैं भरत सिन्हा, और ये हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुराना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरभ और शाइना, साथ ही सुरेवारी छत्रपति संभाजी से प्रकेश, प्रकाश बोरगावाकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन और ओवी। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से है मास्टर सुनील बाबू, शिवम, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या और इनका पूरा परिवार, डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम, चालिया, गांव आर्यान, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर और गौरव, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, गांव खोखरा वारी श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, शेरकोट बिजनौर से नदीम, बाकी कलीम, अलीम, अदीम, अब्दुल, अलमीर और जन्नत, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू, बीड़शेर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बालस साहब, राम निवास और धनंजय, साथ ही ये है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार और मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशाद, शाबिस्ता, नसीम, पलक, लुमना और यश, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मुराद राव पांचाल, मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन, शहनबाज शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम और यशव, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण

शर्मा, प्रवीण राहुल और मुनीश, ये है मछली गोदाम के अधिमुड़ा रायगढ़ से, पुरुषोत्तम, उषा और ऋषभ, सेक्टर 5 सूर्यनगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहित कल्पी, गर्वी हिमांश, साथ ही सेवड़ी जिला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति, धनीराम नरेश, रविन्द्र कौशिकी, ऋतिक मयंक, और ये है मानकी लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर। प्रभाकर गुप्ता, अवदेश, सचिन, देव पिरियल, कार्यव, गौरी गुप्ता, शनि बाजार, कस्बा उघैती, बदायूं से, भोला कलोनी, घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा से ब्रजेंद्र कुमार, कांता, गुंजन, साहिल और वाणी, गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण, कलावती और जगदीश जौहरी, मोहल्ला बरादरी, महमूद, रामपुर से राफत साहेब और मंसूरी, राशिद भाई, अर्शद भाई, फिरोजा, मुस्कान और नगमा नाज, साथ ही ये हैं आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, पवन जरिए और संजीव डोबेराव, मौर्य इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि, मनोहर, मिही, प्रीति, रीना और सुनीता, छतरी तालाब अमरावती से साधना, रानी और किशोर, ये है चमनपुरा, उदयपुर से नजीब खान, साहिबा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ, राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना, मुन्नी, चांदनी, नंदिनी, मुजफ्फरपुर से हैं, ये है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम, साथ ही संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, पटियाला पंजाब नाभा से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत, और साथ ही दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल वर्मा। गांव जाखौद से हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा, नारायण भाव खंड से ललिता आशरानी, संजना, गणेश, लड्डू, देविका चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी, एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर से हैं। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास और रानी, गंज डवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन अनु खान, अदनान और फैजान, ये है डापकी रोड, अकोला से सुशीला, सदानंद कुमार गौरव, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सोफिया, आयजा, सरोज चौक से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया और इनका पूरा परिवार, ग्राम राजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड से उदयभान, जय सिंह, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और इनका पूरा परिवार, कार्टर रोड, शिवाजी नगर, वाशिम से मास्टर बिट्ठल सुरोशो, सुषमा और मायरा सुरोशो, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव, दीवान, भाविक और पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और इनके परिवार के सदस्य, नजमुल हुदा, एसएम जावेद, गुमला झारखंड से, करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद, अफसार अहमद अंसार, दिलदार मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र काटरे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल, ये हैं गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, मधुकर येले, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से हैं, पोस्ट घोटा खंडवा से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, राधा, सलोनी, शिवम, शास्त्री, निर्दोष शर्मा और इनका पूरा परिवार, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश और पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, सोंगा, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, आसिफ चौधरी, अराफात, अदीप, काजल, योहारा, बिजनौर से, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज, प्रकाश, चंदन और अंकुश, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान, अरमान, नवेद, अजरा, रायपुर अनेक, जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन, गांव भटोनी, जिला मंदसौर एमपी से ईश्वरलाल, सुमित्रा, रेहान, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, मोहल्ला खुजवाजा नगर से हैं कुंडारकी से जाकिर खान, नजीम साहिब, जकीरा और सादिया, इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहता है, फरुखाबाद मोहल्ला साबरगंज यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, सरोज, सुबोध, सलोनी, संजू, लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा, शिवानी, योगेंद्र नायक और इनका पूरा परिवार, समस्तीपुर बिहार से मीरा, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम, अनामिका, कोपर गांव से सुरेश मालोदे और वर्षा, गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, गांव बंडवाला हनवंता, फाजिलका, पंजाब से विनोद, सीमा, लश्किता, यासिका, विधा देवी और इनका पूरा परिवार,

रतनमाला, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश जो कि है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर से, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी, मुबारकपुर उच्ची तकिया, आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन, फातमा, छिंदवाड़ा बेड़ी से है, नाना जी लाम से मीना, तेजस, जय, हर्षिता और इनका पूरा

बागी टू फिल्म से ये गाना आपने सुना आतिफ असलम की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। समय हुआ है 10:47 और ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप सभी के नामों को हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि शामिल कर सके और आपके पसंदीदा गानों को भी सुना सके। तो ये है टीवी टावर नागपुर से हैं नाना डोंगर, दिवे, राहुल और रीमा। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन, डॉक्टर दबीरुल बेगम, शबनम, नाजमा बेगम और सरिता गौतम। फुलेनगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद।

कारवां गीतांजलि और आकाश आकांक्षा, दत्ता धोटके आष्टी जालना महाराष्ट्र से हैं, पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा भूपेंद्र, सीमा अनमोल और साहिबा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, ये हैं हितेंद्र दास स्टेट आसाम से हैं, और ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सबी राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता निखिल और तन्वी बोट, ये हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार, वंदना, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित और कोको रानी, विष्णु मस्कीन, रीतिका आरोही, वाणी मस्कीन परिवार दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, सुशांत और चुलबुल रानी, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से हैं विनोद मूडत, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि के कुसुम, रूपा राजनगर से हैं कांति निकेतन, कुशेश्वर कांति, रुद्रा परिचय और रिद्धि सिद्धि, साथ ही ये हैं हमारे श्रोता रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, डॉक्टर आरवी सिंह, अजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा थाने के सामने नगर पंचायत अलागन जनपद शाहजहांपुर से, बिसौली जिला बदायूं के गांव गदगांव से हैं राजकुमार प्रजापति, राजपाल, दुर्गेश, कृष्ण पाल, शाक्य, वीरेश और सुधीर, राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मेंद्र, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, जरी, काजीगर, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार, कस्बा क्योलड़िया, नवाबगंज जिला बरेली यूपी से हैं, पंचकुला सेक्टर 9 चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रधान, तुलसी मस्कीन, ये हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी न्यू दिल्ली से हैं, साथ ही गांव टोरेवाल जिला नवागढ़ शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामन, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा गोडाने।

झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक मंसूरी क्लब ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन, तालिब सलीम, तौफीक मोहम्मद, नवी मंसूरी, सुनील राहुल रस्तोगी और इनके बहुत सारे दोस्त अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से मखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, ये है अलकनाथ मंदिर के सामने बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत ज्ञानेंद्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील, महावीर, संजय, अश्विनी, बाबू भाई, रमेश चंद सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर और राज कश्यप, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबे, राधिका, अनिष्का और तन्मय, नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिबजानूरी, नथु चाचा, हिना, नन्हे ठेकेदार जाहिद मुर्गिया, मुशर्रफ भाई अंसारी, शाकिन करगैना और इनका पूरा परिवार, पटियाली रोड गंज डुंडवारा यूपी से हैं, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, हम्मद कुरैशी, आरिबा और हबीबा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नासमा बेगम हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम, चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल और इनका पूरा परिवार, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान न्यू दिल्ली से हैं, कटरा जानखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर, प्रकाश, रंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रंजीत कारे गांवकर, कांचन, सृष्टि समरजीत कारे गांवकर और बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फूजिया रोशनी, शाइना काजल भाई और शहजाद अली मंसूरी, जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह, मनकोबाई, प्रियंका, ईशिका, ऋषि और निशी निधि नारायण कुशवाहा हैं, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल, सुनीता, हर्ष, विनीत और कुमारी कृष्टि, साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जावेद इनायत और यूसुफ इनायत इंग्लैंड से हैं, जिला बदायूं ग्राम गनगोला से इसरत शाइमा रहूफ, साबरीन शहबाज, सैफ और ईशान, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना

0: और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालो, तहसील आलोट, जिला रतलाम, एमपीसी विक्रम मालवे, रचना, कमलाबाई, आकाश, विनायक और इनका पूरा परिवार, बदायूं ग्राम गनगोला से इसरत खान, शायरा रऊफ, साबरीन, शहबाज सैफ और ईशान, ये हैं हमारे श्रोता जो कि एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर नारायण से हैं। नारायण भाऊ, ललिता, आशा रानी, संजना खड़से, गणेश, कार्तिक, देविका चौधरी, लड्डू, स्वाति, प्रयागराज चौधरी, और ये हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर मोहम्मद साकिब, अलमास मानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल, विनीता और मोहम्मद हसनैन जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, ये हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य, मेघा, डब्बू और सम्राट। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा और अभिषेक। तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत, तंगौरी, जसबीर, महकप्रीत, सहजप्रीत। और अब प्रोग्राम का जो आखिरी गाना है वो है फिल्म बेल बॉटम से, ये गाना हम आपको सुना रहे हैं मनिंदर भुट्टर की आवाज में।
1: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगा हर्ट्स पर, और अब समय है सब रंग का। लेकिन एक आपको जरूरी सूचना दे दें, आज शाम 4 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय रहेगा नेत्रदान जरूरी क्यों है, और इसकी रिकॉर्डिंग दोपहर 2:30 बजे से की जाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। हमारा नंबर है 0581251700। आज आकाशवाणी के साथ आपकी बात का जो विषय है वो है नेत्रदान क्यों जरूरी है। इसकी रिकॉर्डिंग 2:30 बजे से की जाएगी। फोन नंबर 0581251700, इस पर आप कॉल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप समय है आपके अपने कार्यक्रम सबरंग का, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं सबरंग में ये भजन।

और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 26 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 25 अगस्त यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक मौजूद रहेंगे। विषय डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा मंगलवार 25 अगस्त 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है 0581251700। सूचना समाप्त हुई और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से सबरंग। सुनते हैं अगला गाना। सारे गामा का

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई, टल्ली हो गई। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झुमका गिरारे। आदाब, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम झुमका गिरारे में और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त नीतू। दोस्तों, इन दिनों पूरा शहर एक बेहद पाक और मुकद्दस जश्न में डूबा हुआ है। जी हाँ, अवसर है ईद मिलाद उन नबी का, यानी इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का दुनिया में यौमे पैदाइश हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि बरेली को उसके मशहूर फिल्मी झुमके के लिए जाना जाता है, लेकिन ये खूबसूरत दिन हमें बता रहा है कि बरेली सिर्फ गानों में नहीं बल्कि अपनी गंगा जमुनी तहजीब और बेनतहा मोहब्बत के लिए भी जाना जाता है। इसी मोहब्बत को समेटे आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना आपके अपने प्रोग्राम आकाशवाणी बरेली के झुमका गिरा रे।

0: में काफी रौनक देखने को मिलती है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर लेडीज सूट भी हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी और काफी चमक वाले, क्योंकि त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, ईद और उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार होगा। जी आपका नाम?
1: मेरा नाम धीरज कपूर है।
0: जी जानने जाएंगे क्या कुछ वैरायटी देखने को मिल रही है, और अगर लेडीज की बात करें सूट के क्या कुछ कलेक्शन है।
1: मैम ईद और रक्षाबंधन दोनों साथ के हैं त्योहार, इसलिए बाजार में काफी रश चल रहा है। दोनों तरीके के ग्राहक है, सबकी पसंद है अपनी अपनी। फॉर्मडन क्लाइंटेज जो है फारसी सूट वगैरह ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पैंट ट्राउजर सूट है वो पसंद कर रहे हैं, और रहा सवाल हिंदू का, हिंदू में फ्रॉक सूट है, स्ट्रेट कट सूट है, सभी पसंद कर रहे हैं। अपना सिंगल कुर्ती लेने वाले सिंगल कुर्ती भी लेते हैं।
0: जी, तो ज्यादा इस बार फोकस एम्ब्रॉयडरी पे है।
1: हाँ, एम्ब्रॉयडरी भी बिक रही है, सिंपल वाले सिंपल भी लेते हैं,
0: कॉटन और सिल्क,
1: कॉटन सिल्क मसलिन सभी कुछ बिक रहा है।
0: ये सब अलग अलग वैरायटी, रेट की बात करें तो क्या रेट?
1: रेट तो मैम देखिए मार्केट है, हर तरीके की चीजें हैं। स्टार्टिंग रेंज जो है 450 से कंप्लीट सूट आ जाता है, और किसी की चॉइस है 2500 वाला, किसी का 1500। हाँ जी, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग।
0: यहाँ पर शॉपिंग के लिए लोग आए हैं, क्या कुछ त्योहार के लिए खरीद रहे हैं? जी आपका नाम?
2: मैम आरिफा, मैं ईद मिलादुन नबी के लिए अपने सूट देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत प्रीटी प्रीटी सूट हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन है, यहाँ पर आप ले सकते हैं।
0: हर साल आप शॉपिंग इसी तरह करते हैं?
2: जी जी मैम, यहाँ इंदिरा मार्केट में ये शॉप अच्छी है, और यहाँ पर मतलब कलेक्शन भी अच्छा रहता है। और मार्केट में
0: अगर बात करें तो क्या कैसे मनाए जाते हैं उस दिन ये खास त्योहार? त्योहार की शुरुआत कैसे सुबह होती है?
2: मैम त्योहार की शुरुआत का जो स्टार्टिंग होता है वो मतलब फजर से पहले शादी का टाइम होता है, उस टाइम पे मोमबत्ती वगैरह लगाना, सारा मतलब उजाला करना, सब चीजें लगाना, मतलब ये सारा रहता है उसमें।
0: मोहम्मद पैगम्बर साहब की पैदाइश का ये?
2: हाँ जी हाँ जी,
0: तो काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
2: जी जी जी जी मैम बिल्कुल।
0: और हमारा सबसे बात करें तो क्या कुछ?
2: मैम खाने में तो सबसे ज्यादा तो मीठा ही बनता है, उसमें न्याज वगैरह दिलती है, और सबसे ज्यादा मिठाई या आपका शीर हो गई या खीर वगैरह, ये सारी चीजें बनती है।
0: उसके बाद आप अपने दोस्तों से मिलने?
2: जी जी, फिर मैम जी जी मुबारकबाद देते हैं सबको। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
0: आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए भी लोग काफी मुबारकबाद देते हैं। जी फिर क्या टाइम निकालते हैं लोग आज?
2: नहीं मैम, उस दिन तो पूरे दिन टाइम ही टाइम है, इतना अच्छा दिन होता है, खुशी का दिन होता है, तो इसलिए कोई भी काम वगैरह सारे छोड़ के हम उस दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं।
0: जी आपको मुबारकबाद।
2: जी मैम आपको भी।

0: मेरा नाम है शिव कुमार चावला
1: जी। आपके हम देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मेरे हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता और क्या कुछ खास आया है अगर बात करें।
0: इसमें आप ड्राई फ्रूट्स में लोग रक्षाबंधन हो, ईद हो, गिफ्ट पैक्स वगैरह लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक्स हैं हमारे पास हर वैरायटी में। अंजीर है प्रीमियम क्वालिटी का, छुआरा है, अंजीर है, अखरोट है, बादाम नया आ गया है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी में सब मिलेगा आपको। और जैसा आप देख सकते हैं ऑल वैरायटीज के गिफ्ट पैक्स भी हमारे पास। आप जैसे प्रेजेंटेशन ऑफिशियली गिफ्ट करने हैं, घर में देने हैं, परिवार में देने हैं और रक्षाबंधन में भाई बहन के लिए सबसे बहुत अच्छे गिफ्ट पैक्स हैं हमारे पास। जैसा आप चाहो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। ड्राई फ्रूट्स में स्पाइसेस भी अवेलेबल हैं, आप स्पाइसेस चाहो स्पाइसेस भी ले सकते हैं।
1: आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे और आपने सुना ये रूहानी कला। इस खास मौके पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और सीधे पहुंच गई बरेली के दिल यानी कुतुबखाना के बाजार में। इस वक्त बाजार की रौनक देखने लायक है, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग और हवाओं में बेहतरीन इत्र की खुशबू और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही नूर है। दोस्तों कुतुबखाना बाजार की इस रौनक को देखकर लगता है कि दिल बस यही गुनगुना रहा हो, मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जो लाया है। आइए इसी खूबसूरत और पाकिजा एहसास के साथ सुनते हैं ये सुरीला गाना आपके अपने प्रोग्राम में।

आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, बरेली का बाजार हमेशा रोशन रहता है। ऐसा लगता है कि मानो बरेली का खोया झुमका किसी को मिला हो या

नाम मिला हो, लेकिन बरेली का असली झुमका तो यहाँ के लोगों के दिलों का भाईचारा है। और इसी के साथ हम और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और बात कर रहे हैं ईद मिलाद उन नबी की। इस पावन दिन पर जब हम पैगंबर साहब का यौमे पैदाइश मना रहे हैं तो उनकी दी हुई सबसे बड़ी सीख को याद करना जरूरी है। उन्होंने हमेशा अमन, भाईचारे और गरीबों की मदद करने और हर इंसान से मोहब्बत करने का संदेश दिया। और बरेली के लोगों का भी तो यही कहना है, त्योहार का असली मकसद यही है कि हम नफरतों को मिटाकर दिलों को जोड़े। कुतुब खाना बाजार से लेकर सैलानी और दरगाह आला हजरत के रास्तों तक हर जगह यही अमन का पैगाम पहुँच रहा है। चलिए इस खूबसूरत माहौल में एक और साथ कलाम सुनते हैं आपके अपने प्रोग्राम झुमका गिरारे में।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे और वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। समय कब हो चला पता ही नहीं चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आकाशवाणी बरेली के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को ईद मिलाद उन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। यूं ही आपस में मोहब्बत बनाए रखिए, रेडियो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए FM रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, किससे बात हो रही है?
3: जी नमस्ते दीदी, प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग,
3: मोहम्मद फैज रामपुर कटर 12 बैंकी से बात कर रहे।
2: कैसे हैं फैज आप?
3: जी दीदी मैं बढ़िया हूँ, हमारे गांव का मौसम काफी प्रसन्न है, बारिश हो रही है।
2: अच्छा बारिश हो रही है
3: जी,
2: तो बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं आप चाय वाय पी कर?
3: जी जी जी,
2: तो थोड़ी इधर भी भिजवाइए। आजकल तो डिजिटल चाय पहुंच जाती है, हमने मान लिया कि आपकी भेजी हुई चाय हम तक पहुंच गई। अब ये बताइए अपना संदेश क्या लाए।
3: जी दीदी आज का मेरा संदेश ये रहेगा,
2: हाँ
3: जैसे आजकल दीदी बारिश हो रही है तो जैसे तमाम लोग बिजली के खंभे के पास जो है खड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसा ना बिजली के खंभे के पास ना खड़े हुआ करें। और जैसे तमाम लोग बारिश में हम मानते हैं कि घर के बाहर गाड़ी से निकलना होता है, कहीं जाना होता है, तो अगर जाएं तो बहुत ही सावधानी से टू व्हीलर चलाएं और हेलमेट का प्रयोग जरूर से जरूर करें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बारिश में जैसे पानी जल भराव रहता है, तो जैसे ही पानी गिर जाए तो उसको तुरंत साफ करें, जल भराव ना होने दें, ना कि तो जो है वो मच्छर की पैदा होने की जो संभावना होती है, इसलिए हमें बुखार भी हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
3: हेलो दीदी
2: जी बताइए।
3: मैं एक दोस्त का नाम लेना चाहता हूँ, बहुत दीदी
2: बिल्कुल ले लीजिए
3: जी। सबसे पहले बाबू अंसारी भाई हैं, बस
2: हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच
3: जी, थैंक यू सो मच।
2: तो भाई 11:32 और देखिए हमारे साथ एक के बाद एक जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं वो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे पहलुओं पर, बहुत सारी बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर बात हो जाए तो एक रिमाइंडर सा हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये वो रिमाइंडर है जो हम सबको सुबह उठकर एक दूसरे को दे ही देना चाहिए। फिलहाल एक ब्यूटीफुल सा गाना मैंने ट्रैक जो है वो क्यू कर रखा है आपके लिए, तो बिना किसी देर के।

11:37 हो रहे हैं और संदेश आपके गीत हमारे का जो ये जुगलबंदी कार्यक्रम चल रही है, मैं बातें कर रही हूँ, आप संदेश दे रहे हैं, हम गाने बजा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। ओफो, अगर मौसम ने इसके साथ जुगलबंदी बिठा ली है, बूंदाबांदी कर करके और सुहाना हो रहा है मौसम, तो बस बात ही क्या है। बस एक और जुगलबंदी की देर रहती है, वो है कि पकौड़े तलते हुए नजर आ जाए तो बस दिन बन जाए, मजा आ जाए। फिलहाल मेरे पास सामने एक मेल खुला हुआ है मोहम्मद आसिफ अंसारी, जो हैदराबाद में तेलंगाना से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन हम चलिए मान लेते हैं आपकी भावना है ये कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और शायद आपका मेल दोबारा आ गया है मेरे पास, पर कोई बात नहीं। इसके साथ अनिल कुमार जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 8:15 से हूँ आपके साथ और बहुत अच्छा समय बीत रहा है, और कह रहे जितनी तारीफ करे उतने अल्फाज नहीं, लेकिन इतने सारे अल्फाज बिखेर दिए आपने प्यारे प्यारे। चलिए, संदेश कह रहे हैं कि राखी का त्योहार आने वाला है, बाजार जाए तो खाने पीने की सामग्री खरीदे देखकर, और गैंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से ये लिख रहे हैं। मतलब पहाड़ों के बीच से आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस

देख रहे हैं, वाह वहां तो मौसम और भी अच्छा हो रहा होगा। फिलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ रामराज जी का मेल। रामराज जी कह रहे हैं श्री गणेशाय नमो, संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, और नाम लिया है रामराज, राजू भानु, झुर्री यादव, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, शंकर भैया, और सबको प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, सब कुछ दिया है। और कह रहे बारिश अच्छी हो रही है, तेजी से हो रही है, और अच्छा लगता है इन्हें ठंडा मौसम। हम सबको अच्छा लगता है ना, क्या बात है। आपका मेल पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और एक और मेल मैं जो उठाने जा रही हूँ वो है मोहम्मद सद्दाम का। कह रहे क्यूट सी प्यारी वाली आरजे आयुषी दीदी, अच्छा आपको भी प्यार भरा नमस्कार सलाम। और रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं सुपरहिट गाने अच्छे लगे, और संदेश है कि बारिश में सभी लोग ख्याल रखें, और दोस्त का नाम लिया है मोहम्मद फैज परवीन। ले दिया मैंने, आपकी सारी बातें मैंने मान ली। अब इसी के साथ मुझे लगता है कि अगर बहुत प्यारा सा एक गाना मैंने नहीं सुनाया तो आप कहेंगे कि ये तो चीटिंग है आयुषी।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: ग्यारह बज के 44 मिनट और आयुषी के साथ सुन रहे हैं आप संदेश, आपके गीत हमारे, और देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
5: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
5: जिला औरैया ग्राम पुराने थल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे। दीदी
4: गगनदीप जी, कैसे हैं आप?
5: अच्छे हैं दीदी, आप कैसी हो?
4: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपसे बात हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है।
5: और रक्षा बंधन के आने वाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता
4: हूँ। बस बिल्कुल, आपको भी सारे त्योहारों की आपको भी शुभकामनाएं। और क्या संदेश लाए आज आप हमारे लिए?
5: जो पहाड़ों पे लोग जाते हैं वो सावधानी से फोटो खींचे, खतरा हो सकता है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेल्फी वेल्फी अगर खींच रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वरना पैर वैर फिसल सकता है ऊंची जगहों से।
5: हाँ दीदी
4: जी, तो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा संदेश लेकर आए हमारे लिए।
5: नमस्ते दीदी।
4: नमस्ते, 11:45 है और हमारे पास कुछ समय है, तो इतने प्यारे कॉलर के बाद और भी देख लेते हैं हमें किससे बात करनी है। लेकिन फिलहाल बातें तो कहते हैं ना, कई तरीकों से हो जाती है। कभी कभी गाने सुने ना, बिन कहे हो जाते हैं, आंखों आंखों में हो जाती है, मुस्कुराने से हो जाती है, फिलहाल मेल से भी हो जाती है, तो मेल पढ़ लेते हैं। बाबू अंसारी जी का देवकली अहमदपुर बाजार 12 बंकी से लिखा है, कार्यक्रम अच्छा लग रहा, संदेश है कि बाइक के बारिश के मौसम में बाइक या कार कोई भी वाहन बड़ी ही सावधानी से चलाएं। हाँ भाई, देखिए ये तो एकदम जेन्युइन बातें हैं, ये तो आपको घर से निकलते वक्त आपके घर वाले भी टोकते होंगे और हम भी याद दिला रहे हैं। मुनेश कुमार राज जी भानपुर गोपालपुर लखीमपुर खीरी से कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि इतने सारे गाने अच्छे बज रहे हैं और मैसेजेस अच्छे लगते हैं इसलिए। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के सुपरस्टिशन में ना पड़े, यानी कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ों में भ्रमित करता है जिससे आपको नहीं होना चाहिए, तो किसी भी सुपरस्टिशियस चीज़ में ना पड़े और अपना आप ख्याल रखें। और अगर आप बीमार पड़े तो खुद के डॉक्टर ना बने, सुपरस्टिशन में ना अपना इलाज कराएं, बल्कि अपना ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर से कराएं। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। कन्हैया लाल पांडे जी का नाम लिया है, विलेज पटेहरा से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, वो भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, क्या बात है। तो मनीष कुमार जी, आपने बहुत अच्छा ये लिखा है और मुझे भी ये बात बहुत पसंद आई। और इसी के साथ अगला मेल मैं ले रही हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मेल मैं ले चुकी हूँ, तो मैं अगला मेल ले लेती हूँ अनिल कुमार जी का। अच्छा, मैंने अनिल कुमार जी आपका भी मेल ले लिया है, मैं समझ रही हूँ ये मोहब्बत, ये प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कई कई बार मेल करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको बराबर मौका मिल जाए। तो रिंकी पिंकी का गांव जगदीशपुर शिवगढ़ से, रायबरेली से उन्होंने हमें लिखा है कि कैसे हैं, और मैसेज है कि रेडियो हमें एक साथ रहना सिखाता है, ना कि हमें एक दूसरे से नफरत करना, और अच्छा यही है कि हम लोग प्रेम और संयुक्त होकर रहें। और उन्होंने हमें बहुत सारे आरजेस को और सारे लिस्नर्स को बहुत सारा प्यार भेजा है, पता नहीं कितनी सारी इमोजी बनाई है उसने, पेड़ फूल पत्ती दिल सब बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर, थैंक यू सो मच। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना, क्यों वेट कराऊं मैं, अभी आया।

11:51 हो रहे हैं और हमारे पास और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे मेल्स हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैंने वो नहीं पढ़ा तो अच्छा नहीं होगा। फिलहाल मैं मेल ले रही हूँ विश्वास खंड से पीयूष शर्मा, विभा शर्मा, देवान शर्मा का और किरण का भी नाम लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इस मौसम में आप सिर्फ मौसमी फल खाएं। मौसम हर फल उस तरह से लाता है हमारे लिए जिसकी हमें उस वक्त ज़रूरत होती है। तो जैसे कि इस मौसम में आप वो फल ना खाएं वो या वो सब्जियां ना खाएं जो इस मौसम के हिसाब से नहीं हो, यानी जिसमें कीड़े वीड़े लगने का डर हो। तो आप मौसम पर ट्रस्ट करें, प्रकृति पर ट्रस्ट करें और उनको फॉलो करें। आपकी जो बॉडी है वो अपने आप फिट एंड फाइन रहेगी। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा मेल लिखा आपने। अगला मेल जो मैं ले रही हूँ वो है जितईपुर से सोनम, और यहाँ पे नाम लिखा है शंकी का, मोनू का और आरुष का और साथ ही किरण का भी। और इन्होंने लिखा है कि जो भी हम अपने लाइफ में हम जितना भी कमाते हैं, हमें ये ज़रूर निश्चित करना चाहिए कि हम उसमें सेविंग कितनी करते हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने बताया है, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि मैं तो हर वक्त अपने जितनी भी इनकम होती है उसका 30% ज़रूर सेव करने की कोशिश करता हूँ, जो कि बुरे वक्त में हमारे काम आती है। और अक्सर हम यही सारी बातें भूल जाते हैं। बहुत प्यारी बात कही आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेल पढ़ के। और फिलहाल मैं देख रही हूँ कि 11:53 हो रहा है।

यहाँ पे पूरे स्टूडियो में एक मुस्कान बिखर सी गई है, क्योंकि कोई है जो वेट कर रहा है आपसे मुखातिब होने के लिए और कह रहा है कि आयुषी बस करो यार, अब जाओ तुम ताकि मैं आऊँ। तो भाई भारी दिल से मैं आप सबसे ले लेती हूँ इजाजत। संदेश आपके गीत हमारे को यहीं करती हूँ वाइंड अप, और ऐसे नहीं जाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा आपके लिए एक गाना छोड़कर जाऊंगी ताकि आप उसे इंजॉय करते रहें और आपका दिल नहीं भरेगा जैसे हमारा नहीं भरता आपसे।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा IFS के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वाराणसी में आज करंट लगने और दीवार गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है। सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा स्थित काजीपुर खर्द में आज सुबह बारावफात पर्व की सजावट के दौरान करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। काजीपुर खुर्द निवासी सलीमुद्दीन और पुत्र अनस आज सुबह घर के सामने बारावफात की सजावट कर रहे थे, इसी दौरान करंट की चपेट में आने से पुत्र और पिता की मौत हो गई। वहीं मंडी आडीह थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पुरानी दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षिक सत्र के आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का यह कार्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। एमिस्ट फेलिन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
5: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां।
6: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहां।
4: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

भाई कहा जाता है कि खुशियां ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती, बस ये जो खूबसूरत सी बारिश है इसकी जो छोटी छोटी सी बूंदें हैं इनमें भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको खुशियां जरूर मिल जाएंगी। तो बस इन्हीं खुशियों के साथ इसी प्यारे से मौसम में जरीना आप सभी का स्वागत करती है 100.7 FM रेनबो पर, जो कि अब हो चुका है सुरों का लखनवी एहसास। तो दोस्तों भाई आज की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम शत्रुपा की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वक्त जो है 12:08 का, और ये जो वक्त है बस यही कहता है कि जितनी भी लेडीज है ना वो अपना काम धाम तमाम करके

बस अपने रेडियो के साथ चिपक करके बैठ जाती, क्योंकि 1 घंटा बस उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड सा होता है कि बस बहुत सारी बातें होंगी ऐसी जो सिर्फ आपके लिए, हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, उन सभी के लिए हम ये प्रोग्राम स्पेशली आप लेकर आते हैं। तो बस ऐसी ही कुछ बातें आप तक भी लेकर आए हैं। और आज है ट्यूजडे, तो कुछ बात हमारी ऐसी होती है जो थोड़ा हमारे फैशन स्टाइल या आपको खूबसूरत बनाने से रिलेटेड होती है। तो बस ऐसी ही कुछ बातें मेरे पास भी हैं अगले 1 घंटे आप सभी के साथ करने के लिए। तो बस गेट रेडी, अगले 1 घंटे बहुत सारी बातें करूंगी, बट फिलहाल ये जो अगला गाना है इथे आना, बस इसी को भेजती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: थे यार।
1: ये वक्त हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था और हम शायद पहले ऐसे इंडियन थे जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन उसकी अपनी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: रंग हमारे संग तुम्हारे। सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन
1: 100.7 FM रेनबो
0: सुरों का लखनवी एहसास।

भाई जिंदगी के लिए भी हमेशा से यही कहा जाता है कि जिंदगी भी हम सभी की ऐसी गुनगुनाती हुई और हमेशा मस्त होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं भाई। एफर्ट्स ये होते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में खुशी हम सभी को दे के जाती हैं, उनको बस पकड़ कर रखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम लोग को लगता रहे यार

0: ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को बस छोड़ते जाइए और खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, बस बिल्कुल इसी गाने की तरह। वैसे बता देते हैं प्रोग्राम चल रहा है शत्रु पार, 12:18 का वक्त, और आज हम बात करने वाले हैं फैशन। भाई फैशन या खूबसूरत दिखने का क्रेज, इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आनी शुरू हो गई है मार्केट में। मतलब एक टाइम हुआ करता था, आप सभी को याद होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम लोग बॉडी को स्क्रब करने के लिए चीज़ें यूज़ करते थे, लूफा लेकर आते थे। मुझे पता गाँवों में वो लौकी के जो अंदर का वो होता नहीं, उसको निकाल के उससे पैर वैर साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इतनी चीज़ें इनहेंस्ड हो गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स आने लगे, और उसके बाद जो सबसे बढ़िया और यूनिक चीज आई जिसको देख करके भैया हम बिल्कुल आंखें हमारी ना चुंदिया सी गई कि ये क्या है, और ये है फिश स्पा। सुना है आपने भाई, भाई बहुत सारी मछलियां एक पॉन्ड में डाल दी जाती हैं या टब वब में, और उसके बाद क्या होता है कि वो सारी मछलियां जो हैं बस पैरों को ऐसे ऐसे मतलब कुछ ऐसे चल रहा होता है ना, मतलब जो करवाते हैं उनको मैंने देखा, बढ़िया खूब मस्ती आ रही होती है, बड़ा मजा आ रहा होता है, गुदगुदियां लग रही होती हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ये जो फिश स्पा जैसा टर्म आया है ना अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने पैरों की खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, ये क्या है, ये सही है या गलत है या कितना सही है, इन सारी चीजों पर आज बात करते हैं। वैसे अगर आपने करवाया है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब एक्सपीरियंस से चाहूंगी आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन नहीं करवाया है तो मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताऊंगी जिसको लेकर के आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएंगे कि भैया करवाऊं या ना करवाऊं, ये सारा कंफ्यूजन माइंड में जरूर आ जाएगा। तो चलिए गाना जो है अगला वो प्ले कर देती हूं आपके लिए, क्योंकि जब फैशन की बात होती है तो ऑब्वियसली चकाचक रहना तो बिल्कुल बनता ही है। तो गाना तो आ गया और बाकी आपको बताती हूँ कि क्या फंडा है ये फिश स्पा का।
1: चका चक

जी हाँ भाई, आप चकाचक रहे इसके लिए। हर ट्यूसडे को हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा सेगमेंट शत्रुपा का, जहाँ हम बात करते हैं आपकी खूबसूरती की, आपसे जुड़ी और आपको अच्छी मतलब खूबसूरत बनाने की और टिप्स देने की। और ऐसी ही बातों के साथ हम बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। जैसे कि हम बात कर रहे थे फिश स्पा की, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे घोड़े दौड़ने लगे होंगे। वैसे मुझे ये भी पता है आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद सामने से देखा भी हो कि ये क्या होता है। बाकी रील्स एंड ऑल पे तो हर कोई देख चुका है कि फिश स्पा क्या होता है। आपको बता दूं कि गारा रूफा नाम की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इनको हम प्यार से मतलब ब्यूटी का जो टर्म होता है उसमें डॉक्टर फिश भी कहते हैं। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी होती है और ये धीरे धीरे आपकी स्किन को काट रही होती है, और बेसिकली अगर हम देखें तो ये अपना खाना आपकी डेड स्किन में ढूंढ रही होती है। तो बस ये बढ़िया बढ़िया सा एहसास होता है, और जब भी आपको लगता है ना कि बस बढ़िया सी खूबसूरत सी जगह हो जहां पर बढ़िया बढ़िया सा ट्रीटमेंट मिल रहा हो और वहां बैठ के अगर आप कुछ भी कराएं तो फील तो अच्छा आता ही है। लेकिन जब हम फिश स्पा की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम डॉक्टर्स की माने या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो कहा यह जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये जेनरेट कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसको करना वैसे भी सही नहीं लगता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो फिशेस हैं उनका काम ये वाला है ही नहीं, जो उनको जॉब दे रखी गई है वो काम उनका है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनसे करवाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आपकी स्किन तो इफेक्ट हो ही रही होती, साथ ही वो जो फिशेस है ना छोटी छोटी सी उसमें, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ऐसी चीज होती है जिससे आपको तो प्रॉब्लम होगी, खासकर फिशेस को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये सारी चीजें आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो अगला गाना है वो भेजूंगी आपके रेडियो सेट पर। अच्छा, एक चीज और मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, जो हमेशा से हमारे जो घर वाले हैं या कहें हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मम्मी, ये सब जब फॉलो करते आए हैं, अगर उनको फॉलो कर रहे हैं हम भी, तो इसमें क्या बुराई है ना? मतलब उठाइए झावा या ब्रश व्रश लीजिए घर में जो भी आपके हैं, करिए अपने पैरों को साफ या अपने हाथों को साफ। क्या ऐसा जरूरी है कि जो मार्केट में चल पड़ा है उसके पीछे पीछे हम सभी को भी दौड़ना है? मतलब सोचिए सोचिए, शायद आपको लगे कि ये क्या लूल जुलूल हरकतें हम सभी लोग करते आ रहे हैं, और जो चीजें चल पड़ी हैं समाज में या कहें फैशन में या हमारे आसपास या रील्स में, तो लगता है यार अब इनको कर ही डालें। तो बस ये सारी चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा हम सभी को एल्यूर करती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें लगता होती नहीं सही है ना। तो चलिए बातें अभी और भी करती, फिलहाल ये प्यारा सा गाना, यस, शो मी योर जलवा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने,

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

जी हाँ दोस्तों, इस प्यारे से ट्रैक के बाद बहुत सारी बातें जो हैं, जो ये मेरे पास बची हुई हैं, वो अभी आप सभी के साथ करनी है। भाई हम बात कर रहे हैं फिश स्पा की। अच्छा, कुछ मेल्स जो हैं मैंने कहा था अगर आप चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, तो किसी एक आध लोगों के मेल आए हैं और उन्होंने ये बताया कि मैम बस सुना ही है, करवाया नहीं है। अच्छा, हमारे साथ भी यही कि मैंने भी बस सुना है और आई कुडंट डेयर, मतलब बड़ी हिम्मत का काम होता है ये सारी चीज़ें करवाना, है ना। तो मैंने भी करवाया नहीं, लेकिन बहुत सारी रिसर्च इस पर कर ली है ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो इससे रिलेटेड हैं। सबसे बड़ी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स की माने तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत तरह से हार्म करती है। और उससे भी बड़ी मैं बात बता दूं आपको कि यहां तो भाई फैशन है, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में, बैंकॉक जैसी जगहों पर ये सारी चीजें बड़ी मतलब कॉमन है। बाहर आप देखें, होटल्स के बाहर या रेस्टोरेंट्स के बाहर तो वो पौंड लगा के लोग बैठे रहते हैं और करते हैं। इवन हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जगह पर ये बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका, कैनेडा और ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने इस फिश स्पा को या कहें फिश पेडिक्योर को अपनी कंट्रीज में बैन कर रखा है। आप सोच सकते हैं ना, आप समझ भी सकते होंगे इस चीज की गहराई कि कितना हार्मफुल हो सकता है जब इस तरह की कंट्रीज इन चीजों को अपनी कंट्री में बैन कर रही हैं। दूसरी चीज, अनहाइजीनिक माना जाता है क्योंकि इसमें यूजुअली कांच का या एक टब यूज किया जाता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है जहां पर यह पेडिक्योर किया जाता है। तो इसमें वही पानी रीयूज हो रहा होता है और वही फिशेज जो हैं वो किसी और के पैर का पहले खाना खा रही है, फिर उसके बाद आपके पैर का या फिर किसी तीसरे का। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो कहा जाता है कि अनहाइजीनिक होता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार वो जो पानी है ना उस पॉन्ड का, वो बदला नहीं जाता है। तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब आपके पैरों में स्पेशली या आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि स्किन इन्फेक्शन, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है तो बस आप तो बिल्कुल उस फिश स्पा के पॉन्ड से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि वो फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन कहा जाता है इससे बहुत ज्यादा होते हैं। जिन्होंने करवाया है वो इन चीजों को फेस कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पैरों में रैशेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाद में देखने को मिलती हैं। तो कोशिश करिए, बच के रहिए। मतलब वो क्या अपना वो देसी वाला तरीका था, झावा उठाइए या वो जो लूफा सा आता था उसको उठाइए, रगड़िए, चमा चम पैर आपके हो जाएंगे, ये सारी चीजें क्या है। मतलब खैर, बहुत सारी बातें अभी और भी हैं जो मुझे आपको बतानी है जो फिश स्पा से रिलेटेड है। अगर मतलब कराने का मन बना रहे ना कि एक बार एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी बन करके करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं ये काम, ये डेयरिंग काम, ये फिश स्पा का डेयरिंग काम वो बताऊंगी आपको। बट फिलहाल ये जो अगला गाना है ना सुखविंदर सिंह की आवाज में, इसको भेजती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का।

0: विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
2: शुरू का लखनवी एहसास।
3: जी हाँ दोस्तों, और सुवरों के लखनवी एहसास पर इस वक्त है जरीना आप सभी के साथ। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं फिश स्पा की। मतलब इतने दमदार नाम है, इतना खतरनाक नाम लगता है, सीरियसली लगता है कि ये हमारे हमारे देश का, हमारी कंट्री का या दुनिया का ही नहीं, लगता आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज है। हैवी भाई, नई नई टेक्निक्स ढूंढी जाती हैं लोगों को बस अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, है ना, कि मतलब इस तरह के बढ़िया बढ़िया पैंतरे आजमाए जाएं और लोग बस पहुंच जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई काम करवाना है तो वो काम अच्छा ही होगा, है ना। बस उसी में आ जाता है कि ये फिश स्पा। वैसे मैंने आपको गाने से पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप करवाने का मन बना भी रहे हैं और आपको लगता है कि मैं भी इस खतरे को खेल जाता हूं या खेल जाती हूं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आपके पैर जो हैं वो कहीं से भी कटे फटे ना हो। अगर हैं तो पूरे पूरे चांस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई ना कोई ऐसे रैशेस या कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी जिसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि वो जो टब है ना जिसमें आप अपना पैर को डालने वाले हैं, उसकी साफ सफाई हुई है या नहीं। पानी बहुत ज्यादा गंदा आपको लग रहा है तो कोशिश करिए कि आप वहां पर ऑब्जेक्ट करिए या ना करवाइए। हमेशा ऐसे आप जगह का चुनाव करिए, हमेशा ऐसी जगह जाइए जो बिल्कुल मतलब अच्छा एम्बियंस हो, वहां का साफ सफाई अच्छा हो और हमेशा ध्यान दिया जाता हो हाइजीन पर। और ये भी ध्यान रखिए कि जो फिशेस हैं वो अंदर आप मतलब देखिए, अब उनकी हेल्थ को आप चेक तो कर नहीं सकते कि वो मतलब हेल्थ वाइज सही है कि नहीं, लेकिन हाँ आप इतना देख सकते कि अंदर मरी मछलियां ना हो या कोई ऐसी मछली ना हो जिसकी वजह से पानी में कोई इन्फेक्शन फैल चुका हो। या सबसे बड़ी चीज, अगर आपको पहले से ही कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं या होते आ रहे हैं तो भी आप कोशिश करिए, जरूर बचिए। और हाँ, एक और चीज जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको पहले से ही इम्यूनिटी इश्यूज हैं तो भी आप फिश पेडिक्योर बिल्कुल भी ना करवाइए। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हुए एक बार आप इस खतरे को खेल जाना चाहते हैं तो बस कोशिश कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि भाई यहां से बैठ के मैं रोक भी नहीं सकती हूं, बस कह सकती हूं कि हाँ ये चीजें उतनी अच्छी नहीं है। बाकी तो मैं यही कहूंगी कि भाई आप जैसे हैं वैसे ही कोशिश करिए, बने रहे, है ना, क्योंकि हम जैसा तो कहते ना कोई भी नहीं होता है। और गाना जो अगला है ना वो भी बिल्कुल बस यही बात कह रहा है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता ना। चलिए तो एंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जो कि अब चेंज हो चुका है और बन चुका है भाई क्या है, सुरों का लखनवी एहसास। और इसी एहसास के साथ ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: रंग हमारे
1: संग तुम्हारे।
0: सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन
1: 100.7 FM रेनबो,
0: सुरों का लखनवी एहसास।
2: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
2: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
2: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों 12:52 का वक्त, मतलब वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है, सीरियसली क्या ही कहूँ। मतलब पकड़ना तो ऑब्वियसली बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है, लेकिन जो भागता ना इतनी तेज, मुझे लगता है अपनी बातें कवर करूँ, गाने सुनाऊँ, आपको क्या करूँ। खैर जो बात है वो जरूर कहूंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही प्रोग्राम के, कि ये मोरली भी अनएथिकल है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है ओवरऑल प्रोसेस में अनैतिक साउंड करती हैं या दिखती हैं। जैसे कि अगर हम इन मछलियों की बात करें जिनके थ्रू फिशिश्पा होता है, उसमें क्या होता ना कि जो फिशेस होती हैं उनको बहुत देर तक, या कहें तो 1 से 2 दिन तक कई बार भूखा रखा जाता है। और भूखा इसलिए उनको रखा जाता है ताकि वो जब पानी में आपके पैर जाएं या आपके हाथ जाएं तो वो उन डेड स्किन को खाना शुरू कर दें। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये ऑब्वियसली उन फिशेस के लिए, जो बेबी फिशेस होती हैं उनके लिए सीरियसली बहुत बुरी चीज हो जाती है। और ये भाई मछलियां आकर कहेंगी तो है नहीं कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मुझे भूखा रखा जा रहा है, हम इसलिए इस चीज को करें। लेकिन ये आई थिंक जो वहां पर हैं, जो इन चीजों को कर रहे होते हैं, उनको समझना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितनी भी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ज्यादा जो इसके कॉन्स है ना, मतलब ज्यादा इसकी नेगेटिविटी है वो ही निकल कर आ रही है। मतलब बाकी क्या होगा, आप जब करवा लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत खूबसूरती पैरों को आपके मिल जाएगी। और वो मुझे पता है कि भाई हमारे पास इतने देसी नुस्खे होते ही हैं कि वो हम आराम से कर सकते हैं। और सबसे पुरानी चीज जो अभी आई थिंक हर किसी के बाथरूम में अभी भी मौजूद होगी या घरों में होगी, ये बस लीजिए अपना लूफा, और या लीजिए अपना जो आपका स्टोन होता नहीं है, झावा जिसको बोलते हैं, बस रगड़िए अपने पैर को, देखिए शायद ये स्पा से कहीं ज्यादा आपको खूबसूरती पैरों की मिलेगी। और अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह करते हैं ना, अपने पैरों को अपने से साफ रखते हैं, तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब क्या दूर की बातें, क्या बड़ी बड़ी बातें, है ना। खैर बात करते करते देखिए 12:54 का वक्त हो चला है और ये जो टाइम है वो यही कहता है कि प्रोग्राम शत्रुपा को यहां पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तो बस जरीना को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला भी प्रोग्राम लेकर के न्यूज ब्रेक के बाद जल्दी से वापस

में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और दोपहर के 1 बज चुके हैं। समय है आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो चलिए सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम अनुरोध गीत, और इसमें आप अपने लेटर्स हम तक भेजते हैं और उन पर जो आप गाने लिखकर भेजते हैं वो गाने हम आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति नवनीत, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोसी परवीन, बिट्टू भैया, हिना कौसर और साजदार रानी। बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैन निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैन निशा, अकरम सैफी और आबाद खान। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार अफजाल, रामप्रसाद शर्मा। गैगेटर काशी धनपुर बरेली से फहीम खान, सदीक अली, साबिया, रामप्रसाद शर्मा। धूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, फजरुद्दीन अबरार और अफजाल। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रंकी, कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही स्वाति। और अब आप सभी की अनुरोध का ये गाना, फिल्म का नाम है पुष्पा, आवाज जावेद अली की।

0: जब।
1: और अब ये गाना आप सुनेंगे सोनू निगम और कृष्ण कली की आवाज में, फिल्म का नाम है परम सुंदरी। इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, एजवी खान और इनका पूरा परिवार, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, जाहिद सैफी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, आदिबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सफरुद्दीन और कुमारी डब्लू वली, और जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम उल्ला आसमा बेलदार, और साथ ही ये हैं करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप जगमोहन प्रजापति। और आप सभी के अनुरोध का ये गाना सोनू निगम, कृष्ण कली की आवाज, फिल्म का नाम परम सुंदरी।

उदित नारायण की आवाज का ये गाना आपने सुना, फिल्म का नाम और प्यार हो गया। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत।

0: और अब आप सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम बैंग बैंग, हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज में।
1: उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह।
0: इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और शीतल राजेश, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप बेबी आरजू जाजौरिया, और ये हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। और अब आप सभी के अनुरोध का ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम बैंग बैंग और जिसमें आवाज हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की।

और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और बारी है अगले गाने की, तो वो है फिल्म रेस 2 से बेनी दयाल और शर्मली खोलगड़े की आवाज़ में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। बीजराम मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष यादव, मनीष अंशिका यूसुफ और सोफिया। बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी और मुस्कान। चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम। बुधनगर खंडवा से नदीम और राजू जी। ग्राम नवागांव मुढ़ीपाल जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल, रुक्मणी, तेजेश्वर, कुशाल और इनका पूरा परिवार। विपिन कुमार शाक्य, सपना, कुलदीप, रतन शाक्य, खुशी वीरपुर पोस्ट विलसर तहसील अलीगंज एंटा यूपी से हैं। ये है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष, मोहिनी, ऋतिक, सोनी और बलवीर सिंह। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक और संदीप। रामगढ़ कैंट झारखंड से भी हैं। और ये हैं गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा। जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति। सुनते हैं आप सभी की

और ये गाना आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है क्रुक, जिसमें आवाज़ है निखिल डिसूजा की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। परी महल, कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा, आरफीन और आफरीन और असलम सैफी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश, करुणा वर्मा और लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और इनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम क्रुक, आवाज़ निखिल डिसूजा की।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत और आप सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है रुस्तम, आतिफ असलम की आवाज़। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता जो कि सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रिवार, चंद्रकला, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदरानी और हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयां, शेरकोट जिला बिजनौर से हैं, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, विपिन कुमार शाक्य, सपना, कुलदीप, रतन शाक्य, खुशी, इनका पूरा परिवार ग्राम वीरपुर पोस्ट विलसड़ अलीगंज एटा से हैं, महेशपुर खेम मुरादाबाद से हैं, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार, छबीलपुर गन्नौर उत्तर प्रदेश से हरवेश कश्यप, अरजीत, दिव्यांश और गायत्री ये हैं, नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम दिवांगन, कृष्णा दिवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से, इलियास इद्रीसी, नाजरा इद्रीसी, नईम, नदीम, असद बाबू, शीशगढ़ बरेली से। और आप सभी के अनुरोध का ये गाना सुनते हैं जो कि है फिल्म रुस्तम से आतिफ असलम की आवाज़ में।

तो ये गाना आपने सुना, कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म का नाम क्या कहना। इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी बरेली से, और जो अगला गाना है वो है क्या दिल ने कहा, फिल्म से उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जुबैन शाह, अकरम सैफी, आबाद खान, बिल राम गेट कासगंज से एम असलम सैफी और जुबैन निशा, अकरम और आबाद खान, साथी इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम, नूरजहां राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और इनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म क्या दिल ने कहा से अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में।

और आप सुनते हैं फिल्म ड्राइव से ये गाना, जिसमें आवाज है एशेस कौर और यासीर देसाई की। इस गाने को आप सुनना चाहते हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील आरफा इल्मा आरफीन और असलम सैफी, रंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की खड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सारिका श्रीवास्तव के गाए इस मधुर लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये लोकगीत, स्वर था मृदुला निगम का। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल का गाया ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की गाई ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारत

0: अभी आपने सुना चश्मे बहादुर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

0: यार।
1: सुनाली आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती शुभ।
0: क्या हाल चाल
1: बिल्कुल ठीक,
0: मजे में है।
1: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
0: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कि धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
0: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
1: बिल्कुल, और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
0: नेकी और पूछ
1: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली।
0: यानी हर घर का यही हाल होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये
1: हाँ
0: प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
1: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
0: घर में का कोई एक सदस्य कह देता कि रुको रुको
1: वो
0: फेंको
1: मेरे
0: मत,
1: काम का
0: हाँ
1: है।
0: फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है।
1: उन्हें तो हम खास तौर पे संभाल के रखते हैं।
0: हाँ अरे नहीं नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमके कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे
1: बिल्कुल।
0: ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय
1: बिल्कुल
0: पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह।
0: या फिर वो
1: जी
0: अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल, और हम साथ में लेकर आए हैं सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो कि सह संस्थापक हैं एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
1: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना कि हाँ सखा हमारे
0: मजेदार।
1: बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे, वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है
0: ये
1: या फिर खुश
0: अरे
1: हो
0: अभी तो कल
1: जाते
0: ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए। या
1: हैं।
0: फिर करेले सबने खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया
1: इसे तो
0: सब्जी
1: हमें चले
0: लाने के
1: जाती
0: लिए।
1: है। बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते कि
0: फेंक
1: भाई
0: भी नहीं
1: चलो
0: सकते
1: अगले
0: और
1: दिन
0: रख
1: खा
0: भी
1: ले,
0: नहीं
1: ऐसा भी नहीं।
0: सकते।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर
0: वो
1: सकें।
0: चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव
1: हाँ
0: होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी
1: बिल्कुल
0: हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की, तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली वो है घाव पर नमक छिड़कना।
0: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जान

0: जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
1: या
0: क्या।
1: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
0: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है, छोड़नी हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। तो
1: और
0: आज हम अपनी एक बहुत

0: अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने
1: प्रेरणादायी
0: बिल्कुल
1: जी।
0: जिन्होंने प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जिन जो संस्था सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल, उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल, और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, कि यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी, और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे, और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं। सर
0: आसिफ अंसारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी मैं एक्चुअली तो सिलाई का काम करता हूँ, रहने वाला एक छोटे से गाँव राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ।
0: अच्छा जी, तो कैसा चल रहा है आसिफ अंसारी जी आपका काम?
1: जी काम तो अच्छा चल रहा है और साथ साथ आपका आकाशवाणी बरेली भी चल रहा है।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आप आकाशवाणी बरेली के साथ जुड़े हुए हैं और इतनी दूर रहकर भी हमसे जुड़े रहते हैं। और बताइए,
1: न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं।
0: तो कौन सा कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
1: जी आपका पत्र मिला और एक युवाड़ी है और अच्छा। मत्स्य पालन के ऊपर कृषि वाला आता है वो भी जी, हमको बहुत जी, अच्छा जी। लगता है और ये सबसे फेवरेट तो यही है आपकी बात आकाशवाणी।
0: हाँ, इसमें श्रोता जो है सीधे जुड़ पाते हैं और अपने विचार जिस विषय पर बात की जा रही है उस पर रख पाते हैं। तो आज जो हमारा विषय है बात करने का वो है नेत्रदान क्यों जरूरी है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
1: जी सर, नेत्रदान और अंगदान बहुत जरूरी है ताकि दूसरों को हम मतलब रोशनी दे सकें, आप दूसरों की जिंदगी भी बचा सकें।
0: जी
1: इसलिए मेरा मानना है सर ये बहुत ही जरूरी है, अभी तो इसका विश्व दिवस भी मनाया गया है।
0: जी जी जी
1: जी ये बहुत ही जरूरी है।
0: हाँ, तो
1: कि हमारी आंखें दूसरे को देखने में उसको सहयोग मिले।
0: जी बहुत से लोग घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होता होगा, है ना, तो इस विषय पर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और
1: जी सर, जागरूक होने की बिल्कुल आवश्यकता है सर, आजकल उतना ग्रामीण इलाके में उतना जागरूक नहीं है ना
0: जी
1: लोग।
0: तो आसिफ अंसारी जी अब बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: जी एक सॉन्ग है ये दिल आशिकाना का।
0: जी
1: हाँ, अल्लाह अल्लाह करके सॉन्ग ले।
0: ठीक है आसिफ अंसारी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं अभी, बताइए अपना नाम।
1: हम सुनील कुमार बोल रहे हैं, चनेटा से जो बरेली कैंडी आ गए।
0: जी सुनील कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, और बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: बस सर प्रोग्राम आपके सुन रहे हैं
0: जी,
1: और बैठे हैं, करते हैं।
0: बिल्कुल, प्रोग्राम सुनते रहिए, आकाशवाणी बरेली के साथ रहिए। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि नेत्रदान क्यों जरूरी है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: सर इस तो ये कहना चाहेंगे कि आप नेत्रदान जरूर करें, हम अपने सभी से रिक्वेस्ट करेंगे
0: जी,
1: क्योंकि जिनकी कल्पना खराब हो जाती है उनको ट्रांसलेस कर दिया जाता है, लगा देते हैं डॉक्टर लोग, तो उनको उजाला मिल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इससे बड़ा दान कोई है नहीं, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और किसी को अपना अंग दे रहे हैं
0: जी,
1: तो जो जिंदगी भर याद भी रहेगा कि हाँ उस व्यक्ति ने मुझे
0: जी,
1: और उजाला मिलेगा तो हमेशा याद, और इससे बड़ा दान ही कोई नहीं है
0: जी, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुनील कुमार जी, और ये हम सभी को अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए कि हम नेत्रदान या अंगदान जैसे जो कार्य हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जो हमारे साथी हैं जिनको इसकी कमी है तो वो पूरी की जा सके और वो भी अच्छे से अपने जीवन को जी सके, है ना?
1: बिल्कुल सर।
0: तो सुनील कुमार जी अब बताइए अपनी पसंद का गीत।
1: सर फिल्म आए इम्तिहान
0: जी,
1: आज विनोद राठौर के बाद गाना है, तेरे बगैर जिंदगी गुजार लेंगे हम,
0: तेरे बगैर जिंदगी गुजार लेंगे हम। ठीक है सुनील कुमार जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवनगर जमपतपुर तहसील औला जिला बरेली से।
0: सद्दाम अली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं आपसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नेत्रदान क्यों जरूरी है, इस विषय पर आपके विचार।
1: जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर, बहुत ही अच्छा विषय रखा है आपने। मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि नेत्रदान हमें जीवन में जरूर करना चाहिए। जैसे कोई हमारा व्यक्ति है, उसकी मान लो एज निकल चुकी है और वो उसकी आंखें स्वस्थ हैं,
0: हाँ।
1: वो जीवन अपना अंतिम सांस ले रहा है, तो उसे नेत्रदान कर देना चाहिए। उन आंखों से किसी दूसरे को जीवन मिल सकता है,
0: बिल्कुल,
1: और किसी दूसरे को रोशनी मिल सकती
0: जी,
1: है,
0: उसके जीवन में रोशनी आ सकती है।,
1: है
0: जी। हमारा ये कार्य जो है उसके जीवन में अंधकार में जीवन में रोशनी ला सकता है
1: जी सर।
0: तो सद्दाम अली जी बिल्कुल, हमारे और सभी श्रोताओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और अंगदान है, मतलब जो भी नेत्रदान
1: है, ये रक्तदान है, नेत्रदान है, ये बहुत जरूरी चीज है। शरीर का कोई भी अंग सही सर सभी काम में आ जाते हैं दूसरे व्यक्ति के जीवन देने के लिए
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सद्दाम अली जी, अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत।
1: सर आज मुझे सर इसी के ऊपर गीत सुनना है, फिल्म का नाम है रंग और गीत के बोल है तुम्हें देखे मेरी आंखें।
0: बहुत सुंदर गीत आपने चुना है सद्दाम अली जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सर।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी सर, बरेली तहसील नौला ग्राम धनौरा, ओम शरण मिश्रा जी बात कर रहा हूँ।
0: ओम शरण मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है नेत्रदान क्यों जरूरी है, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: सर जी बहुत अच्छा विषय रखा है, इससे बड़ा हमें प्रशंसा हुई। सर जी नेत्रदान तो बहुत अच्छी बात है, और सर जिसके मैं सर खुद ही आंखों से अभी एक साल पहले सर मेरी भी दिक्कत हो चुकी है।
0: अच्छा।
1: मैं भी सर ऑपरेशन कराया है, मेरे भी आंखों में दिक्कत है सर
0: जी।
1: तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बहुत इंसान को मतलब एक नया जीवन दान देना है, और बड़ा पुण्य का कार्य है, इससे बड़ा तो कोई पुण्य नहीं है सर।
0: बिल्कुल,
1: हमारी लाइफ तो ये है,
0: इसकी जो महत्ता है, इसकी वैल्यू जो है वही समझ सकता है जिसके पास इस चीज की कमी है ना
1: जी सर।
0: तो
1: जी सर।
0: उसकी जरूरत जो है वो ही इंसान ज्यादा समझ सकता है, और बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने कहा कि भाई किसी का अंधकार में जीवन है, तो उसको अगर आप नेत्रदान करके उसके जीवन में उजियारा फैला सकते हैं, बहुत पुण्य का काम है
1: सर। हमारी समझ से तो इंसान को एक टाइम को सर अगर चाहे कानों से नहीं सुना, मगर नेत्र से तो देखना चाहिए, उसके बिना तो उसकी दुनिया बेकार है।
0: बिल्कुल,
1: मेरा सर अभी पिछले साल को ऑपरेशन कराया, मेरा डायबिटीज की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी।
0: ओहो, तो अब कैसे हैं आपके आंखें?
1: अब सर थोड़ा है फायदा, पहले से फायदा है।
0: ये विषय कितना महत्वपूर्ण है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना
1: जी।

0: जी, क्योंकि
1: और मेरे
0: आप
1: पे तो बीत रही है। मैं तो समझ रहा हूँ कि ऐसी
0: बिल्कुल
1: चीज किसी इंसान को मिल जाए, मैं बाहर होता मैं तो ये सोचता भाई जब हम पे बीत रही है जाने कितने मेरी माता बहने भाई बहन होंगे उनको कर दो तो बहुत ही पुण्य का कार्य, इससे बड़ा तो
0: बिल्कुल
1: कोई पुण्य है ही नहीं सर।
0: बिल्कुल सही बात कही है आपने। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, महादान कहलाता है। और हम सभी को नेत्रदान, रक्तदान जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, है ना
1: जी सर
0: जी।
1: बिल्कुल सर।
0: तो ओमकरण मिश्रा जी, अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत।
1: सर जी पसंद गाना का ये है वही आंख नम और ये दिल मुस्कराया, कर्सक मूवी का
0: हाँ
1: नाम तो पता नहीं, मैं
0: कोई
1: गाना
0: बात
1: क्या
0: नहीं,
1: बोला आपके लिए बता दे रहे। थैंक
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।
1: थैंक यू सर।
0: जी
1: थैंक यू
0: वेलकम, आपने हमें फोन किया।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए, स्वर परीक्षा हेतु सूचना। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ और हमारा आज का विषय है नेत्रदान क्यों जरूरी है। इस विषय पर हमने आपको श्रोताओं के विचार सुनवाए और अब बारी है उन श्रोताओं के विचारों की जिन्होंने अपने विचार लिख भेजे हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर। ये हमारे श्रोता हैं प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी नई दिल्ली से लिखते हैं कि अच्छा टॉपिक है, अगर जाते जाते किसी का भला हो जाए, इस शरीर ने तो मिट्टी ही हो जाना है ताकि कोई दूसरा इस खूबसूरत दुनिया को देख पाए। नेत्रदान महादान के बराबर होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम तो जा ही रहे हैं, हमारी आंखों से किसी और की दुनिया रोशन हो जाएगी, तो इससे अच्छी क्या बात है। बहुत सुंदर प्रदीप सलूजा जी। और ये हमारे श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ जी, चंद्रकला रेवाड़ जी लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है। नेत्रदान क्यों जरूरी है, क्योंकि नेत्रदान करने से एक बार फिर यह संसार में उजाला आ जाता है। किसी जरूरतमंद को नेत्रदान करने से ये दुनिया उसके लिए रोशन हो जाती है, इसलिए हमेशा नेत्रदान करना चाहिए। यह प्रोग्राम बहुत ही प्रेरणादायक पेश किया जा रहा है, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार रेवाड़ जी। और आपने बहुत सही बात लिख भेजी है कि भाई किसी और जरूरतमंद की दुनिया भी रोशन होनी चाहिए, क्योंकि इसका दर्द वही समझ सकता है जिसके पास ऐसी समस्या है। और ये हमारे एक और श्रोता हैं विष्णु मिस्किन जी, रितिका आरोही और आपके बहुत सारे साथी दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं कि नेत्रदान सिर्फ आंखें दान करना नहीं बल्कि किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला देने का संकल्प है। मृत्यु के बाद हमारी आंखों के

संकल्प है। मृत्यु के बाद हमारी आंखों के उपयोगी कॉर्निया से किसी जरूरतमंद को दृष्टि मिल सकती है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन नेत्रदान की खूबसूरती यह है कि इंसान इस दुनिया से विदा होने के बाद भी किसी के जीवन में रोशनी बनकर रह सकता है। धन संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन किसी की आंखों में लौटाई गई रोशनी हमेशा एक महान इंसानी याद बन जाती है। इसलिए नेत्रदान महादान है, क्योंकि जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन हमारी आंखों से किसी की दुनिया हमेशा रोशन हो सकती है। बहुत सुंदर बातें आपने लिख भेजी हैं, आपके विचार बहुत उत्तम हैं विष्णु मिस्किन जी और आपके समस्त साथी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हम आज जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है नेत्रदान क्यों जरूरी है। हमारे आप सभी श्रोताओं ने बहुत सुंदर विचार लिख भेजे हैं, और ये हमारे श्रोता हैं बनवारी लाल जयपाल जी, लिखते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, नेत्रदान क्यों जरूरी है, लोगों में आज भी कुछ भ्रांतियां हैं, कैसे दूर करें, बहुत ही सुंदर विषय लेकर आए हैं। बिल्कुल, विषय तो बहुत सुंदर है बनवारी लाल जयपाल जी, और सुंदर हो जाता यदि आप इस विषय पर कुछ अपने विचार भी लिख भेजते। और ये हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य जी, कटरा चांदखा पुराने शहर बरेली से, लिखते हैं कि नेत्रदान सिर्फ आंखें दान करना नहीं बल्कि किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला देने का संकल्प है। मृत्यु के बाद हमारी आंखों के उपयोगी कॉर्निया से किसी जरूरतमंद को दृष्टि मिल सकती है। बिल्कुल अनोखे लाल जी, हमारी आंखें जो हैं हमारे जीवन के बाद भी इस दुनिया में रहेंगी और किसी और की दुनिया को रोशन करेंगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल, और यह हमारे श्रोता हैं एडवोकेट वारिस अली खान जी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, लिखते हैं कि प्रिय उद्घोषक जी नमस्कार। तो नमस्कार जी आपको, और आगे लिखते हैं, नेत्रदान करना इसलिए जरूरी है कि किसी के जीवन में हमारी आंखें उजाला भर सकती हैं, उसकी अंधेरी दुनिया में उजाले से उसके जीवन में खुशियों की बहार आ सकती है। सबसे बड़ी बात, हमारे इस दुनिया में न रहने के बाद भी हमारी आंखें तो जिंदा रहेंगी, इसलिए नेत्रदान करना हम सबका धर्म है। बिल्कुल, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है कि हम अंगदान करें, नेत्रदान करें और रक्तदान भी करें। यह हमारे श्रोता हैं ग्राम बपोत हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी जी, लिखते हैं नेत्रदान करना मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा काम नहीं बल्कि एक नेक और इंसानी फर्ज निभाने जैसा होगा। इंसान इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी और उम्मीद छोड़ सकता है। नेत्रदान के जरिए किसी ऐसे इंसान को नई रोशनी मिल सकती है जिसकी दुनिया अंधेरे में गुजर रही हो। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती होगी कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखें किसी की दुनिया को रोशन करने का सबब बने। यह एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान अपने बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद पैदा कर सकता है। नेत्रदान समाज के लिए एक बेहद अजीम खिदमत है। हमें इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए और नेत्रदान से जुड़े सही नियमों व चिकित्सकीय प्रक्रिया की जानकारी लेकर ही संकल्प करना चाहिए। आखिरकार जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि किसी के काम आना भी है। अगर मेरे जाने के बाद मेरी आंखों की रोशनी किसी की जिंदगी में उजाला ला सके तो इससे बेहतर इंसानी विरासत मेरे लिए और क्या होगी। बहुत सुंदर शाहरुनूर अंसारी जी, आपने बहुत विस्तार से अपने विचार लिख भेजे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी, लिखते हैं कि बेकार हैं आंखें, अगर नूर नहीं है तो मुझसे जुदा हो, मुझे मंजूर नहीं है, एक बार तुझे देख लूं, हसरत है दिल की, आजा अगर आने से मजबूर नहीं है। नेत्रदान करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें दान कर देता है तो बहुत खुशी की बात है। वो ये कि अगर हम अपनी आंखें किसी को दान कर दें तो हमारे बाद भी हमारी आंखें हमारे ना होने पर भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेंगी। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखें दान करें। बहुत सुंदर लाल मोहम्मद अंसारी जी, बिल्कुल हम सभी को नेत्रदान के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये हमारे श्रोता हैं कटरा चांदखा पुराने शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य जी, लिखते हैं कि दृष्टिहीन लोगों को जीवन देने के लिए नेत्रदान जरूरी है। भारत में लाखों लोग कॉर्निया से संबंधित परेशानी का शिकार हैं। मृत्यु के बाद दान की गई कॉर्निया से दो दृष्टिहीन लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। ये समाज के प्रति एक महान और निस्वार्थ योगदान। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हम जब अपनी आंखें दान करते हैं तो उससे दो लोगों के जीवन में रोशनी आती है, दो लोगों का जीवन जो है अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाता है। और एक और हमारे श्रोता हैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा और ऋषि नारायण कुशवाहा जी, लिखते हैं नेत्रदान महादान, जो भाई बहन आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए नेत्रदान करना चाहिए ताकि वो भी आंखों से अपने सपने साकार कर सकें। जय ही रामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से हमारे श्रोता। और भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं अपने विचार, उनको भी साझा करेंगे आपके साथ, लेकिन आइए पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं आपसे वो है नेत्रदान क्यों जरूरी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने फोन पर बातचीत की और हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने विचार लिख भेजे हैं। हमारे एक और श्रोता हैं जिनके विचार हम आपको सुनवाते हैं। ये हैं कटरा चांद खां पुराने शहर बरेली मौर्य मंदिर से मुकेश मौर्य जी। लिखते हैं कि नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही हो सके तो खून को भी दान करना चाहिए ताकि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। बिल्कुल, हमको रक्तदान भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। थैलीसीमिया वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, और भी अन्य लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, और इस रक्तदान को करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात। और कोई भी अंगदान हो, हम सभी को इन सारे जो परोपकार के कार्य हैं इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। नेत्रदान भी बहुत ज़रूरी है, महादान है, रक्तदान को भी महादान कहा जाता है। ये सब बहुत आवश्यक हैं और हम सभी को रक्तदान, नेत्रदान जैसे पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है।

साथियों, नेत्रदान एक महान और मानवता से जुड़ा हुआ कार्य है। हमारे समाज में बहुत से लोग आंखों की रोशनी खोने के कारण सामान्य जीवन नहीं जी पाते। नेत्रदान के माध्यम से मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इससे वह व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, अपना काम कर सकता है और आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथियों, नेत्रदान करने से हमारे शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ सकता है। ये केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि उसके परिवार के जीवन में भी खुशी और आशा लाता है। इसलिए लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। साथियों, हमें अपने परिवार और मित्रों को भी नेत्रदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी के लिए नई रोशनी का कारण बन सकती हैं, इसलिए नेत्रदान को मानव सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। साथियों, ये वास्तव में मृत्यु के बाद भी जीवन में प्रकाश बांटने का महान संकल्प है और ये संकल्प हम सभी को मिलजुल कर लेना चाहिए।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

श्रोताओं 5:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें आज चर्चा की जाएगी नेत्रदान पखवाड़ा पर और आंखों की सफाई का रखें ख्याल इस विषय पर। साथ ही सुनवाएंगे आपको सरताज से वार्ता, विषय रहेगा नेत्रदान और नारी शक्ति। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा 6:00 का, जिसमें आप सुनेंगे नेशनल नेत्रदान पखवाड़ा पर चर्चा और हमारे किसान साथियों का प्रिय कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें आज की बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर और साथ ही हेलो किसान में विशेषज्ञ होंगे दुर्गा दत्त शर्मा जी और विषय रहेगा मछली पालन हेतु योजनाएं व सुविधाएं। साथ ही सुनवाएंगे आपको मौसम, कृषि समाचार, सवाल और नसीहत। ग्राम जगत, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:00 से, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण विकास और ग्रामवासी और गुलफाम रजा से सुनवाएंगे आपको वार्ता, विषय है नेत्रदान मिथक व सच्चाई।

श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा 7:31 का। आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम का। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातः 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यंग बरेली। 8:45 का समय रहेगा लोकगीतों का। प्रातः 9 आपको जोड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें महा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 10 से। 11 का समय रहेगा कार्यक्रम सब रंग का। 1:30 रेनबो के कार्यक्रमों से आपको जोड़ेंगे कल 11:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 1 से। दोपहर 2 का समय रहेगा कार्यक्रम रसरंग का, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे गजल, कव्वाली और लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा कल 3:30 का। आपकी बात आकाशवाणी के साथ, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 4 से।

श्रोताओं, भजन संध्या का समय रहेगा कल शाम 5:05 का। महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार प्रसारित किया जाएगा कल शाम 5:30 पर, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे नेत्रदान एक संकल्प दो जिंदगियों में उजाला और नेत्रदान मिथक और सच्चाई। साथ ही सुनवाएंगे आपको वार्ता शिवानी से, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण के स्तंभ। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह कल शाम 6:00। कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 6:30 का, जिसके अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा समय बहुत बलवान और सुनवाएंगे आपको कृषि गोष्ठी, विषय है खेती को लाभकारी कैसे बनाएं। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा कल शाम 7:31 का, विषय रहेगा डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। श्रोताओं, यह था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हो चुके हैं और ये समय है भजन संध्या का। श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण के गाए इस मधुर भजन के साथ।

0: श्रोताओं, अनूप जलोटा की गाई इसी भजन के साथ भजन संध्या का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना प्रिय कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार बहनों, आज आपके साथ हूँ मैं शिल्पी। और बहनों, एक बात आपसे साझा करनी थी कि जो हमारी आँखें हैं वो अनमोल होती हैं, क्योंकि हम अपनी आँखों से ही इस दुनिया को देख सकते हैं। और इसी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल भारत में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस पखवाड़े को मनाने का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाना है। चश्मा लगाने वाले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके लोग

और मधुमेह के मरीज भी नेत्रदान कर सकते हैं। एड्स, रेबीज, कैंसर, हेपेटाइटिस और टिटनस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान एक महान काम है जो दृष्टिहीनों को दृष्टि का उपहार दे सकता है। बहुत से लोग आँखों की बीमारियों या चोटों के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं, लेकिन नेत्रदान की मदद से वो फिर से इस दुनिया को देख सकते हैं। मृत्यु के बाद नेत्रदान करने से जीवन का किसी और का जीवन बदल सकता है और उसके परिवार में खुशियां आ सकती हैं। दुनिया में लाखों लोग दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं और वो अपने प्रियजनों को देखने, प्रकृति का आनंद लेने या साधारण रोज़मर्रा के काम करने में भी असमर्थ होते हैं, लेकिन नेत्रदान ऐसे लोगों की दृष्टि बहाल करके और उन्हें सामान्य जीवन दे सकता है। तो आप भी नेत्रदान करने का संकल्प लें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

0: बहनों, नेत्रदान कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं सरताज फातिमा जी। तो आइए जानते हैं सरताज फातिमा के विचार, और विषय है नेत्रदान और नारी शक्ति।
1: नेत्रदान और नारी शक्ति धुंधली जिंदगी को दे नया आयाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सरताज फातिमा, और आज हम एक बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और समाज को नई रोशनी देने वाले विषय के साथ आपके बीच हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है संवेदन नयन प्रधानम, यानी हमारा देश शरीर के सभी अंगों में आंखें सबसे प्रधान है। इस खूबसूरत दुनिया के रंग, अपनों की मुस्कान, उगते हुए सूरज की लालिमा, और ये सब हम इन आँखों से ही तो देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए उनके बारे में जिनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है और इस दुनिया को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की, और विशेष रूप से महादान में हमारी महिलाओं के योगदान की। महिलाएं जो खुद इस समाज की रोशनी है, वो किस तरह दूसरों की जिंदगी का अंधेरा दूर करने में सबसे आगे आ रही हैं। संवेदना, करुणा और ममता, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो किसी भी महिला के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। जब बात हम किसी की मदद करने की हो, तो महिलाओं का दिल सबसे पहले पिघलता है। परिवार में जब कोई बीमार होता है, तो सबसे पहले माँ, बहन या पत्नी ही आगे आती है। यही संवेदनशीलता उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी सबसे आगे रखती है। नेत्रदान कोई साधारण दान नहीं है, यह जीते जी किया जाने वाला संकल्प है और मृत्यु के बाद पूरा होने वाला एक पावन व्रत है। भारत में लाखों लोग देख नहीं पाते, इनमें से अधिकांश लोग की दृष्टि तो एक साधारण से ऑपरेशन यानी कार्निया ट्रांसप्लांट के जरिए वापस लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है एक स्वास्थ्य कार्निया की, जो सिर्फ नेत्रदान ही मिल सकता है। यहाँ महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाएं केवल स्वयं के नेत्रदान का संकल्प नहीं ले रही, बल्कि वे अपने पूरे परिवार को इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। वे समाज में फैली भ्रांतियों को तोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी हैं। हमारे समाज में आज भी नेत्रदान को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो कुछ को यह डर सताता है कि अगले जन्म में वो अंधे पैदा होंगे। ये सब पूरी तरह वैज्ञानिक आधारहीन बातें हैं। इन रूढ़िवादी विचारों को बदलने का बीड़ा आज हम महिलाओं ने उठाया है। घर की महिलाएं, जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होती हैं, वे अब इस बात को समझ चुकी हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब एक शिक्षित और जागरूक महिला अपने घर में नेत्रदान की बात करती है, तो वो पूरे परिवार की सोच नेत्रदान की को बदल सकती है। आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस मुहिम को घर घर पहुंचा रही है। वे महिलाओं को बताती हैं कि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान होना जरूरी है, और इस कीमती समय में सही फैसला लेना कितना बड़ा पुण्य का काम है। इतिहास और वर्तमान गवाह है कि महिलाओं ने इस क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। आज हमारे देश में कई ऐसी महिला डॉक्टर, स्पेशल वर्कर और आम गृहिणियां हैं, जिन्होंने दुख की घड़ी में भी एक महान फैसला किया। कल्पना कीजिए उस माँ की, जिसने अपने युवा बेटे या बेटी को खो दिया हो, उस असहनीय दुख के क्षण में भी जब एक माँ ये फैसला लेती है कि मेरे बच्चे की आंखें किसी और की जिंदगी को रोशन करेंगी, तो वह समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां माताओं और पत्नियों ने रूढ़िवादी

0: पारिवारिक दबावों के खिलाफ जाकर अपने दिवंगत प्रियजनों की आंखें दान करवाई। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ और आई बैंक कोऑर्डिनेटर रात दिन काम कर रही हैं। आप खुद ही नेत्र दान का संकल्प लें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए फॉर्म भरने की सलाह दें। आपके द्वारा लिया गया एक छोटा सा संकल्प किसी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस रेडियो वार्ता का सार यही है कि नारी सिर्फ अपनी जीवन देती है नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से वह मृत्यु के पास भी किसी की जिंदगी को रोशन करने की क्षमता रखती है। महिलाओं का यह योगदान समाज की एक नई दिशा दे रहा है। चलते चलते बस यही दो पंक्तियां कहना चाहूंगी, जाते जाते भी दुनिया को कुछ ऐसा दे जाएं, अपनी आंखों से हम किसी और की दुनिया को महकाएं। उम्मीद है आज की यह चर्चा आपके दिलों को छुएगी और आप भी इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे और अपने दोस्तों को और अपने समाज को, सबको इस काम के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुने सरताज फातिमा जी के विचार और विषय था नेत्रदान और नारी शक्ति।

0: आजकल जैसा मौसम चल रहा है बारिश का, ऐसे में इन्फेक्शंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारी आँखों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हमें अपनी आँखों का कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ शोभना जी हैं, जो हमारे एक जो निजी अस्पताल है उसमें कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं, हम पूछते हैं इनसे कि अगर हम हमारी भी आँखों में कुछ जलन की समस्या हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो तो हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो शोभना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी संसार में।
1: धन्यवाद शिल्पी जी। देखिए,
0: मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो फंगल इन्फेक्शन होते हैं और बॉडी में भी और डिजीजेज हो जाती हैं, तो इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी आँखों में परेशानी होती है, आई फ्लू हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए?
1: आज आज के टाइम पे जैसा मॉनसून चल रहा है, जो मॉनसून तो वैसे भी कई बीमारियों का कारण बनता है, तो इसमें अधिकतर जितना भी इन्फेक्शन है आँखों का वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, और जो स्पोर्स रहते हैं फंगस के
0: जी
1: वो आँखों को इन्फेक्ट करते हैं। अगर आँखों में किसी भी प्रकार की खुजली है या जलन है या लाल पड़ रहा है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार लेने चाहिए, और प्राथमिक उपचार में सबसे पहले करना चाहिए कि उन आँखों को जो भी संक्रमित हैं उनको ठंडे पानी से धुलें।
0: जी अच्छा, ठंडे पानी से धोते रहें, और कई बार ऐसा होता है कि आंखों में चिपचिपाहट होती है, सूजन जलन ऐसा होने लगता है, तब उन केसेस में क्या करना चाहिए?
1: लगातार आपको आंखें अपनी साफ रखनी चाहिए,
0: जी
1: और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है
0: हाँ
1: तो आपको पास के ही किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और इनसे हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं।
0: अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ भी आई ड्रॉप रखी हुई है तो मोस्टली ये देखने को मिलता है कि आई ड्रॉप डाल लो, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जो आई ड्रॉप रखी होती है वो डालनी चाहिए।
1: नहीं, ऐसे ही रखी हुई कोई भी आई ड्रॉप नहीं डालनी चाहिए, क्यों आंखों का मामला है हमारी, यानी इंद्रियां हैं, तो मैं तो यही कहूँगी ना आई ड्रॉप डालें, ना कोई निवोरी आती है वो डालें, ना कोई तेल वगैरह, कुछ नहीं, आप उसको साफ साफ रखें।
0: और वैसे भी जैसे ये भी होता है कि अगर हम साफ सफाई से रहते हैं, अपना टॉवल है वो अलग रखते हैं, और हैंड टॉवल या हैंकी जो है वो अपनी आँखों पे हमेशा साफ ही यूज़ करना चाहिए, और अगर जलन भी मचती है तो ये होता है कि पानी से अगर हम धो लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं।
1: हाँ, इन दिनों में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इस वजह से अपना जो भी आप रुमाल या तौलिया यूज़ कर रहे हैं वो अपना अलग रखें और उस तौलिया को हर दिन धुलें।
0: और ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हमने खाना खाया या कोई चीज़ खाई है तो उसके बाद हमें हैंड वॉश बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद ही आँखों में हाथ लगाना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी कोशिश तो यही की जानी चाहिए कि हाँ आँखों को कम से कम छुआ जाए।
0: बिल्कुल, तो आपने आज हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारी बहनों को बताया कि अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप हल्के में ना लें और अपनी आंखों का ख्याल रखें, क्योंकि आंखें अनमोल होती हैं, हमारी आंखें ही हैं जो इस सुंदर सी दुनिया को देख पाती हैं। तो शोभना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद शिल्पी जी।

आंखें हमारे शरीर का अनमोल हिस्सा हैं और इनकी सफाई और देखभाल बहुत ज़रूरी है। धूल और गंदगी से बचने के लिए साफ पानी यूज़ करें, हाथों को धोएं और आंखों को बिल्कुल भी ना रगड़ें। स्वस्थ आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और संतुलित आहार लें। बाजार के खाने से बचें और ज़्यादा तेल, मिर्च, मसालों, खटाई, मीठा, इन सभी चीज़ों से बचें। अच्छा खाएं और भरपूर नींद लें। आंखों को छूने से पहले हाथ साफ पानी से ज़रूर धोएं और पलकों को साफ करने के लिए मुलायम गीले कपड़े का यूज़ करें। आंखों को रब नहीं करें, इससे आंखों में जख्म हो सकते हैं। तेज़ धूप और धूल मिट्टी से आंखों को बचाने के लिए चश्मा या गॉगल ज़रूर लगाएं और साल में एक बार नेत्र विशेषज्ञ से आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ। और इसी के साथ दीजिए शिल्पी को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम युववाणी का। और कार्यक्रम युववाणी लेकर स्टूडियो में आ चुकी हैं प्रज्ञा पाठक और शिवांगी अग्रवाल।

0: हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में
1: जी और मैं हूँ आपकी को होस्ट शिवांगी अग्रवाल।
0: तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज युववाणी होगा थोड़ा अलग क्योंकि आज है हमारे साथ हमारी दोस्त शिवांगी।
1: तो दोस्तों आज सिर्फ बातें नहीं होगी, होगी थोड़ी हंसी मजाक और ढेर सारा एंटरटेनमेंट,
0: क्योंकि जिंदगी में मोटिवेशन जरूरी है लेकिन मोटिवेशन के साथ आपकी मुस्कान भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जो युवा हर बात में टेंशन ढूंढ लेता है उसे कभी कभी अपनी जिंदगी में इसके पैड का बटन भी ढूंढना चाहिए।
1: जी बिल्कुल प्रज्ञा, तो आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी से। रास्ते मुश्किल हों तो हौसला कम मत करना, रास्ते मुश्किल हों तो हौसला कम मत करना, गिर जाओ अगर तो खुद से गिला मत करना, मंजिल उन्हीं को मिलती है इस दुनिया में, मंजिल उन्हीं को मिलती है इस दुनिया में जो चलते रहते हैं, बस चलना बंद मत करना।
0: वाह शिवांगी क्या बात कही आपने। तो दोस्तों हमारी पूरी बातचीत आज इसी बात के आसपास घूमेगी कि क्या हमारे अंदर वो जज्बा अभी भी मौजूद है जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए। अच्छा शिवांगी एक सवाल पूछूं मैं आपसे?
1: जी पूछिए।
0: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज का जो युवा है उसे कुछ करना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं खुद को लेकर उलझा रहता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, कभी दोस्तों की जिंदगी सोशल मीडिया पर देखकर लगता है सबकी जिंदगी इतनी शानदार है सिर्फ मेरी ही क्यों नहीं, किसी का सिलेक्शन हो गया तो हम परेशान।

0: किसी की नौकरी लग गई तो हम परेशान, किसी ने नया बिजनेस शुरू कर दिया तो हम परेशान।
1: और किसी ने फोटो डाल दी फीलिंग ब्लेस्ड लिख के, तो हम सोचते हैं भाई मेरे साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है।
0: जी, लेकिन असली बात तो ये है कि हमें दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हर युवा अपनी यात्रा खुद तय करता है। कहीं का रास्ता जिंदगी पर खुलता है, कहीं थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी खूबसूरत होता है।
0: जी, तो इससे तो मुझे यही समझ आता है कि जो भी करना है उसे जल्दी करो, टालो मत।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे हमें अभी टालना नहीं है, हमारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं ना एंटरटेनमेंट, तो उनका पूरा करवाना है, लेकर आए हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: वेलकम बैक दोस्तों। आज के सेगमेंट का नाम हमने क्या रखा है, कहाँ खो गया युवा। दोस्तों, कभी शांत बैठकर आपने खुद से सवाल पूछा है कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, या लोगों की चिंता करी है कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ, ये सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल प्रज्ञा, और मैं कहूंगी कि हमारे युवा इसके लिए एक बहुत आसान सा काम कर सकते हैं। एक कागज लीजिए और उस पर 3 सवाल लिखिए। पहला, मुझे किस काम से खुशी मिलती है? दूसरा, मैं किस काम में ज्यादा अच्छा हूँ? और तीसरा, अगर मुझे असफलता का डर ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा?
0: बिल्कुल सही बात है शिवांगी, और मुझे लगता है जो तीसरा सवाल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हमारी क्षमता नहीं, हमारा डर होता है। और डर के आगे सिर्फ जीत नहीं होती, डर के आगे आपकी असली पहचान होती है। तो आज से डर को दुश्मन मत समझिए, उसे अपना शिक्षक बनाइए।
1: जी प्रज्ञा, तो मुझे एक बात बताइए आप, अगर कोई युवा आज हमसे पूछे मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे?
0: हाँ, मैं उसे कहूंगी शिवांगी कि वो बहुत कुछ कर सकता है। देश बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़े पद की जरूरत नहीं होती है। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ सकता है, एक युवा किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ा सकता है, कोई पर्यावरण के लिए काम कर सकता है, कोई नेत्रदान के बारे में लोगों को जागरूक कर सकता है, कोई अपना हुनर से लोगों को रोजगार दे सकता है।
1: जी, यानी देश सेवा सिर्फ सीमा पर जाकर ही नहीं होती, अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाना भी देश सेवा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से युवा रहे हैं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपनी पहचान बनाई, जैसे अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद एवरेस्ट फतेह किया, और नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपने खेल और अनुशासन से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया।
0: हाँ शिवांगी, और आप देखना ना कि इनकी कहानियों में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। वो कॉमन क्या है कि इन्होंने कभी अपनी लिमिट्स को तय नहीं करा, उसको बढ़ने दिया। कहते हैं ना, हौसला हो तो रास्ते निकल आते हैं, हौसला हो तो रास्ते निकल आते हैं, इरादे मजबूत हो तो सपने पल आते हैं। किस्मत से नहीं मेहनत से पहचान बनती है, किस्मत से नहीं मेहनत से पहचान बनती है। युवा वही है जो अपनी कहानी खुद लिखता है।
1: वाह प्रज्ञा, क्या बात कही है। अब हमारे युवा साथियों को आज कुछ सुनाने का इरादा है या नहीं?
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकर आया ना एक प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए। सुनते रहिएगा साथियों, युववाणी।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: चलिए युवा साथियों, ऐसे ही हम रोजाना किसी न किसी युवा साथी को आपके बीच में लाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक खास युवा साथी जुड़ी हैं। इनसे जानते हैं पहले इनका नाम, फिर इनसे जानते हैं इनके करियर की जर्नी के बारे में, ये क्या कर रही हैं और हमारे युवा साथियों को ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी। और जो भी युवा साथी इनके करियर लाइन को चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। क्या नाम है आपका, आप हमारे युवा साथियों को बता दीजिए।
3: मेरा नाम साक्षी ठाकुर है, मीरगंज से।
2: साक्षी ठाकुर, पहले तो आप ये बता दीजिए आप पढ़ाई में क्या कर रही हैं, ताकि हमारे सारे युवा साथी जान पाए कि आप किस तरीके से आपने अपने कोर्स की स्टार्टिंग की है।
3: 12th मैंने मीरगंज से किया, संत मंगलपुरी इंटर कॉलेज से।
2: अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया?
3: तो उसके बाद मैंने बीएससी की बायो से।
2: अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया?
3: मुझे उसके बाद नर्सिंग में ज्यादातर स्कोप दिखाई दिया। ज्यादातर सबसे ज्यादा स्कोप देखो तो नर्सिंग लाइन में ही है। कोई भी कोर्स ले लीजिए, एनएम, जीएनएम, बीएससी, छोटे से लेके बड़े तक बहुत स्कोप है इसमें। सबसे ज्यादा अगर आप प्राइवेट भी करेंगे जॉब तो आपके 10-15 हजार से कहीं नहीं गए हैं
2: जी। आजकल वैसे भी हम साक्षी जी देख रहे हैं कि नर्सिंग की लाइन में बच्चे ज्यादा जाना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इन सबका देखिए सारे बच्चों का मन करता है कि वो एक हायर स्टडी करें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए कि हम इतने पैसे लगा पाए। पर उसी से रिलेटेड जैसे डॉक्टर में MBBS करिए पहले या फिर आप BMS करिए, तो उन सब में काफी पैसे लग जाते हैं। कई सारे बच्चे उस चीज से बचना चाहते हैं कि वो कम पैसों में उसी लाइन में जा पाए। तो ये नर्सिंग का जो लाइन है वो काफी अच्छी लाइन है उन लोगों के लिए जो भी डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं। तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इस लाइन के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं या इसमें करियर नहीं है, बहुत अच्छा करियर है। जिस तरीके से आजकल मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन नर्सिंग में NM, GNM इन सब के लिए वैकेंसीज वगैरह भी ज्यादा निकल रही हैं और बहुत सारे बच्चे भी इसमें ग्रो कर रहे हैं अपना करियर। तो आप बताइए, आपने फिर उसके बाद आपने क्या करा, BSc के बाद आप इसमें कैसे गई?

0: बीएससी के बाद हमने एएनएम में सोचा कि सब मतलब कम पैसों में अच्छा कोर्स
1: जी,
0: और इसकी वैकेंसी भी ज्यादातर हर साल निकलती।
1: तो फिर आपने बीएससी के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया?
0: नहीं, इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता।
1: अच्छा, अभी आप कहाँ से कर रही हैं एएनएम?
0: फतेहगंज
1: से। अच्छा, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे?
0: उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं तो मिल जाता है कॉलेज।
1: अच्छा, तो उसमें पेपर होता है उसके लिए?
0: हाँ, पेपर होता है उसके लिए।
1: अच्छा,
0: अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो कोई कम पैसे में हो जाता।
1: अच्छा अच्छा, ये कितने साल का होता है?
0: ये 2 साल का होता है।
1: इसमें ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है?
0: हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, कुछ इंस्टीट्यूट में 6 मंथ के लिए होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ हमारे वाले में जो है उसमें 2 मंथ क्लिनिकल कराया गया था, बाकी डेज ओनली पढ़ाई। तो उसमें सीएससी 15 दिन, सीएससी 15 दिन, पीएससी, फिर डिस्ट्रिक्ट पे 1 मंथ के लिए लगी थी, और सेकंड ईयर में 6 मंथ क्लिनिकल चलती, बाकी 6 मंथ पढ़ाई पेपर।
1: अच्छा, क्लिनिकल से जैसे ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके साथ साथ मिलती रहती है, ये भी जरूरी है। अच्छा, जैसे कि आप अभी परसुइंग में हैं, फिर भी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको के बाद करियर ऑप्शन, मतलब आपको, आपने ये करा है, इसके बाद आप क्या देखती हैं कि आपका करियर कहाँ पर जाएगा? आप प्राइवेट फॉर्म डालेंगी या इसके गवर्नमेंट फॉर्म भी आते हैं, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगी?
0: मैंने सोचा है, पहले ये था एनएम के बाद आप कोई कोर्स, नर्सिंग वगैरह
1: जी,
0: कोई कोर्स के लिए ऑप्शन नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि एनएम के बाद आप पोस्ट बीएससी भी कर सकते हैं, पोस्ट जीएनएम भी कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, सोचा है कि और भी करना, पोस्ट बीएससी वगैरह
1: जी,
0: बारे में सोचा।
1: अच्छा अच्छा, जो मतलब आगे अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: अच्छा साक्षी, एक बात बताइए, जो भी बच्चे जैसे अब उन्होंने जैसे एएनएम कर लिया, उसके बाद वो किस तरीके से इसमें जॉब में जा सकते हैं? इसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद जॉब आपके पास खुद से आती है या आपको अप्लाई करना पड़ता है? आप प्लीज वो बताइए। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट में भी इसको इसका मौका मिलता है?
0: इसमें आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये था वैकेंसीज आते ही जिनका नंबर आ जाता है तो उनकी लग जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पैट लागू कर दिया है कि पैट कंपलसरी है करना।
1: अच्छा,
0: तो पैट के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बाद अगर नंबर आता है तो अच्छी बात है, वरना तो प्राइवेट के लिए तो कहीं से भी करो।
1: अच्छा, प्राइवेट के लिए हमेशा ऑप्शन खुला है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी, उसमें पेट का जो एग्जाम है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
0: हाँ, अच्छा,
1: अच्छा,
0: पहले ये नहीं था, इस ईयर से कर दिया।
1: अच्छा, इस साल से ये कर दिया है, जरूरी कर दिया है। तो पहले जिन भी बच्चों ने करा है उनके लिए ये काफी अच्छा रहता था कि वो डायरेक्ट उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता था। साक्षी जी, आज आपसे बातचीत की और आपने हमें अपने करियर के बारे में जानकारी दी कि आप किस तरीके से इस करियर ऑप्शन को चूज करके खुश हैं और आगे अपने करियर के लिए ग्रो करेंगी, और आपने बताया भी कि जो भी बच्चे अगर इस करियर में जाना चाहते हैं वो किस तरीके से अलग अलग लाइन को चूज कर सकते हैं, और या फिर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी युवा साथी आपको सुन रहे होंगे उनको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जब से बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। अब चलते हैं उस विषय की ओर जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल सही कहा शिवांगी आपने, इन दिनों देश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
2: जी, तो दोस्तों जरा सोचिए, हमारे जाने के बाद भी अगर हमारी आंखों की रोशनी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में उजाला ला सके तो इससे खूबसूरत विरासत क्या होगी?
3: हाँ, नेत्रदान का अर्थ किसी की जिंदगी छीनना नहीं बल्कि मृत्यु के बाद उपयोगी नेत्र ऊतक, विशेष रूप से कॉर्निया, जरूरतमंद व्यक्ति की दृष्टि को वापस करने में मदद कर सकते हैं। नेत्रदान अपनी इच्छा से होता है, इसके लिए आप अपने परिवार की भी उनकी इच्छा जाने और उनसे बातचीत करें, इसके बाद ही ये फैसला लें। शिवांगी, अच्छा एक बात बताइए, हम अक्सर युवाओं से कहते हैं कि देश के लिए कुछ करो, लेकिन क्या हम उन्हें ये बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से करो?
2: जी बिल्कुल सही बात कही है प्रज्ञा आपने। तो दोस्तों,

0: शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेत्रदान क्या होता है? और अगर परिवार में कोई नेत्रदान की इच्छा रखता है तो उस इच्छा के बारे में परिवार के लोगों को पहले बताएं, क्योंकि किसी की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए कभी कभी बहुत बड़ा काम नहीं, बस एक संवेदनशील निर्णय काफी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा शिवांगी आपने।
0: जब तक आके हैं दुनिया को देखिए, जब तक सांसे हैं किसी के काम आइए, और जब सफर जीवन का पूरा हो जाए तो अपनी रोशनी किसी और के नाम कर जाइए।
1: वाह क्या बात है। अच्छा यही तो असली इंसानियत है। तो चलो शिवांगी अब थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, वरना हमारी युवा साथी ये सोचेंगे कि मैडम मोटिवेशन पे बहुत हो गया, अब कुछ मजेदार सुनाइए। तो आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है शिवांगी?
0: मोबाइल की बैटरी,
1: नहीं नहीं
0: वाईफाई,
1: नहीं नहीं
0: तो फिर
1: मोबाइल की बैटरी 2% होते ही चार्जर ढूंढने वाला जो युवा अपने सपनों की बैटरी 2% होने पर चार्जर क्यों नहीं ढूंढता?
0: वाह ये बात तो सच है। तो दोस्तों जब मन थक जाए थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन सपनों को एयरप्लेन मोड पर मत छोड़िए। तो आपके साथ आ रहा है, इसी के लिए आपके साथ आ रहा है एक प्यारा सा सॉन्ग, सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब चलते हैं दोस्तों आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है। सही जवाब है मौसिनराम, मेघालय में। तो देखते हैं हमारे किन किन श्रोताओं ने आज का सही जवाब दिया है। तो शिवांगी, किन किन श्रोताओं ने आज का सही सवाल का जवाब दिया है?
4: जी, तो जिन श्रोताओं ने सही जवाब दिया है उनके नाम है दत्रेंगी भाटापार से हीरमणि वर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, राजेश वर्मा, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, बरेली से जमुना प्रसाद, प्रवीण चौहान, पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, लाल मोहम्मद अंसारी, हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत, सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, राजकुमार डुड्डी।
3: हाँ, तो आज शिववाणी से बस इतनी सी बात अपने साथ लेकर जाइए, खुद को पहचानिए, अपने हुनर पर भरोसा कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए।
4: और हाँ, हंसते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि युवा सोचेंगे तो भारत बढ़ेगा। और मुझको, शिवांगी अग्रवाल को
3: और प्रज्ञा पाठक को आज के प्रोग्राम से दीजिए अनुमति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
5: नमस्कार, धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।

0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
2: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सब किसान भैया और बहनों को आपके भैया कन्हैया
3: और आपके भैया कृष्णा की
2: राम राम, राम। कृष्णा भैया देखो, अपने किसान भैया को मन पसंद कार्यक्रम लेकर के उनके बीच में उपस्थित हैं।
3: बिल्कुल कन्हैया भैया, क्योंकि शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमारे भैया बहन भी अपने रेडियो सेट पर इंतजार कर रहा है कार्यक्रम किसान वाणी को। तो देर किस बात की है, जो ढेर सारी जानकारी अपने भैया बहनों के लिए लेके आए हैं उन तक पहुंचावेंगे।
2: लेकिन पहुंचाने के साथ साथ भैया, एक अपने कार्यक्रम की परंपरा तो है।
3: आप बात कर रहे हैं सवाल की
2: जी,
3: जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष रखते हैं एक सवाल।
2: का सवाल चुनो आज हमारे किसान भैया के लिए?
3: भैया जो आज अपने भैया बहनों के लिए सवाल लेके आए हैं वो सवाल है, कृषि रक्षक पोर्टल को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का है?
2: तो भैया लगाओ दिमाग, करो मंथन और ढूंढ निकालो जा सवाल को जवाब। और कार्यक्रम के अंतिम समय में हम जो सवाल को सही जवाब आपको बताएंगे, तब आप अपने द्वारा तलाशे गए जवाब को हमारे जवाब से मिलान कर सकते हो।
3: बिल्कुल कन्हैया भैया देखो, और अपने सब खेती बाड़ी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अबेर सवेर लगे रहते हैं, और हम सबको जो है प्रयास रहता है कि जो फसलें अपने खेत में लगी है बासे अच्छे उत्पादन मिले, अच्छी पैदावार मिले। लेकिन फिर कन्हैया भैया आपने देखी हुई कहीं ना कहीं कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है और हमारी जो है फसल जो है नष्ट हो जाती है। और ऐसे में कब हम सोचते हैं कन्हैया भैया की अब का हुए, फसल तो होगी हमारी चौपट।
2: लेकिन सोचने के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को अब थोड़ो सजग रहने होगो, और कहते ना जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे अगर हमारी काऊ तरीका से फसल बर्बाद हो रही है तो थोड़े से पैसा लगाए के वे अपनी पूरी फसल को मुआवजा ले सकते हैं। सरकार के द्वारा अब चलाओगो भैया फसल बीमा योजना।
3: सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत।
2: जी भैया आज दिन है कौन सा?
3: अरे भैया आज तो दिन मंगलवार को है।
2: और भैया मंगलवार के दिन हमारे स्टूडियो में आते हैं एक विशेषज्ञ।
3: हाँ बिल्कुल भैया सही कह रहे हो, क्योंकि आज दिन मंगलवार को है और आज मंगलवार के दिन जो फोन इन कार्यक्रम होता है हेलो किसान
2: जी,
3: जिसमें जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे कार्यक्रम में देखो आए पहुंचे हैं श्री दुर्गा दत्त शर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली में।
2: और भैया उनके साथ साथ देखो हमारे मिथिलेश भैया चले आ रहे हैं। तो अपनी तो बातचीत को भैया थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक लेते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया अपनी बातचीत को रोक लेना है, लेकिन जो बातचीत होगी मिथिलेश भैया और श्री दुर्गादत्त शर्मा के बीच में भैया, वो है मछली पालन हेतु योजनाएं व सुविधाएं जब विषय पर। तो शुरू करते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज विषय बहुत ही प्यारा है, आज का विषय है मछली पालन से संबंधित है और मछली पालन से जुड़ी तमाम चीजें, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मछली पालन कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे मार्केट में मछलियों को लेके उनकी बिक्री कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रही है सरकार, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया है अपने स्टूडियो में, और वो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दुर्गा दत्त शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
4: और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आप आयुर्वेदाई में वैज्ञानिक हैं और मत्स्य पालन के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मछली पालन है इसकी अगर किसी को शुरुआत करनी है, उसको एकदम कुछ भी नहीं पता है, नॉर्मली वो मान लीजिए गन्ना उगा रहा है, धान की पैदावार हो रही है, लेकिन सोच रहा है थोड़ी बहुत इनकम और हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, किन किन चीजों की जरूरत होगी?
5: बहुत अच्छा सर। सर सबसे पहले तो जो ये मछली पालन है
4: जी,
5: ये भी एक कृषि की ही तरह है, जैसे हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं इसको भी कृषि प्रणाली की तरह ही कृषि है ये भी। तो इसमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए,
4: नॉलेज होना चाहिए।
5: सबसे पहले जो भी किसान भाई इस कार्य को कर रहे हैं या आगे उनकी योजनाएं हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रशिक्षण लें। उसके बाद प्रशिक्षण लेने के बाद कहां उन्होंने जो इसको स्टार्ट करना है तो ये देख लीजिए, अगर जो है जमीन उनके पास पड़ी है, कोई निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी रुकता है, कोई ऐसी जमीन पड़ी हुई है,
4: गड्ढे हों
5: तो वहाँ वो सुधारीकरण करके,
4: कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए,
5: मतलब एक एकड़, अगर एक एकड़ हो तो ठीक हो जाएगा उनका, उसमें जो अच्छी आय भी हो जाएगी अगर, तो उसमें जो है स्टार्ट कर सकता है। तो उसमें हम लोग जो है कार्प कल्चर, अगर कार्प में रोहू कतला ग्रास कार्प नारायण ये सब जो है कार्प में आते, कार्प कल्चर यहाँ अच्छा तरीके से कर सकते हैं।
4: लेकिन इसमें एक बात आती है सर, जैसे कि गड्ढा है या कोई जमीन है पानी भरा हुआ है, तो क्या नॉर्मली

0: जो पानी भरा है उसी में शुरुआत कर दें, उनके मछलियों के बीज लाके डाल दें, या फिर उस पानी को भी पहले साफ करें, देखिए उसका क्या पीएच वैल्यू वगैरह।
1: अगर कोई पानी जैसे रुका हुआ है उसमें
0: जी जी
1: कोई गड्ढे हैं तो उसको पहले, सबसे पहले तो वो उसको सही करना है। उसमें जो है उसका जो है उसका पीएच है, उसमें चूना डाल के क्या मतलब उसका पीएच कितना है, ऐसा ना हो जहर हो उसमें।
0: तो कितना पीएच होना चाहिए?
1: उसका पीएच 7.5 से

0: निकाल दीजिए, गंदा पानी पहले पड़ा हो और उसके बाद ट्यूबवेल से डाल दिया,
1: और जो गड्ढे आपके जो है ना उसको सुधारीकरण करके उसमें चूना डाल के उसको जो बढ़िया उसका बंद बंद बना के और उसके बाद उसमें आप अच्छी हैचरी से
0: अच्छा।
1: जो अच्छी हैचरी मतलब जैसे जो गवर्नमेंट की हैचरियाँ हैं वहाँ से आप सीड अच्छा वाला सीड आप
0: जैसे आईवीआरआई संपर्क करें वहाँ से।
1: आईवीआरआई में सीड तो नहीं है लेकिन हम लोग ये सजेशन करते हैं कि आप पंतनगर चलाएं
0: अच्छा,
1: या कहीं और गवर्नमेंट की जो हैचरियाँ हैं वहाँ से आप लाएं। सीड अच्छा होगा तो जो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा किसान का।
0: जैसे पंतनगर का आपने नाम लिया, इसके अलावा भी और कहीं है जहाँ से ले सकते
1: हैं? और इधर मीरगंज में है, यहाँ पर प्राइवेट में थोड़ा देख के जो है। सबसे पहली बात है कि जहाँ आप तालाब बना रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए वो मिट्टी कैसी है।
0: मिट्टी कैसी है?
1: अगर पुराने तालाब है तो वहाँ पानी रुक रहा है तो जाहिर सी बात है वो ठीक है, लेकिन कुछ अगर आपने नए तालाब बनाने हैं उसके लिए मिट्टी आपको चेक करानी है। मिट्टी का ही बहुत बड़ा रोल है, मिट्टी कैसी है उसका पीएच कितना है, और जो है अगर मिट्टी सैंडी है उसमें जितना भी वो पानी है तो वो उसमें रिस्क रहेगा। पूरा किसान का खर्चा तो वहीं खत्म हो गया, कमाएगा क्या। सबसे पहले तो आप तालाब का निर्माण प्रॉपरली करवाइए, पुराने तालाब उनको सुधारीकरण करवाइए। ये दो
0: तो नया अगर किसी को बनाना हो,
1: हाँ नया बनाना है तो आप पहले जो है मिट्टी की जांच करवा लीजिए, मिट्टी की जांच सही है वहाँ तालाब का जो है निर्माण करवाइए। उसके बाद फिर उसके बाद जो है उसमें आता है प्रोसेस मैन्योरिंग का।
0: अच्छा,
1: जैसे हम खेती बाड़ी में गोबर डालते हैं खाद, वैसा ही उसमें आप गोबर डालिए, उसके बाद जो है उसको उसमें पानी भरिए, है ना। पानी भी तालाब भी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, करीबन जो है वो छः फिट करीबन जो है,
0: इससे ज़्यादा नहीं।
1: और जो है ज़्यादा अगर गहरा होगा तो जो सीड है वो जो आपने उसमें जो स्टॉक करे हैं तो वो सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत होगी, ऊपर तक जब तक आएंगे तो मर जाएंगे। उसके बाद किसान को ये चेक करते रहना है
0: ना, शुरू में तो ये होगा क्योंकि बहुत सारे सीड्स आएंगे उनमें बहुत सारे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
1: उसमें भी कई तरह का है, इस सीड में आप जीरो साइज या फिंगरलिंग साइज कितना, मतलब जीरो साइज में एक बहुत जीरो साइज सीड है तो उसको आप ला के जीरो साइज को अपना जो है नर्सरी पॉन्ड में आपको उसको ग्रोथ करना पड़ेगा। बाकी कई एक्टिविटी तो खुद ही मछली अगर दिक्कत आ रही है तो वो खुद ही ऊपर आ जाएगी,
0: सतह पे आ जाएगी, सांस लेगी। और इसमें बात यह आती है कि कई सारी जो मछलियाँ होती हैं उनकी वैरायटी
1: जी
0: आती है जो अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं किसी भी कंडीशन में। कुछ आते हैं छुई मुई टाइप की होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर दी, तो ऐसी कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनको कम केयर
1: जरूरत। जो हमारे यहाँ जो रॉयल खंड में यहाँ पे हम लोग जो है कार्प कल्चर काफ़ी पहले से कर भी रहे हैं, अब जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, विभाग भी जागरूक कर रहा है, मछली कृषि मंत्रालय में जो है मत्स्य वो भी जो है इसको मतलब जागरूक करते रहते हैं क्या क्या योजना है, क्या क्या मतलब जो है उसमें कैसे किसानों का भला हो।
0: मेन
1: उद्देश्य वही है, है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आपने जो है 1 लाख का उसमें जो है इन्वेस्ट कर लिया हुआ कुछ नहीं। हम मतलब ये है कि हमको किसानों कैसे खुशहाल बनाना, मेन वही स्ट्रेटेजी वही हमारी जो टारगेट है।
0: तो सरकार कैसे किसानों को खुशहाल कैसे बना रही है, क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की?
1: हाँ ये सर बहुत अच्छा, क्योंकि सरकार तो लगी हुई है बहुत बहुत पहले से ही, लेकिन वो जाके
0: लोगों को पता ही नहीं,
1: पता ही नहीं। अब स्किन नहीं करोगे, पहले क्या होता था लोग जो है वो पालते थे किसान, बेचारे चक्कर काटते थे बैंकों के साथ लोन दीजिए, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनको, अभी मैं यहीं की बताऊँ आपको ना, ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री संपदा योजना एक लॉन्च करी है।
0: अच्छा,
1: तो देते हैं गवर्नमेंट योजना का
0: सब्सिडी है या लोन?
1: उसमें सब्सिडी है 40%
0: सब्सिडी,
1: बाकी उनका अपना। तो इतने में मैं वो 1 हेक्टेयर को अच्छा तरीके से कर सकते हैं जिनका है ये है।
0: कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी और पेपर्स वगैरह चाहिए होते
1: हैं उसके लिए, जो विभाग है ना मत्स्य विभाग है वहाँ पर जो है जैसे अपना खसरा खतौनी आधार बैंक पासबुक ये सब जो है वहाँ उनको देना पड़ेगा कि साहब मैं एलिजिबल हूँ, मैं मछली पालन का काम कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा,
0: एप्लीकेशन देना होगा और जमीन का पूरा
1: ब्यौरा देना पड़ेगा और अपना आधार और खाता खतौनी वो जो मतलब किसमें है पट्टा है क्या है वो सब दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो वो उसके बाद वो जो उसको आगे बढ़ाएंगे और सब्सिडी 40% सब्सिडी उसको उसमें दे देंगे। ये जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक है भारत सरकार की जो बहुत दिनों से चल रही है जिसमें लोगों को बहुत भलाई हो रही है, मछली जो है बहुत बड़ा वरदान हो रहा है इस काम के लिए, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही थी 2000, अब सह योजना एक और आ गई इसी के साथ ही।
0: अच्छा,
1: गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया है कि किसानों को कैसे उनका जैसे बीज है, बीज जो है कहीं जैसे आपने सरी पौंड बनाने हैं या आपने जो है वो यूनिट लगानी है फीड की,

0: उसके लिए है, या आपने जो है तालाब का प्रिपरेशन करना है उसके लिए है, कई अलग अलग उसके लिए है, या आपने कोई छोटी दुकान खोलनी है।
1: इस बीच एक कॉल आ रही है सर, जी जी इनसे बात कर लें सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, हेलो किसान वाणी।
1: जी किसान वाणी में आपने कॉल लगाया है, अपना नाम बताएं।
2: हम जिला बताएं, ग्राम मुन्ना सिंह बोल रहे हैं।
1: जी मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछें। आज मछली पालन पे कार्यक्रम हो रहा है,
2: मछली पालन की तालाब की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, कितनी गहराई में पानी होना चाहिए, और कौन सी किस्म की जो है ये बच्चे लाए जाए उसमें डालने के लिए।
1: जी जी जी, इसी पे हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, तो कितना पानी होना चाहिए ये भी पूछ रहे हैं।
0: बहुत अच्छा आपने जो है सवाल करा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। जब तालाब बनाते हैं तो किसान को पता नहीं है, बहुत ज्यादा भर देते हैं, बहुत कम। इसमें कम से कम आप जो है 6 फीट पानी उसमें होना ही चाहिए। उसमें जो है 1 फीट आपको ऐसे अलग से जो है उसको खाली रखना है,
1: 1 फीट ऊपर का छोड़ देना
0: चाहिए, बस 6 फीट तक पानी रखना है। और जो मिट्टी होती है वो हमेशा चिकनी मिट्टी जो है, अगर सैंडी सॉइल है, बलुई है, तो वहाँ पर तालाब ना बनाए आप लोग, और जो है चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर तालाब बनाए तो वो अच्छा रहेगा, और जो है की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो है प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होगा।
1: जी मुन्ना सिंह जी, यही सब करना होगा तभी वहाँ पे तालाब बनाएंगे और मछली पालन शुरू कर पाएंगे। शुक्रिया मुन्ना सिंह जी। तो हमने पीएच वैल्यू भी बात कर ली। हाँ, सरकार से मिलने वाली जो सुविधाओं की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक तो आपने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना बताई, एक भारत सरकार द्वारा जो चलाई आ रही है, इसके अलावा भी कुछ है,
0: एक अभी आ रही है निषाद बोट योजना।
1: निषाद बोट योजना,
0: अच्छा। उसमें ये जो है गवर्नमेंट दे रही है जो जिन किसानों के जैसे जैकेट्स है या बोट्स है या मतलब जो है ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए,
1: रक्षा
0: उनको हो,
1: सिक्योरिटी।
0: और इसमें जो है एक और है, एक है इंश्योरेंस वाली,
1: इंश्योरेंस
0: भी है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ जैसे फसल बीमा योजना है तो उस फसल में मछली भी,
0: इसमें इन किसान का जो जैसे कोई अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें है, डूब गया सब ने काट लिया, कितना अच्छा है, पहले तो कुछ नहीं था।
1: तो इसमें प्राइवेट कंपनियों से हो रहा है या फिर सरकार दे रही है?
0: तो अपने पंजीकरण कर लें तो 5 लाख तक का उनका है
1: बीमा है सरकार की तरफ, उसमें प्राइवेट कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये तो बात हुई योजनाओं की, सुविधा की जहाँ तक बात की है, जो लोकल लेवल पे जैसे ब्लॉक लेवल पे क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, या जैसे आप लोगों के कृषि विज्ञान केंद्र है, IVRI है यहाँ,
0: तो सर सुविधाएं ये है, हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं,
1: प्रशिक्षण,
0: हाँ प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण होता है हमारे यहाँ, तो जो लोग आते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं हम लोग कि कैसे मछली पालन को जो है कैसे करा जाए, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं जो कि सुधारा जाए जिससे कि प्रोडक्शन इनका बढ़े। ट्रेनिंग हम लोग खासकर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लोग इनकी कीट वितरण वगैरह भी करते हैं, हम लोग तो केवल जो है ट्रेनिंग करवाते हैं।
1: ट्रेनिंग में अब जैसे कुछ प्रोसेस है उसका फ्री होती है?
0: फ्री होती है सर,
1: फ्री होती है,
0: फ्री कोई।
1: तो कब कब होती है ट्रेनिंग?
0: ट्रेनिंग ये हम लोग साल में ये जो 3 या 4 ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं
1: साल भर में, 3-4 ट्रेनिंग। तो जैसे आने वाले दिनों में कब होने वाली है अगर आप बताना चाहें?
0: ये जो है ये
1: लोग जान लीजिए
0: सितम्बर में ट्रेनिंग और होनी है सर।
1: अच्छा अच्छा, अभी डेट फिक्स नहीं है, तो मतलब एक दिन की होती है या
0: तीन दिन की
1: ट्रेनिंग? तो जैसे IVRI में कई सारे मछली पालन केंद्र भी होंगे, आप वहाँ ले आते हैं होंगे किसानों को,
0: वहाँ दिखाते हैं सर उनको जो है कि उनको जो है क्या क्या है, मतलब सावधानी बरतनी है, है ना, पानी का मामला है,
1: पानी का मामला है
0: ना, तो जो है तो किसान को क्या चौकसी बरतनी है, और जो है ये है कि कितना बीज स्टॉक करना है एक तालाब में, कौन कौन से मछली इसमें पाल सकते हैं, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती है,
1: जी जी
0: है ना, और जो है कभी कभी बीच में मर भी जाती है मछली, तो किसानों के कॉल आते हैं कि सर क्या कैसे हो गया, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। उसमें दिक्कत क्या है, उनके पुराने तालाब होते हैं सर, तो गांव का जो पानी आता है, अब तो देखो आप पहले का समय अलग था, तो साबुन है, केमिकल है, तो जो आता है तो उसमें क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और
0: तो वो इतना ज्यादा पॉइजन हो जाता है, मरने का कारण वही है। तो हम उनको कई बार उनको कहें कि थोड़ा जो है उसको, या तो अगर आपके पास सुविधाएं हैं पानी को थोड़ा चेंज कर दो, आधा आधा भी पानी उसमें से चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े तालाब है तो उसको तो असंभव है,
1: संभव नहीं है
0: उसे चेंज करना। तो हम क्या करते हैं कि जो पानी आ रहा है, जो गंदा पानी है, उसको 3-4 गड्ढे आगे खुदवा देते हैं, एकदम
1: अच्छा।
0: टॉक्सिसिटी है, एक गड्ढे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, तो वहाँ तक जो आते आते वो छन के सही हो जाएगा, और या फिर उसमें चूना वूना डालते हैं, फिटकरी डालते हैं, है ना, प्रोबायोटिक्स एक है वो टॉक्सिमार आता है वो यूज करते हैं, उससे टॉक्सिसिटी सही कम हो जाती है। एक हमारा जो है सीफेक्स है,
1: अच्छा,
0: तो 1 हेक्टेयर में 1 लीटर उसको, उससे जो है वाटर क्वालिटी ठीक हो जाती है।

0: और आपका जो हार्डनेस है पानी में ठीक हो जाएगा। इसमें मेन है कि पानी का जीव है, थोड़ी सी भी गलती होने से लाखों का नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जब भी आप ये काम करें मछली पालन का, तो अपने जो भी कोई जानकार हो आस पास में उनसे पूछ के, ये नहीं कि कोई बोलो साहब इसने ये तालाब बना दिया मैं भी बना दूँ, देखे देखे ऐसा नहीं। आप पूछो और प्रॉपरली नॉलेज लेने के बाद आप उसको करिए, क्योंकि ऐसा ही अच्छा काम है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। मैं जितना लोगों को देखता हूँ, अगर आप ठीक से इसको साइंटिफिक विधि से करें तो मुनाफा है। बस ये है कि आपको ये देखना है कि क्या क्या इसमें हमको
1: ध्यान
0: रखना
1: और ट्रेनिंग भी जरूरी
0: है सब।
1: जी जी,
0: यही मेन चीज़ें हैं। तो आदमी मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर सकता है। और जो है यहाँ बरेली के लोग जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में तो आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत है तो हम लोग 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहेंगे।
1: बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग जुड़े हैं
0: जी।
1: ये कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से पुराना शहर बरेली, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य हैं। और वहीं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य हैं और किरण मौर्य हैं, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य। इसके अलावा रामगंगानगर कॉलोनी डोरा रोड बरेली से प्रीतम कुमार मौर्य, उमा मौर्य, मानवी मौर्य, त्रिदेव मौर्य और रूही मौर्य, ये लोग सोशल मीडिया पे। अब ये लोग भी जानना चाहते हैं, मछली मान लीजिए तमाम सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं
0: जी जी,
1: फिर भी कोई रोग हो जाए तो कैसे पहचान करें कि हाँ भाई मछलियों में कोई रोग फैल रहा है और उस रोग का इलाज कैसे किया?
0: उसमें सर ये देखना है कि जब कभी जैसे 15 दिन बाद या 20 दिन में एक बार आपने जो है जाल लगा के आप उसको देख लो, कुछ मछलियाँ उसमें कोई स्पॉट तो नहीं है,
1: स्पॉट
0: घाव है, स्पॉट है, या तालाब में जो है जो एक्टिविटी क्या हो रही है, मछली ऊपर तो नहीं आ रही है। फीड हम दो तरह से देते हैं, एक तो प्राकृतिक चारा होता है जो आपने जो पहले जो तालाब बनवाया था जो गोबर डाला था, जैसे हम लोग खेती बाड़ी में करते हैं उससे प्लंकटन बनते हैं, फाइटो प्लंकटन और जो प्लंकटन, वो प्लंकटन मछली का प्राकृतिक चारा है। अब उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, अगर तो उसी पर निर्भर है, वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहिए तो बाहर से ला के वो क्या करते हैं, बाहर से भी लाते हैं प्राकृतिक चारा है ये प्रतिपूरक जो अलग से हम देते हैं। उसके लिए क्या है, अगर आप नहीं भी आप जो है दाना बनाते हैं तो उसमें खल, सरसों की खल हो गई या राइस ब्रान हो गई, उसको 1:1 रेशो में एक भाग उसका एक भाग उसका, दोनों को सड़ा लो। सड़ाने के बाद उसमें जो है उसको लड्डू की तरह बना के उसमें तालाब में आप रख दो या टब में दें तो उसको मछली खाती रहेगी। एक बात ये, कुछ फ्लोटिंग फीड भी आते हैं बाहर से लाते हैं, वो महंगा पड़ता है, अगर ला सकते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोटिंग फीड। और हाँ ये देखना फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो आधा उसमें जो निकासी है पानी का उसको हटा देना चाहिए तालाब से, बाकी जो है उसमें चूना बीच बीच में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है चूना डाल दो, पीएच देख के,
1: पीएच
0: अगर बहुत ज़्यादा है तो चूना नहीं डालना, कम है तो चूना से भी अधिक प्रॉब्लम क्योंकि जाती है।
1: इसके अलावा जैसे अब बारिश का मौसम है, गर्मियों का तो बीत चुका है, आने वाले दिनों में क्या ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है?
0: बारिश के मौसम में जो हमारे बंद होता है ना चारों तरफ, वो थोड़े ऊंचे होने चाहिए, नहीं तो वो दूसरे जहाँ पर भी जो केमिकल है कुछ है वो बह के तालाब में तो वो मेड़ों को ऊंची कर दें। किसान भाई जहाँ भी तालाब है आपका तालाबों की मेड़ ऊंची कर दें, जो बाहर उधर वाला पानी जो है खेती का पानी उसमें ना जाए या खाओ मछली होती है जो वो अंदर ना जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जीव है कुछ चीज़ें हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, तो ये देखना है। और हाँ ये जो बरसात के मौसम में उस बात का ध्यान रखना है कि जो है शाम के समय ट्यूबवेल चला दें, दिन में भी चला सकते हैं लेकिन जो मतलब जहाँ क्लाउडी ज़्यादा हो तब चलाओ, तो ज़्यादा है जब क्लाउडी मौसम होता है तो उसमें क्या है फोटोसिंथेसिस नहीं होता कि ऑक्सीजन कम ना।
1: कुल मिला करके अगर दो लाइन में कहा जाए तो पानी साफ रखना है, उसकी गुणवत्ता अच्छी रखनी है, पीएच वैल्यू, ऑक्सीजन कम ना होने पाए, दो चीज़ों का ध्यान अगर रखें तो ये मत्स्य पालन का व्यवसाय जो है ठीक से चलता रहेगा, मुनाफा भी अच्छा देगा। अच्छा मुनाफे की बात की है, कितने तक का मुनाफा इसमें हो सकता है?
0: सर इसमें ऐसा है जो हम लोग तालाब नए बनाते हैं पहले तो बहुत खर्चा आता है, तीसरे साल से बहुत कम होने लगता है, तो उसमें ये है कि 25-30% खर्चा आता है, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो मैन पावर है एक लेबर कंटिन्यू उसको रखना ही है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक लेबर इतना काम नहीं है, इसमें केवल दाना डालना आपने और पानी को जो है उसमें चलाना तालाब में, बाकी छोटी मोटी देख रेख इतना नहीं है, खर्चा कम आता है इसमें अगर आप वैज्ञानिक विधि से करें

0: तो मतलब अच्छा मुनाफा, 1 एकड़ तालाब में 2.5 से 3 तक तो मस्त आप ये लगाओ 100 रुपये के हिसाब से भी मछली को, 1 किलो की मछली 100 रुपये के आप बेच रहे हो, तो 1 कुंटल आपका कितना हो गया, 10,000 का।
1: हाँ, 10,000।
0: अगर जो है आपका 30 कुंटल अगर हो रहा है उसमें, 30 कुंटल का लगा लीजिए आप। बल्कि वैसे तो हम लोग जो है हाई डेंसिटी में भी करते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको
1: अच्छा, फिर
0: स्टॉक,
1: लेकिन देख रेख ज़्यादा चाहिए।
0: उसमें देख रेख ज़्यादा है। और जो है लोग जो है 60 से 70 कुंटल भी कर रहे हैं कम लागत पे।
1: ज़्यादा मुनाफा, तो कुल मिलाकर मुनाफे का व्यवसाय है अगर आप तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और सरकार की तरफ से सुविधाएं भी हैं और तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता जो ये मछली पालन का काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी सोचेंगे एक बार कि शुरू किया जाए, बड़ा
0: ट्रेनिंग
1: मुनाफा
0: ले
1: है।
0: लें,
1: ट्रेनिंग ले
0: प्रशिक्षण लेना
1: लीजिए।
0: है।
1: जी। तो सर, मत्स्य पालन के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई और तमाम हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: सर,
1: सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप।
2: कृष्ण भैया, देखो, अब दुर्गादत्त शर्मा जी बता रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक कृषक साथी हैं वो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनको लाभ ले सकते हैं, और मछली पालन के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो उनको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कुछ हमारे किसान साथी ने फोन करे, सोशल मीडिया कमेंट्स पर अपने नाम लिख करके और जानकारी चाहिए। ये सब बातें हमारे मिथिलेश भैया ने अब जानी ही, श्री दुर्गादत्त शर्मा जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र इज्जत नगर बरेली में। और भैया देखो, अब जो शेष बची जानकारी है वे वो अपने किसान भैया के बीच में पहुंचा दें।
3: बिल्कुल भैया, और देखो जो जानकारियों की बात कर रहे हो कन्हैया भैया, तो जो मौसम है करवट बदल रहा है भैया, बरसात हो ही रही है, आज भी दिन भर बारिश हुई है, तो ऐसे में क्यों ना कन्हैया भैया जो कल को मौसम है कैसे रहा है, वो बारिश होगी ना होगी भैया, आपको पूर्वानुमान बता दो भैया।
2: देखो भैया, कल हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकते हैं, और भैया अगर बात करें हवा की तो बस 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलन को अनुमान है। और वहीं अगर बात करी जाए तापमान की तो 31 डिग्री सेल्सियस रहने को अनुमान व्यक्त कर हुआ है।
3: तो जो तो हो कल को मौसम को पूर्व अनुमान। और कन्हैया भैया देखो, अब हम अपने कार्यक्रम में कृषि समाचार के अंतर्गत अपने भैया बहनों को बता दें कि भैया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ फसल है 2026 की, उसके भैया जो बीमा कराने के जो इच्छुक हमारे किसान साथी हैं उनके भैया तारीख बढ़ा दी गई है, यानी कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। तो जो किसान भैया बहन अभी तक अपने फसल को बीमा ना करा पाए वे तुरंत ही अपने जो फसल है खरीफ फसल उसको बीमा जरूर करा लें।
2: और भैया, कार्यक्रम के शुरू में हमने अपने किसान साथियों को एक उलझन में डालो हो, और भैया अब भाव से निकात चलो।
3: बिल्कुल भैया, कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के एक समक्ष रखो हो सवाल, और सवाल हो कृषि रक्षक पोर्टल को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का है, तो जा पे हमारे भैया बहनों ने मंथन करो है। और बहुत से किसान भैया बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करके भी जाको जवाब लिख के भेजो है, और जाको जो सही जवाब है वो है 1-4-4-4-7।
2: जो भैया भारतीय टोल फ्री नंबर है 1-4-4-4-7, इस नंबर पर हमारे किसान साथी फोन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित और जो खेती बाड़ी संबंधित जानकारी है वे भैया ले सकते हैं।
3: और बात करें कन्हैया भैया आज के नसीहत की, कि कार्यक्रम से हम सबको नसीहत क्या मिली, तो कार्यक्रम से हम सबको यह नसीहत मिली कि किसान भाई अपनी फसलों को बीमा अवश्य करावे।
2: और भैया, कार्यक्रम किसान वाड़ी में देखो समय जो है अब हमें इजाजत न दे रहे हो, और कोई बातचीत या चर्चा इस कार्यक्रम में उनसे करी जाए।
3: फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के बीच हम दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा
2: और कन्हैया को दीजिए अनुमति। किसान साथियों,
3: राम राम, राम।

0: ये वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब भोले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक।

0: अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में हमारे सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। भैया बहनों देखो शाम के 7 बज चुके हैं और हम आपके रेडियो सेट पर उपस्थित हैं आपको मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर। तो हम दोनों भैया की आप सभी को राम राम। कन्हैया भैया देखो अपनों जो देश है गाँव को देश है
1: जी,
0: अपने सब गाँव में रहते हैं, गाँव में रहकर ही जो खेती बाड़ी को काम धंधो है बाको करते हैं, जाके साथ साथ जो खेती से जुड़े और व्यवसाय हैं उनको भी हम करते हैं।
1: हम समझ रहे हैं आप बात कर रहे हो, अगर हम गांव में रह कर के अपनों विकास, अपने गांव को विकास और जो हमारे आसपास क्षेत्र है उसको विकास कैसे कर सकते हैं?
0: बिल्कुल भैया, क्योंकि देखो जिम्मेदारी हमारी है, हम गांव में रहते हैं, देख रहते हैं कि भाई जब हमारे गांव का विकास हुए तब हमारे जिला को विकास हुए, जिला को विकास हुए हमारे प्रदेश को विकास हुए। इस तरीका से हमको सोच रखनी चाहिए कि हम अच्छे तरीका से विकास करें, और विकास की जब बात आती है तो विकास में हर ग्रामीण को एक अहम रोल होता है।
1: और रोल की जहाँ कृष्णा भैया आपने बात करी, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम करके अपनों विकास, अपने गांव को विकास, अपने क्षेत्र को, जिला को, यहाँ तक कि अपने प्रदेश और देश को विकास में जो है भागीदारी निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जो हमारे अन्नदाता हैं वो अपने खेतों से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि जो हमारे देशवासी हैं
1: जी
0: उनको पेट हम भर सकें।
1: और यही अन्नदाता जो हैं हमारे देश की आबादी को पेट भरने में बहुत बड़ो सहयोग करते हैं।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, और बहुत से भैया जैसे सोचते हैं कि अरे भैया हम तो नौकरी ना कर रहे हैं या कहीं सेना में ना है पुलिस में ना है, तो ऐसे ना है भैया कि हम साहब सेना में जाके या पुलिस में जाके या नौकरी करके ही अपने देश को विकास कर सकते हैं।
1: जी
0: भाई हमने कही ना कि हर व्यक्ति को अपना रोल होता है, अगर हम एक सामाजिक रूप में भी अपनों
1: योगदान
0: दे सकते हैं, और जैसे हमारे अन्नदाता हैं वो खेती करके अपना योगदान दे रहे हैं हमारे देश को पेट भर रहे हैं, ऐसी हर व्यक्ति अपनों कार्य जो व्यक्ति कार्य कर रहे हो उसको करके अपने देश में अपने सर्वांगीण विकास के लिए अपनों योगदान कर सकते हैं।
1: और भैया जहाँ योगदान की बात आई, वहीं पर हम ज्यादा बड़े से न जा करके छोटे छोटे स्तर से छोटी छोटी चीजों को अपनाए करके हम अपने विकास में भागीदारी कर सकते हैं। भैया बातचीत कर रहा हूँ, आज का गांव की ओर ना गए का?
0: भैया गांव की ओर गए हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं ना कि अपने अन्नदाता की, भैया जो भैया बहन है खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से अपने जो फसलें उगा रहे हैं खाद्यान्न की फसलें हैं, गन्ना की फसल जो नकदी फसल कही जाती है, ऐसी जो हमारे बहुत से भैया बहन हैं जो सब्जी हैं उनकी फसलें कर लेते हैं। तो आज हम भ्रमण में निकले तो एक जो महिला कृषक हैं उनसे हमारी बातचीत भई।

0: तो उन्होंने बताइए कि जो महिलाएं हैं वो खेतीदारी जो महिलाएं हैं वो खेती में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और किस तरीके से वो काम कर रही हैं। इन्हें एक तरीका से कह सकते हैं कि आज जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी खेती में मिलजुल के काम कर रही हैं और अपने घर परिवार के साथ साथ अपने देश के विकास करने में अग्रसर हैं।
1: तो भैया देखो, अब हम अपने जो श्रोता है ना उनको बतवाए देते हैं कि तुमने किन से बात करी है, तो पहुंचा दें उनके बीच में आपकी जो बातचीत।
0: बिल्कुल भैया जी, आपको नाम का है?
2: सोनिया
0: जिस गांव में हम बैठे हैं, क्या नाम है गांव को
2: बीजामाऊ
0: और जागो बिलाग कहाँ लगता है?
2: नवाबगंज जिला बरेली।
0: सोनिया जी, हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो जाल लगो वो है जहाँ पर लौकी लटक रही हैं, तो जी लौकी आपने ही लगाई है?
2: जी हमने ही लगाई है।
0: अच्छा, तो चलो
2: हाँ,
0: खेती बाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम आपकी पढ़ाई लिखाई और जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी?
2: पढ़ाई हमने 8वीं तक करी है,
0: अगले ने पढ़ी
2: आगे ना पढ़ पाई। फिर
0: तो
2: जैसे स्कूल बाहर हो तो अम्मा पापा ने भेजो ना फिर
0: अच्छा,
2: बाहर।
0: तो ये तो ससुराल हुई
2: जी
0: आपकी?
2: ससुराल है हमारी।
0: अच्छा, तो ससुराल में आके आप खेती बाड़ी कर रही हैं। अक्सर जब बहू खेती बाड़ी करती है तो लोग गांव के लोग कहते हैं अरे ये तो साहब गांव की बहू खेती कर रही है।
2: अब कुछ भी करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है काम और घर में जैसे, तो इसलिए हमने की खेती कर, खेती में प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे लौकी है, खीरा है और कद्दू भी जैसे हम करते हैं,
0: जी
2: इस चीज में हमें जैसे अच्छा मुनाफा हो जाता
0: जी
2: है।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जो आपने लौकी लगा रखी है इसके लिए खेत की
2: हाँ
0: तैयारी
2: जी,
0: करनी पड़ता है?
2: खेत की भी जैसे तैयारी करते हैं, जुताई और करवाते हैं जैसे, फिर इसके बीजा और जैसे लगाते हैं, फिर इसका झांबो तैयार कर देते हैं जैसे, फिर जाल के जैसे आगे बेल इसकी पोड़ाते हैं, फिर आगे फैलती चली जाती है
0: जी,
2: इसकी।
0: आपने जो लौकी की बेल लगाई है जाल पे लगाई है, लेकिन
2: हाँ,
0: हमने देखी कुछ जो किसान साथी हैं हमारे भैया बहन हैं वो जमीन पे ही ऐसी मतलब उगाते हैं।
2: उसमें जैसे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है उसमें, एक तो सफेद पड़ जाती है लौकी, फिर इतना माल नहीं आता जैसे फल,
0: जी,
2: एक तो फल भी नहीं आता है।
0: और देखिए कि जैसे फल जो होते हैं वो टेढ़ मेढ़ हो जाता है कभी,
2: हाँ,
0: उसमें
2: कोई टेढ़ा
0: कोई
2: हो जाता है, कोई ऐसे एक वही का वही घुमड़ी आ जाता है
0: घुमड़े
2: जैसे।
0: जाता है।
2: हाँ, जाल पे है, इसमें सीधी और लंबी लौकी आती है,
0: जी,
2: ऐसे है
0: तो
2: इसका।
0: इसलिए जाल पे आपने लगाई है।
2: हाँ, हमने जाल पे ही करते हैं, हम खीरा
0: और
2: भी हम जाल पे ही करते हैं, कद्दू भी हम जैसे जाल पे ही, और लौकी भी।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ
0: तो कोई अगर रोग बीमारी भी आम लगत होए?
2: हाँ तो इसकी दवा जैसे छिड़कते हैं, दवा जैसे कोई भी जैसे फल फूल की है या मक्खी की है, सूंडी की है,
0: हाँ,
2: सब दवाई है
0: कभी
2: जैसे।
0: कोई सूंडी लग रही है या कोई
2: हाँ,
0: फली छेदक कीट है वो
2: कोई,
0: नुकसान पहुंचा
2: हाँ,
0: रहा हो तो दवाई को इस्तेमाल करते हैं।
2: इस्तेमाल
0: स्प्रे
2: करते
0: आप
2: हैं।
0: स्वयं करती हैं या आपके परिवार के लोग
2: नहीं,
0: करते
2: मेरा
0: हैं?
2: लड़का करता है स्प्रे।
0: अच्छा,
2: हाँ, बता देते हैं बेटा ऐसे ही करो, जैसे हर पत्ते पत्ते पे स्प्रे होनी चाहिए, जैसे पत्ते पे ही ज्यादा बीमारी लगती है।
0: जी, बाकी काम आप करते रहती हैं?
2: बाकी हम सब नराई है खुदाई है वो सब अपने घर में जैसे सब कर लेते हैं।
0: जी, तो हम देख रहे हैं कि आपको उस पर लौकी लगी हुई है, क्या
2: हाँ,
0: भाव बिक रही है लौकी अब?
2: लौकी अभी हमारे 15 भी जा रही, 20 भी जा रही लौकी।
0: अच्छा, तो
2: हाँ,
0: लौकी तोड़ के यहाँ से आपको मार्केट ले जाने
2: जैसे
0: पड़ती?
2: यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं रिछोला मंडी में, यहाँ पे हमारी बिकती है लौकी।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: तो बिक्री में तो कोई दिक्कत है
2: नहीं,
0: ना?
2: बिक्री में अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो भाव सही है, अभी से थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले तो नेक सस्तो हो भाव,
0: मतलब जो मेहनत आपने करी है वो सफल हो रही
2: वो
0: है।
2: सफल होगी हमारी।
0: सुनिए जी, एक बात और बताओ, जैसे हम देखते हैं कि अधिकांशतर जो हमारे किसान भैया
2: हाँ,
0: बहन हैं वो ज्यादातर जो खाद्यान्न की फसलें हैं जैसे धान है गेहूं है और जो नकदी फसल कही जाती गन्ना वो ज्यादा करते हैं, और गन्ना धान गेहूं तो आप भी करते
2: अब
0: होंगे।
2: हाँ, हमारे गन्ना भी है, धान भी है, सब
0: हाँ,
2: चीज है हमारी।
0: जाके संग संग सब्जी भी आप उगा
2: हाँ,
0: रही हैं,
2: सब्जी
0: तो
2: भी
0: ये
2: हम कर
0: बताओ
2: रहे
0: कि आपको खाद्यान्न की जो फसलें हैं धान गन्ना गेहूं है या
2: हैं।
0: सब्जी की जो फसलें हैं इनमें ज्यादा फायदा होता है या फिर उन फसलों में ज्यादा?
2: है तो जैसे उनमें भी, उनमें कम है, इनमें ज्यादा मिल जाता है। इसकी एक तोड़ी जैसे अच्छे रेट मिल जाए तो 10,000-12,000 तक की मिल जाती है, सिर्फ एक तोड़ जैसे टूटती है एक बार में ऐसे।
0: जी, तो
2: हाँ,
0: आपको फायदा ज्यादा ज्यादा महसूस होता
2: इसमें
0: है,
2: ज्यादा फायदा है।
0: लेकिन कहते हैं कि बरियाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती
2: मेहनत
0: है।
2: तो है, देखो कोई भी काम करो मेहनत तो हर काम में होती है, पर जहां मेहनत करोगे तो मालिक फल तो देगा ही,
0: जी, बिल्कुल बात सही है,
2: बस।
0: मेहनत की बात ही अलग होती है।
2: हाँ
0: तो परिवार में आप बता रहे हैं कि बेटा भी है आपके,
2: हाँ
0: बेटी भी
2: बेटा है,
0: है?
2: बेटी है, जे सासू माँ है हमारी
0: अच्छा,
2: और हस्बैंड भी है।
0: तो आप जैसे चलो 8वीं तक पढ़ी लिखी हो, आपने
2: हाँ,
0: बच्चन को पढ़ाओ लिखाओ?
2: बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 12वीं में ये भी लड़की बीएससी कर चुकी है हमारी।
0: अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो आप भले ही कम पढ़ी लिखी लेकिन आप अपने बेटा बेटी को
2: हाँ,
0: पढ़ा लिखा रही हैं और उनसे उम्मीद कर रही हैं कि कहीं ना कहीं
2: कहीं ना
0: सफल
2: कहीं
0: हो।
2: वही सफल हो जाए।
0: जी, बड़ी मेहनत कर रही है खेती बाड़ी में, और हम भी देख रहे हैं कि आपने लौकी लगा रखी है और आप बता रही हैं जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं जैसे खीरा है कद्दू है ये सब लगाती हैं।
2: जी सब करते हैं, अभी कद्दू का खेत हमारा तैयार करो तो कल पानी बरस गो इसलिए हमारा खेत रुक गो जैसे। अब 2-1 दिन बाद लगेगा हमारा कद्दू, देख खेत में जैसे खुश्की आएगी तभी
0: हाँ,
2: जोत के फिर हम लगा देंगे कद्दू।
0: अच्छा, तो कद्दू के लिए आपने खेत तैयार करो,
2: हाँ, खेत
0: बामा
2: तैयार
0: का ध्यान रखो, देसी खाद वगैरह
2: करो,
0: डाली
2: हम
0: ना?
2: देसी खाद डाली हमने जैसे, डाया खाद डाली।

0: लेंगे, फिर बीजा लगाएंगे, जैसे उसके नाली बनाए के फिर बीजा लगा देंगे हम,
1: अच्छा
0: मेड़
1: अच्छा
0: बना के।
1: यानी खेत तैयार कर
0: हाँ,
1: लो
0: खेत
1: लगभग,
0: तैयार कर लो हमने,
1: तब तक बरसात होगी।
0: तब बरसात होगी, जैसे कल खेत करा तो आज रात में पानी बरस गो।
1: बरसात भी काफी
0: हाँ,
1: हुई है अपने इस
0: बरसात
1: क्षेत्र
0: भी।
1: में, जिस वजह से जो है आप कद्दू अभी ना लगा
0: अभी
1: पाए।
0: ना लग, अब 2-4 दिन बाद हमारा कद्दू लग जाएगा
1: तो
0: फिर।
1: बीज वगैरह तो ले आई होंगी?
0: हाँ, बीज ले आए हम।
1: अच्छा, तो बीज जो आप बता रही हो कद्दू को लगाओगी, का ध्यान
0: हाँ,
1: रखोगे, कितनी दूरी पे लगाओगे?
0: वो 1 मीटर की दूरी पे लगेगा कद्दू हमारा,
1: अच्छा अच्छा
0: जैसे
1: तो
0: हाइब्रिड कद्दू है जैसे, तो 1 मीटर की दूरी पे लगेगा।
1: गोल वालो है
0: हाँ,
1: लंबो है?
0: गोल वालो है
1: अच्छा गोल
0: हमारा।
1: वालो है, बिक्री में सही चल जाता
0: बिक्री
1: है
0: में
1: वो।
0: वो सही चला जाता है, फिर वो उतरता भी बहुत है जैसे गोल वाला कद्दू।
1: तो अब जो बरसात को पानी जैसी यूनिट आवेगी खेत में, और
0: हाँ
1: खेत आप बता रही हो कि आपने देसी गोबर की खाद मिला के बाद
0: हाँ
1: तैयार कर दो है, उसके बाद में जो है आप अपने जो कद्दू की रोपाई करने हैं यानी बीज की बुवाई करने हैं वो आप कर देंगी, फिर बाकी बात का ध्यान रखने पड़ेगा कद्दू में?
0: फिर उसमें जैसे कोई मक्खी ना लगे, जैसे कोई सुड़ी ना लग रही हमारे खेत में, तो उस वजह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
1: जी
0: जैसे उसकी आगे की जो किल्ली चलती है उसमें ज्यादातर ध्यान रखना पड़ता है, उससे ही सब आगे बढ़ती है बेल हमारी। ये है।
1: तो उसे भी जाल पे लगा
0: हाँ,
1: होंगी?
0: उसे भी जाल पे ही करेंगे हम।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है।
0: ये
1: आपने सुनिया जी एक बात कही अभी कि जो देसी खाद आपने डाली है अपने खेत में कद्दू वर्गीय फसलों के लिए, तो पशु भी पालती होंगी?
0: हाँ, पशु भी पालते हैं, 2 भैंस है, 1 गाय है, इनको भी जैसे पालते
1: अच्छा,
0: हैं हम।
1: तो गाय भैंस जो आपने पाली है दूध दूध दे रही है ना?
0: जैसे भैंसिया तो हमारी अब अगले महीना में ब्याह जाएगी, फिर दूध चालू हो जाएगा, गैया दूध दे रही है हमारी।
1: अच्छा, पशुओं से हमें अच्छा दूध मिले, पशु
0: हाँ,
1: हमारा स्वस्थ रहे, कोई बार हार मुसीबत ना हो, का ध्यान रखती है अकेले?
0: उसको ध्यान, जैसे कोई बीमारी ना हो, खाने पीने में उसका ध्यान रखते हैं, भूखो ना रहे जैसे हमारा पशु, चारा टाइम से मिलना चाहिए।
1: टीका वगैरह भी लगवा लेते
0: हाँ,
1: होंगे?
0: टीका लगवाते, जैसे किलनी हो जाती है या वैसे कोई कीड़न की दवाई खिला देते हैं उन्हें, कोई कीड़ा पेट में घिसा और ना हो जाए जैसे
1: टीका से जो
0: ऐसे।
1: फायदा है, जैसे बरसात का मौसम चल रहा हो तो
0: हाँ
1: खुरपका है, मुंह पका
0: हाँ
1: है,
0: मुँह
1: जैसी
0: ये बीमारी आती है तो टीका पहले से लगवा देते
1: जी,
0: हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप खेती बाड़ी कर रही हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी कर रही हैं। सोनिया जी आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही हैं और खेती बाड़ी में मुकाम आपने हासिल करा हुआ है और अपने बच्चन को काफी पढ़ाओ लिखा हुआ है। सोनिया जी आपसे बातचीत भई और आपने अपनी खेती बाड़ी के अनुभव हमारे साथ साझा करे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृष्णा भैया, देखो सोनिया जी ने कितनी बढ़िया करके बताई ही कि जो सब्जी है वो कैसे उगाई जा सकते हैं और जो सब्जी उगाने को फायदा का है।
1: बिल्कुल कन्हैया भैया, और देखो जानकारी अपने भैया बहनों तक पहुंच रही है, लेकिन अब भैया मन हो रहा कुछ गौ नहीं बजने को।
2: तो भैया का पहुंचा रहे हैं हमारे शोधन के बीच
1: भैया
2: में?
1: पहुंचा कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि भैया आज तो सुबह से ही झमाझम बारिश भी हो रही है, हवा चल रही है और सावन को महीना है ही है,
2: बिल्कुल,
1: झूला हमारे जो
2: गांव क्षेत्र है।
1: गांव क्षेत्र में जो है झूला पड़े हुए हैं, झूल रहे हैं। तो ऐसे ही एक प्यारो सो लोकगीत है, झूला झूले राधा रानी।
2: तो आओ भैया, अपने सब लोग मिलजुल कर सुनते जाओ सावन लोकगीत।

0: तो भैया बहनों देखो, अभी हम सब ने मिलके सुनो जो प्यारो सो सावन लोकगीत, झूला झूले राधा रानी। और लोकगीत सुनने के लिए कन्हैया भैया हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से भैया बहनों ने, श्रोताओं ने जो है फरमाइश अपनी भेजी, तो हम समझते हैं कि जो उनकी फरमाइश है वो भी पूरी हुई होगी। और सामने घड़ी में देखो भैया, टिक टिक करके जो है इशारों कर रही है कि भैया अब समय ना है कि अपने भैया बहनों से कोई और बातचीत करिए। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के साथ हम दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे आपके बीच कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा
1: और कन्हैया को दीजिए अनुमति। श्रोताओं,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्वर परीक्षा हेतु सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने SINE पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। है आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

रेट 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
6: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित कर अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
5: बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 7,968 करोड़ रुपए से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।

0: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को, 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
0: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी अपनी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला, हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
1: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
3: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लगभग 70 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के 11 विद्यालयों का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। ईद मिलाद उन नबी का पर्व कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर लखनऊ में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मोहम्मदी मिशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ADCP

0: धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस से मोहम्मदी परंपरागत तरीके और निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए SDM रुदौली विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी है।
1: पानी निरंतर घट रहा है। पानी घटने से जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं, इत्यादि समस्याएं होती हैं, उसके दृष्टिगत जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशु चिकित्सालय की टीम है, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और वो लगातार गांव में जाकर देखेंगे और लोगों को संक्रामक बीमारियों से होने वाले जो समस्याएं हैं उससे निजात कराने के लिए छिड़काव इत्यादि करेंगे।
0: वहीं मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है क्या करें जब जन्म के बाद नवजात शिशु न रोए। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
4: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
5: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनीवेट,
4: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
3: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
4: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
5: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
4: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
4: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
5: गंगवार हॉस्पिटल,
4: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे, और मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: सभी श्रोताओं को और पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
6: डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बिल्कुल अलग विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही हमारे श्रोताओं के समक्ष ऐसी समस्याएं आती हैं, कई बार बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है, और न रोने के पीछे की वजह भले ही कुछ भी हो लेकिन उस बच्चे के साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ जाती हैं। तो क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, क्या वजह होती है जो बच्चा नहीं रोता है?
7: देखिए, प्रत्येक

0: नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसका पहला काम होता है रोना, और रोने के साथ वो एक सांस लेता है, गहरी सांस,
1: जी
0: जिससे उसके लंग्स खोलते हैं और वो अपना सांस लेना शुरू करता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, जहां तक रोने की बात है तो कोई बच्चा धीरे से रोता है, कोई बहुत चीख मार के रोता, तो ये दोनों में क्या सही है?
0: देखिए, रोना जरूर इतना जरूरी नहीं, बच्चे का सांस लेना उतना जरूरी है।
1: जी जी
0: अगर बच्चा नहीं भी रोए और उसने सांस अच्छे से ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं। रोना तो उसके साथ इसलिए जोड़ लेते हैं, अक्सर बच्चे तेजी से रोते हैं और सांस लंबी खींच के लंग्स
1: जी
0: उनके खोलते हैं। तो
1: अच्छा
0: जब भी कोई बच्चा अगर पैदा होने के बाद ठीक से नहीं रोया, उसकी सांस नहीं आई, तो उसका इस दुनिया में आने पे अपना सिस्टम शुरू नहीं हो पाया।
1: जी जी
0: जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, उन गैसेस का जो एक्सचेंज है वो थ्रू प्लेसेंटा होता है, माँ के थ्रू होता
1: यानी
0: है।
1: माँ के शरीर
0: माँ
1: के
0: के
1: माध्यम से
0: शरीर
1: होता है।
0: के ब्लड के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन बच्चे के तक पहुँचती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के जरिए माँ के शरीर के द्वारा बाहर निकलती है।
1: एक श्रोता लाइन पर आगे, डॉक्टर
0: जी
1: साहब इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: अगर हम मुन्ना लाल बोल रहे हैं, ग्राम ताजपुर
1: जी,
2: बोल
1: टहा
2: रहे हैं।
1: ताजपुर के मुन्ना लाल जी एक बार फिर रेडियो हेल्पलाइन में
0: हाँ
1: हमारे साथ।
0: नमस्कार मुन्ना लाल जी, बताइए आज क्या प्रश्न है आपका।
2: एक सर, हमारे यहाँ DST में बच्चा पैदा हुआ है
0: जी
2: और बच्चा पैदा होने पे रोया नहीं,
0: जी,
2: और बच्चा किनारा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप बरेली ले जाइए किसी बच्चे वाले डॉक्टर के पास, इसको मशीन पे रखना होगा।
0: नहीं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका मैं अभी जवाब देने की प्रयास करूंगा पूरी तरह से। देखिए, जब बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो इसका मतलब उसके जो अपना सांस लेने सिस्टम है वो शुरू नहीं हो पाया। तो जब बच्चा नहीं रोता है तो उसके लंग्स ओपन नहीं हो पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसे परेशानी होती है, या उतना अच्छे से सांस नहीं ली जितना उसको चाहिए होती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे बच्चे का जो SpO2 है वो कम होने लगता है और बच्चे किन्हाना शुरू करता है। किन्हाने के साथ साथ बच्चे के सांस लेने में गड्ढे पड़ने लगते हैं, रिट्रैक्शंस होने लगते हैं। कई बार जो देहात में कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते कहते हैं कि पैदा होते ही निमोनिया हो गया, हाँ, या कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस खराब हो गई, इसने गंदा पानी सांस में ले लिया, तो सांस में गंदा पानी ले लिया, इसकी वजह से सांस खराब हुई, या पैदा होते ही निमोनिया हो गया, या फिर पैदा होते ही निमोनिया तुरंत तो अक्सर नहीं होता है, उसमें कुछ समय चाहिए। तो पैदा होने के तुरंत बाद बच्चा जब सांस नहीं लेता है तो उसकी वजह से शरीर में जो नुकसान होता है वो शरीर के हर हिस्से को नुकसान होता है, और ये जैसे बच्चे पैदा होते समय फंस गया, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की ट्राई कर रहे हैं और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो बच्चे का माँ की तरफ से तो डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, वो अलग होना शुरू हो जाता है, और उसका अपना सिस्टम शुरू नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से एक तरह से उसका दम घुटता रहता है, तो इसको एस्फिक्सिया बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चे में जब अगर ये तकलीफ होती है तो उसको अब हम लोग बोलते हैं HIE, हाइपोक्सिक इश्मिक ब्रेन इंजरी, जी ब्रेन को नुकसान होता ऑक्सीजन की कमी के होने से।
1: जी
0: तो आज की तारीख में इन बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो है थेरेप्यूटिक होल बॉडी हाइपोथर्मिया। नवजात शिशु को हम 72 घंटे के लिए बिल्कुल एक टेम्परेचर जैसे कि 34 से 36 के बीच में टेम्परेचर सेट करते हैं, और 34 या 34.5 डिग्री पे उसको 72 घंटे के लिए रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको वार्मिंग करते हैं। तो होल बॉडी हाइपोथर्मिया देने के लिए आपको दो तरह की मशीन आती है, एक इंडिजिनस मशीन है जो पहले यूज होती थी जिन्हें मिराकेडिल बोलते थे, और आजकल जो नई मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, आप उसमें एक बार सेट कर दीजिए टेम्परेचर बच्चे का, वो धीरे धीरे ठंडा करके आपको उस टेम्परेचर पे वो सेट कर देंगी, और जब 72 घंटे हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे बच्चे को रिवार्मिंग कर ले नॉर्मल टेम्परेचर। आपको बच्चे ठंडा रखने से ये फायदा होता है, जो बच्चे को होने वाला नुकसान है वो
1: जी
0: मिनिमाइज हो जाता है, तो बच्चे के जो दिमाग पे बुरा असर आता है इस तकलीफ की वजह से वो बच्चे को नुकसान कम हो जाता है और सेरेब्रल पैल्सी होने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन ये होल बॉडी हाइपोथर्मिया पिक्सिया वाले बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रो रहे हैं, उनको उसी सेटअप में आप हाइपोथर्मिया देने की कोशिश करें जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हों, जैसे कि सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग, आप इसमें अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं सीजर्स को, सटल सीजर्स जो आपको क्लिनिकली नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं और बच्चे को दौरे हमें नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तो वो मशीन लगा के आप सीजर्स कंट्रोल कर सकते हैं, आप जल्दी पता लग जाता है कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, आप उस हिसाब से दौरे की दवाई दे सकते हैं। थेरेप्यूटिक

0: हाइपोथर्मिया देने के लिए ये भी जरूरी है बच्चे का वजन 2 किलो से ऊपर हो
1: अच्छा
0: और बच्चे आपको 6 घंटे के अंदर मिल जाए।
1: जी।
0: बच्चे अगर 6 घंटे के बाद मिलता है तो थेरेप्यूटिक बॉडी उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, जबकि आजकल 6 घंटे से 12 घंटे के बीच भी नए स्टडीज आए, रिसर्च हुए कि आप 12 घंटे के अंदर भी थेरेप्यूटिक बॉडी हाइपोथर्मिया
1: दे
0: देने का
1: सकते हैं
0: प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो है विद इन 6 आवर्स। और जितना आप जल्दी शुरू, तो शुरू में जब बच्चा आपको प्राप्त होता है तो आपको पहले उसको हीमोडायनेमिकली आपको स्टेबल करना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपको मिला और आपने तुरंत उसे हाइपोथर्मिया पे डाल दिया।
1: जी।
0: पहले बच्चे को स्टेबलाइज करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, उसका ऑक्सीजन लेवल सही से आने लगे, उसका बीपी सही से आने लगे। जब
1: उसके बाद
0: बच्चा
1: मशीन
0: स्टेबलाइज हो जाए तब उसको हाइपोथर्मिया मशीन पे डालते हैं, जिससे कि उसको जो ब्रेन को नुकसान है वो कम

0: उसको हाइपोथर्मिया मशीन पे डालते हैं, जिससे कि उसको जो ब्रेन को नुकसान है वो कम से कम हो, तो आगे आपको सेरेब्रल पैल्सी होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी,
0: सर्वाइवल बेटर हो सकता है, आउटकम बेटर हो सकता है। बच्चा अगर पैदा होने के बाद किनारा है, उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 है, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो रहा है, उसका SpO2 लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये बच्चे को हाइपोक्सिक इस्केमिक इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है।
1: जी,
0: और इस बच्चे का तुरंत इलाज एक अच्छे अस्पताल में होना चाहिए, जहाँ पे कि आपको सारी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके, अगर संभव हो तो होल बॉडी हाइपोथर्मिया भी दी जानी चाहिए। तो ये समस्या है। अच्छा, अब इससे जब बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोता है तो क्या होता है, एक तो हो गया ब्रेन को नुकसान, क्यों नुकसान तो शरीर के हर हिस्से को होता है,
1: बिल्कुल,
0: लंग्स को भी नुकसान होता है। कई बार ये बच्चे जब ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है तो वो मीकोनियम पास कर देते हैं।
1: अच्छा
0: है, मीकोनियम बच्चे की फर्स्ट पॉटी को मीकोनियम बोलते हैं।
1: जी जी।
0: और उस मीकोनियम की जो अगर सांस में चले जाते हैं तो कई बार मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम डेवलप होता है,
1: फेफड़े में चला जाता है
0: जी, तो उसमें बच्चे की सांस बहुत खराब होती है।
1: अच्छा।
0: और उसमें फिर एक चीज और बहुत कॉमन होती है, जिसको हम लोग PPHN बोलते हैं, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वहां पर अक्सर कई बार आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर की भी जरूरत पड़ जाती है, उन बच्चों को ऑक्सीनेशन मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कई बार इन बच्चों के साथ साथ होता है, बर्थ एस्फिक्सिया के बच्चे हैं। अब ये एक तो हो गया आपका ब्रेन इंजरी, दूसरा लंग इंजरी, तीसरा हार्ट में मायोकार्डियल डिसफंक्शन होता है।
1: अच्छा।
0: क्यों, जो हाइपोक्सिक इंजरी हार्ट को हुई उसकी वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता, कई बार इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, या कई बार टैकीकार्डिया होता है, या फिर अरिथमियाज होते हैं, तो हार्ट इन्वॉल्वमेंट भी होता है। फिर बच्चों का जो GIT है, गट है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे कि दूध डाइजेस्ट करने में इनको प्रॉब्लम आती है, हाथों में भी समस्या आती है। फिर सबसे AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, कि बच्चों के जो गुर्दे हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और उनको पेशाब होना कम शुरू हो जाती है, बाद में उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ये बढ़ने लगता है। सबसे जो पहले मार्कर बढ़ता है उसको हम लोग NGAL बोलते हैं। तो NGAL अगर बच्चे का किसी का बढ़ा हुआ फर्स्ट डे, तो उसको इस बात के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको AKI होगा, और उसको एक दिन बाद या दो दिन बाद ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इन बच्चों को जब जिन बच्चों को AKI हो जाता है और आउटपुट बिल्कुल नहीं होता, पेशाब नहीं होती, तो उनके लिए फिर हम लोगों को डायलिसिस भी करनी पड़ती है, जिसको हम लोग PD बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस।
1: अच्छा।
0: तो उसमें जो पेरिटोनियल फ्लूड डाल के फ्लूड को साइक्लिंग करते हैं, और उसमें फ्लूड डालते हैं, फ्लूड निकालते हैं, तो उससे हमें सैलवेज हो जाता है कि एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से जो आपके प्रोडक्ट्स बच्चे के शरीर में बढ़ते जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है
1: जी,
0: उसको आप बढ़ने को कम कर देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम बढ़ने लगता है जब एक्यूट किडनी इंजरी होती है, तो उसको मैनेज करने में आपको ईजी हो जाता है। तीसरा, आपका जो फ्लूड मैनेजमेंट है उसमें ईजी हो जाता है, वरने क्या होता है, जब पेशाब नहीं हो रही, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, IV फ्लूड दे रहे हैं, ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे हैं, तो बच्चे के शरीर में जा रहा आ कुछ भी नहीं रहा, तो फ्लूड ओवरलोड हो जाता है। उधर मायोकार्डियल इंजरी होती है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है फ्लूड पंप करने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों को एडिमा होने लगता है, सूजन आने लगती है। तो AKI हो गया, और ऐसे बच्चों का इनका जो दूध हम जब देना शुरू करते हैं, पहला दूध कोशिश होना चाहिए माँ का ही दूध दें, ये दूध बच्चे पी तो सकते नहीं, तो इनको EBM मतलब एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देते हैं।
1: अच्छा।
0: माँ का दूध निकलवा के और नली से देते हैं, जिसको नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग बोलते हैं। तो वो दूध जितना जल्दी हो उतना जल्दी देना शुरू करना चाहिए, जिससे कि आंत ठीक से काम कर सके, और फिर धीरे धीरे उस दूध को बढ़ाना होता है। आपको जो दूध देना शुरू करते हैं तो कई बार ये दूध डाइजेस्ट नहीं करते, और आपके जो दूध बढ़ाने का जो रेट है वो बहुत धीमे रखना पड़ता है।
1: जी जी।
0: और फिर एक दिक्कत और आती है, चूंकि ये बच्चे बहुत कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो इनको सेप्सिस होने का चांस बहुत रहता है।
1: अच्छा।
0: जिसे हिंदी में बोलते हैं जहरबाद।
1: जहरबाद।
0: तो सेप्सिस होने पे इनको आपका दुनिया भर की परेशानियां आना शुरू होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपको फिर ब्लड कल्चर करा के उनका कौन से बैक्टीरिया, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देना पड़ती है।
1: जी जी।
0: है ना, और दूसरी दवाइयां देनी पड़ती हैं। तीसरा, कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है
1: जी।
0: या फिर लीवर डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोथंबिन टाइम और APTT और INR आपका चेंज होने लगता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो वहाँ पे आपको FFP भी चढ़ाना पड़ता है या कई बार प्लेटलेट कंसंट्रेट चलाने पड़ते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है।

0: तो उसकी वजह से कई बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आपको आरबीसी ट्रांसफ्यूज करने होते हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो सेप्सिस से बचाना होता है, सेप्सिस ना हो तो उसके लिए आपको आपका जो स्टाफ है वो पूरा एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करे प्रॉपर से। और जो बच्चे अक्सर ये वेंटिलेट करने पड़ते हैं तो वेंटिलेशन की भी अपनी अलग समस्या है, कई बार बच्चे ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होते हैं। अच्छा। बैप बोलते हैं इसका।
1: जी जी,
0: तो वो हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है और शरीर का हर हिस्सा इस तकलीफ में इन्वॉल्व हो जाता है।
1: जी मुन्ना लाल जी, और क्या जानना चाहते हैं आप?
2: सर बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, समस्या भले ही एक छोटी सी थी कि बच्चा नहीं रोया, कहने के लिए तो ये है कि पैदा होने के बाद बच्चा नहीं रोया।
0: नहीं रोने का मतलब हुआ बच्चे ने ठीक से अपनी सांस नहीं ली और बच्चे के एक तरह से दम घुटता रहा, और जब दम घुटेगा तो शरीर का हर हिस्सा जवाब देगा,
1: बिल्कुल,
0: चाहे ब्रेन हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे गट हो, इंटेस्टाइन हो,
1: जी
0: इवन हमारे जो प्रतिरोधक डिफेंस सिस्टम है वो भी
1: इफेक्ट हो जाता,
0: कम्प्रोमाइज हो जाता है और बच्चे को सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो जहरवाद वाली बात आपने बताई, बच्चा रंग बदलने लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा रंग बदल रहा है, तो तरह तरह की भ्रांतियां भी लोगों में आती हैं कि साहब ये कोई हवा का चक्कर है, इसलिए रंग बदल रहा है।
0: जी जी जी पांडे जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये नवजात शिशु जिसको आप कह रहे हैं रंग बदलता है, उसमें कई वजह हो सकते हैं। देखिए, जब नवजात शिशु को शॉक में होता है, शॉक मतलब दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, परफ्यूजन अच्छा नहीं है, तो बच्चा सफेद सा दिखता है।
1: अच्छा।
0: तो बच्चा दूसरा, अगर बच्चे को पीलिया बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चा
1: पीला
0: दिखता है।
1: जी।
0: बच्चे को अगर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई और बच्चा ऑक्सीजन कमी की वजह से नीला पड़ने लगा तो बच्चा नीला हो गया। और एक और बच्चे का कलर होता है जिसको लोग ग्रेइश बोलते हैं, वो बच्चा जिनको सेप्सिस हो जाती है उनका ग्रेइश लुक हो जाता है, स्लेटी सा रंग।
1: जी जी।
0: तो उसको हम लोग ग्रेइश या सेप्टिक लुक बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो सेप्टिक लुक हो सकता है जॉन्डिस की वजह से, पीला हो सकता है, सफेद हो सकता है, उसकी वजह से खून की कमी की वजह से भी सफेद हो सकता है बच्चा।
1: जी जी जी।
0: अगर ब्लीडिंग कहीं से हो जाए
1: जी,
0: है ना।
1: तो बच्चे का रंग बदलना कोई ऊपरी हवा का चक्कर नहीं बल्कि अंदर की समस्या है।
0: जी जी। बच्चों को, इन बच्चों को दौरे भी पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं तो इनका पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो कंप्रोमाइज होते हैं, तो उस समय आपका परफ्यूजन कम हो जाता है, वो सफेद पड़ने लगते हैं।
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो बच्चे के ना रोने की बात है, जन्म के तुरंत बाद बच्चा अगर नहीं रोया और उसके बाद कुछ गोल्डन आवर्स की बात भी आप लोग करते हैं, कितने समय के अंदर उसको सही जगह पर, या ये कहें कि एक ऐसे अस्पताल में जहां नवजात शिशुओं के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पहुंचाना जरूरी होता है, समय का क्या महत्व?
0: जी, समय का महत्व तो इसलिए बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो हमारी ब्रेन इंजरी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो होना शुरू हो जाती है। कायदे से तो इन बच्चों को 3 मिनट के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए।
1: 3 मिनट के अंदर?
0: 3 मिनट के अंदर।
1: जी जी।
0: क्योंकि 3 मिनट के बाद हमारे ब्रेन में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखो, किसी को जो अगर 3 मिनट किसी को सांस ना लेने दो आप,
1: जी जी,
0: तो जीवन समाप्त।
1: जी बिल्कुल सही।
0: लेकिन नवजात शिशुओं की क्षमता ईश्वर ने दी है कि वो कई बार ठीक से 3 मिनट तक सांस नहीं ले फिर भी वो जीवित बच जाते हैं। एडल्ट के पास ये क्षमता नहीं है कि 3 मिनट वो सांस ना ले और बच जाए।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: या कोई उसका 3 मिनट के लिए गला दबा ले और वो बच जाए।
1: जी जी जी जी।
0: तो नवजात शिशु को जब ये दिक्कत आना शुरू होती है और 3 मिनट के अंदर कायदे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो इसका मतलब पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट वहीं उपस्थित होना चाहिए जहां बच्चे की डिलीवरी हो रही है।
1: बिल्कुल, जन्म के समय डॉक्टर का मौजूद रहना
0: जरूरी है, खासतौर से नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का। अब अगर मान लीजिए वहां पे डॉक्टर नहीं है तो फिर दूसरा है कि फर्स्ट आवर जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, वो आवर बहुत जरूरी है, और उस आवर में अगर बच्चा आपको मिल जाता है तो उसके कई एडवांटेज हैं। आप बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लेते हैं, दूसरा आप बच्चे को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तीसरा बच्चे को आप होल बॉडी हाइपोथर्मिया दे सकते हैं, चौथा आप जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगे। क्योंकि नुकसान आपको कम होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें निश्चित ही बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो आपसे जरूर जानना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो ये स्वाभाविक है, जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोएगा, लेकिन क्या ऑपरेशन में भी यही होना चाहिए? ऑपरेशन के तुरंत बाद जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो क्या उसे रोना बहुत जरूरी है?
0: देखिए, रोना तो देखो, चाहे बच्चा बाहर आ रहा है ऑपरेशन से, चाहे बच्चा आ रहा है पैदा हो गया नॉर्मल, दोनों को सांस लेनी पड़ेगी तभी तो जीवन शुरू होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो उस बच्चे को भी रोना जरूरी है जो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, और जो बच्चा नॉर्मली पैदा हो रहा है वो भी, उसका भी

0: होना जरूरी है।
1: जी।
0: हाँ, तो कई बार बल्कि एस्फिक्सिया उन बच्चों में ज़्यादा होता है जहाँ पे नॉर्मल ट्राई करते रहते में फंस जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में पड़ा रहता है, वो बच्चे को ना तो माँ से सप्लाई मिल रही, ना बाहर से अपनी सप्लाई शुरू हो पा रही, त्रिशंकु वाली हालत हो जाती, ना इधर का ना उधर का, तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। इसलिए जो आजकल के न्यूट्रिशन या लेडी डॉक्टर्स हैं वो पहले से डिसाइड करके कि हाँ इसको प्लान सीजीरियन करना है, इसको नॉर्मल ट्राई करना ही नहीं है। तो बहुत कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कि आप
1: नॉर्मल ट्राई नहीं कर
0: नहीं
1: सकते।
0: करते हैं, जैसे कि कई बार हुआ कि ट्रांसवर्स लाई है या बच्चे को प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर कई बार बच्चा ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पा रही है अंदर, या आपका पहले दो सीजरियन ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप नॉर्मल ट्राई नहीं करते, कहीं जो पिछले सीजरियन से उनके जो स्टिचेस हैं वो आपके खुल ना जाए, है ना,
1: कई रिस्क होते हैं।
0: कई रिस्क होते हैं।
1: जी
0: तो एक एक ही प्लांट सीजरियन होता है, एक होता है कि बच्चा ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में आ गया, अब नॉर्मल पैदा नहीं हो पा रहा है तब
1: जी
0: सीजरियन
1: तब
0: हुआ,
1: सर्जरी
0: तो
1: हुआ।
0: उस सीजरियन में भी वो बच्चे के ना रोने के चांस हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर उस बच्चे की पैदाइश नॉर्मल भी हो जाए तब भी वो कम्प्रोमाइज है, तब
1: बिल्कुल
0: भी वो पैदा होने के बाद दिक्कत करेगा। तो
1: जी।
0: कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद अगर तुरंत नहीं रोता है, सांस प्रॉपर सही से नहीं आती है, बच्चा कुन कुन कुन कुन कुन और उसके बाद बच्चा किनाना शुरू कर देता है, तो उस बच्चे को आप घर में लेके ना बैठे। और अगर उसकी सांस खराब है, सांस तेज चल रही, बच्चे को सांस ठीक से नहीं आ रही, तो देहात के चक्कर में ना पड़े, वहाँ पे वो कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा कर देते, निमोनिया हो गया पैदा होते ही,
1: जो
0: और
1: कि
0: ये
1: गलत है।
0: वो गलत है, वो
1: जी
0: इलाज नहीं है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि फिल्मों में कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, उसके पैर से पकड़ के उसे उल्टा किया और उसकी पीठ थपथपाते हैं, ये कोई प्राकृतिक क्रिया है क्या? ऐसा
0: नहीं
1: करना
0: नहीं नहीं
1: उचित
0: ये
1: है?
0: नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए इसको,
1: जी
0: इसकी वजह से बच्चे के IBH हो सकता है और बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित ना करें और ऐसे बिल्कुल भी ना करें। खास तौर से कई जगह जहाँ पे लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ANM है या GNM है या और डिलीवरी करा रहा
1: मतलब
0: है
1: जो
0: तो
1: प्रशिक्षित लोग नहीं है
0: नहीं
1: अगर।
0: है, और वो अगर बच्चा ऐसा है तो लटका के ये काम बिल्कुल ना करें। आप उसको ये कर सकते हैं कि बच्चे को क्लीन करके उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे सकते हैं पैर में या तलवे में, हल्की सी उंगली मार के, या उसको जो पीठ में आप थोड़ा स्टिमुलेशन दे सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, या फिर आप बहुत हल्के से उसको थपथपा सकते हैं जिससे कि वो सांस लेने लगे।
1: लेकिन उल्टा नहीं करना है।
0: उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है।
1: जी, वाकई में जो फिल्मी बातें हैं उन्हें फिल्मों तक रहने दें, और अपनी
0: आजकल
1: साधारण
0: की फिल्मों में नहीं दिखाते, वो
1: जी
0: पुरानी फिल्मों में दिखाते थे।
1: जी जी लेकिन पुराने लोग घर में होते हैं तो वो अपनी बात पहले आगे रखते हैं कि हम अनुभवी हैं।
0: नहीं, जमाना जैन जी का सर।
1: जी, जमाना भले जैन जी का हो डॉक्टर साहब, लेकिन बातें सभी हमारे श्रोताओं को पता होनी चाहिए, ये जरूरत है आज की
0: नहीं,
1: सर।
0: ऐसा नहीं है, जैन जी को बहुत कुछ पता है,
1: जी
0: वो हम लोग उनके कांटेक्ट में जब आते हैं तो पता लगता है उनका लेवल क्या है।
1: जी
0: वो हम लोगों के पास जब पहुंचते हैं ना तो
1: जी
0: पूरा ChatGPT गूगल पूरा देख के पहुंचता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वो एक एक दवाई को फिर ChatGPT पे गूगल पे करके देखते हैं डॉक्टर साहब ने दवाई किस चीज के लिए दी है,
1: जी
0: और कोई भी आप फालतू दवाई दे दो तो ये क्यों दिए इसको, ये तो गूगल मना कर रहा
1: जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बातें
0: है।
1: अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो सही जानकारी है, चूंकि आप एक वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन हैं सर, बाल रोग विशेषज्ञ हैं,
0: जी
1: और लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपसे जो बात हमारे श्रोताओं को मिलेगी निश्चित ही उनके फायदे की होगी। यहाँ
0: जी
1: पर बात है बच्चे के तुरंत ना रोने की और क्या करें, शंकाएं और समाधान की बात भी हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने बहुत तरह की मशीनों के नाम लिए, बहुत तरह की प्रोसीजर बताए कि जो बच्चे अगर नहीं रोते हैं तो उनके साथ ये हो सकता है, ये करना पड़ सकता है, और क्या खास बात बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अगर कोई बच्चा तुरंत बाद नहीं रोया लेकिन कुछ
0: देखिए
1: समय के बाद रोया तो उसका जीवन कैसा रहता है फिर बाद में?
0: जी, ऐसा 1,000 डिलीवरी में सिर्फ 10% डिलीवरी ऐसी होती है जहाँ पे कुछ असिस्टेंस देने की डॉक्टर को ज़रूरत होती है,
1: अच्छा,
0: बाकी 990 डिलीवरी में कोई
1: जरूरत
0: ज़्यादा
1: नहीं होती।
0: किसी प्रकार ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती।
1: अच्छा
0: तो 1,000 में 10 बच्चों के लिए आपको डॉक्टर्स के लिए वो इमरजेंसी होती है, फिर तो उसमें आपको रेसिस्ट्रेट करना पड़ता है उसको, बच्चे को आपको कार्डिक वो भी देना पड़ता है पल्सेशन, और आपको रेस्पिरेशन भी देना पड़ता है, और उन 10 में से भी एक बच्चा बहुत सीरियस होता है,
1: अच्छा
0: 0.1%।
1: जी, 0.1% रह जाता
0: हाँ,
1: ये।
0: तो उन बच्चों को आपको सब कुछ करना पड़ता है, और वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर सांस नहीं ले रहा है तो पहला काम तो ये कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा मुंह साफ करके और उसको अच्छे से कॉटन में लपेट दें
1: जी
0: या कंबल कपड़े में, साफ कपड़े में लपेट

0: पेट को, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे दे, उसकी पीठ को सहला दें या थपथपा दे, और उसके जो तलबे को उसको थोड़ा सा स्ट्रोक कर दे। अगर बच्चा सांस लेने लगे तो अच्छी बात है, अगर बच्चा नीला पड़ रहा और उसका SpO2 लेवल कम हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लगा के फिर अपने पास ना रखें, बच्चे को तुरंत शिफ्ट
1: तुरंत
0: करने की
1: डॉक्टर के
0: व्यवस्था
1: पास
0: करें,
1: लेके जाएं।
0: क्योंकि
1: जी
0: आने
1: सर,
0: वाले टाइम में उस बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है।
1: जी जी
0: एक चीज़, अब बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, उसका सिर्फ दिल काम कर रहा है, तो आपको फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप दो तरीके से दे सकते हैं,
1: जी
0: या तो वो आते हैं एम्बू बैग, जिनको आप मुंह पे लगा के और बच्चे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन
1: ये
0: उसके दे
1: तकनीकी
0: सकते
1: काम है डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर को ही करना
0: हैं। नहीं,
1: चाहिए।
0: वो कर वो भी सकते हैं, अगर आप
1: अच्छा जी,
0: प्रॉपरली ट्रेन नर्सेस हैं आपकी, वो भी एम्बू बैग दे सकती हैं,
1: अच्छा
0: उसमें ऐसे कुछ बहुत बड़ा स्किल्ड वाला काम नहीं है,
1: अच्छा
0: लेकिन अम्बू बैग को रखना, प्रॉपर पोजिशन लगना और उसकी कितनी उसको प्रेशर देना है, कितनी फिंगर्स से यूज करना है।
1: जी जी
0: जो अगर नॉर्मल न्यू नेट नॉर्मल नवजात शिशु, उसमें हम लोग 3 फिंगर्स यूज करते हैं,
1: जी
0: थंब और 2 फिंगर्स, और जो
1: जी
0: प्रीमेच्योर बच्चे हैं उसमें 2 फिंग मतलब थंब और वो यूज करते हैं। फिर आपको उसके साथ प्रेशर मीटर भी लगाना चाहिए कि आप कितने प्रेशर से सांस दे रहे हैं, वो बिलो 40 होना चाहिए,
1: अच्छा
0: सबसे अच्छा है कि वो बिलो 20 हो,
1: अच्छा
0: है ना। तो आप प्रेशर मीटर लगाने से आपको पता लगता रहता है कि आप कितने फोर्स से सांस दे रहे हैं,
1: जी
0: ऑक्सीजन कब दे रहे हैं और कितने परसेंट ऑक्सीजन। वैसे कई बार ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना सांस देने की ज़रूरत होती है, और
1: जी
0: आपके पास एम्बू बैग भी नहीं है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, तो आप लास्ट में ये कर सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं।
1: ओहो, अच्छा
0: हाँ, अपने मुंह से बच्चे को सांस दे सकते हैं,
1: जी
0: उसमें हो सकता है सांस आना शुरू हो जाए। अगर उसमें उसका दिल भी काम नहीं कर रहा तो आपको कार्डिक कंप्रेशन भी देने पड़ेंगे,
1: जी
0: जिसमें कि आपको दोनों थंब यूज करके आपको चेस्ट दबाना पड़ेगा 1/3,
1: जी
0: और चेस्ट कंप्रेशन देने पड़ेंगे जिससे कि दिल काम करना शुरू करे।
1: CPR जिसे
0: हाँ,
1: कहते
0: इस
1: हैं।
0: अभी तक यहाँ तक
1: जी
0: कोई ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती।
1: जी अच्छा
0: हाँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है, एक
1: जी
0: चीज।
1: जी
0: दूसरा, अगर बच्चा कार्डिक कंप्रेशन देने के बाद उसका दिल आ गया, सांस अभी भी नहीं आ रही, तो आपको बच्चा इंट्यूबेट करना पड़ेगा।
1: अच्छा
0: इंट्यूबेट करने के बाद आप बच्चे को अम्बू बैग पे कनेक्ट करके उसको अच्छी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ आगे का मैनेजमेंट हो
1: डॉक्टर
0: सके।
1: साहब, जितनी बातें आपने बताई हैं ये बिना प्रशिक्षण के तो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित होना
0: नहीं,
1: बहुत
0: सरकार
1: जरूरी है।
0: हमारी प्रशिक्षण देती रहती है,
1: जी
0: नर्सेस को भी देती रहती है, डॉक्टर्स को भी देती रहती है,
1: अच्छा अच्छा
0: और इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, और नेशनल न्यूट्रोलॉजी फोरम है NNF,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: भी इस तरह के
1: प्रशिक्षण दिया
0: वर्कशॉप
1: जाता
0: कराते
1: है।
0: रहता है सबको, ट्रेन करवाने को, जिसमें आपको अम्बू बैग है, कार्डिक कंप्रेशन देने का है, CPR देने का है, वो
1: जी
0: सब एक एक दिन दो दो दिन के कोर्सेज होते रहते हैं, नर्सेज के लिए अलग, डॉक्टर्स के लिए अलग, और क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं वो भी वो
1: बताया
0: लोग
1: जाता
0: बताते
1: है। जी
0: रहते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जी
1: बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि वो कौन सी माताएं हैं जिनके साथ ये संभावना ज़्यादा रहती है कि बच्चा हो सकता है पैदा होने के तुरंत बाद ना रोए। मेरा आशय है आज की आधुनिक जीवन शैली में जो बीमारियों का चलन बढ़ा है, जैसे शुगर की बीमारी कई बार माताओं को होती है, तो कई बार थायराइड की बीमारी होती है, और कई बार दिल की मरीज भी हो जाती हैं महिलाएं, तो वो कौन से बीमारियां हैं जिनके साथ ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चा
0: देखिए,
1: नहीं
0: माँ का
1: होगा।
0: ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए,
1: जी
0: और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मदर्स का BP बढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PIH,
1: जी
0: प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन,
1: जी
0: और अगर ये साथ में स्वेलिंग आ गई तो इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया, और
1: अच्छा
0: स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और बाद में दौरे भी पड़ने लगे, तो
1: जी
0: ये हो
1: ये
0: गया एक्लेम्पसिया
1: माता को अगर हो रहा है।
0: माता को।
1: जी
0: तो माँ को दौरे पड़ने, सूजन आ गई और माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, तो ये एक्लेम्पसिया हुआ,
1: जी
0: प्री एक्लेम्पसिया, जिसमें कि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा
1: जी
0: और सूजन आ गई पूरे शरीर, खासतौर से पैरों पे,
1: जी
0: और अगर सूजन नहीं आई तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है,
1: जी
0: तो
1: अच्छा
0: उसमें माँ को रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। ये
1: अच्छा
0: PIH प्री एक्लेम्पसिया अक्सर सिक्स
1: जी
0: मंथ्स के आसपास होना शुरू होते हैं, 6 मंथ्स के गर्भावस्था के बाद।
1: अच्छा
0: अच्छा, दूसरी चीज़ है माँ का ब्लड शुगर,
1: जी
0: कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी डायबिटीज होती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपका ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है,
1: जी
0: और जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है माँ का ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है,
1: नॉर्मल आ जाता
0: तो
1: है
0: इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज।
1: डायबिटीज।
0: तो इसको आप डिटेक्शन, आप अपने लेडी डॉक्टर दिखा के अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल वो करा के
1: जी
0: डिटेक्ट कराए, और प्रॉपर शुगर कंट्रोल होना चाहिए। माँ का प्रॉपर शुगर कंट्रोल इंसुलिन से ही होना चाहिए, खाने वाली दवाइयों पे बहुत कम दवाई इस्तेमाल होती हैं जो कि माँ के ब्लड शुगर लेवल को
1: कंट्रोल कर।

0: गर्भावस्था में,
1: जी गर्भावस्था में,
0: जी जी जी
1: हाँ उसके बाद तो आप दवाई ले सकते।
0: जी जी
1: अच्छा, तीसरी चीज है एक थायराइड।
0: जी
1: तो कई बार कुछ मदर्स को थायराइड पहले से होती है और कुछ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो सकता है।
0: जी
1: बच्चे को हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकती है
0: और डिलीवरी के समय भी समस्याएं हो सकती है।
1: डिलीवरी समय बच्चा सुस्त हो सकता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है।
0: जी, जी।
1: और डिलीवरी एक बार हो गई, अब मदर को हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो उसका करीब 48 घंटे बाद बच्चे का थायराइड लेवल करा लेनी चाहिए। अगर बच्चे को भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी थायराइड की दवा दी जाएगी। और थायराइड की दवाई अगर उस समय मिस हो गई, आपने नहीं दे पाए किसी कारणवश, और उस हाइपोथायरॉइडिज्म हुई, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और बच्चे स्लो हो जाता है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटीज कम हो सकती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जागरूक रहने की आवश्यकता है, और विशेष तौर से जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चा नहीं रोता है तो ये कई गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करता है। इसलिए जो गोल्डन आवर्स की बात आपने बताई है,
1: फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर,
0: जी, तो वो ध्यान रखनी है। और बच्चे के साथ कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो तो समय ना गंवाए, समय रहते उचित स्थान पर एक अच्छे योग्य चिकित्सक से ही इलाज कराएं,
1: लापरवाही ना करें।
0: और इसी के साथ आज की रीड हेल्पलाइन कार्यक्रम से मुझे यानी मुकेश कुमार पांडे को डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी के साथ अनुमति दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।
5: किस तरह करना था तब सारा ज्ञान भला किस काम का रह गया। पानी में तैरने के तरीके की जानकारी मात्र से आप तैराक नहीं कहे जा सकते हैं, उसके लिए तैरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र तक पढ़ता रहे और एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक बन जाए, किंतु जब अपने ज्ञान से देश की सेवा करने और यश प्राप्त करने का समय आए तब वह साधु बन जाए। अब बताओ उसके ज्ञान का कोई मूल्य बचा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जगह कहा है कि ज्ञानार्जन उत्तम कार्य है, किंतु जन कल्याण में उसका उपयोग संसार के सारे कार्यों में सर्वोत्तम है। इसी तरह अरस्तु के दर्शन में ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक सुखी और सार्थक जीवन जीना है, जिसे केवल विचारों में जीने से नहीं बल्कि नैतिकता को दैनिक जीवन में उतारने से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका कथन है, हमें कुछ भी सीखने से पहले उसे करके सीखना पड़ता है। केवल किताबें पढ़ने या व्याख्यान सुनने से ही व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। एक अंग्रेजी विद्वान फ्रांसिस बैकन ने कहा है कि पढ़ना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, लिखना उसे त्रुटिहीन करता है और बातचीत उसे हाजिर जवाब बना देता है। आप भले ही बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लिए हों, किंतु आपके व्यवहार में या बोलचाल में जो दिखाई देता है वही आपका ज्ञान है। कई बार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना सटीक और तेजी से हिसाब नहीं जोड़ पाता जितना एक अशिक्षित मजदूर जोड़ लेता है, क्योंकि वह अपनी टीम की मजदूरी का हिसाब किताब रोज करता रहता है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने में चूक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। कारण यह है कि जिसे परखा न गया हो वह ज्ञान खरा नहीं हो सकता। आग जलाती है, इसे बच्चा तब जान पाता है जब वह आग को छू लेता है। किशोरावस्था में बच्चों की सोच व्यवहारिक नहीं होती, फिर भी वह

अपनी ही सोच को सही मानते हैं, माँ बाप से विद्रोह करते हैं और अंत में गंभीर गलती कर बैठते हैं। कहा जाता है कि बेटा अपने बाप को तब सही मानता है जब उसका अपना बेटा उसे मूर्ख कहने लगता है। आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें इसलिए मैं एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, वहीं तोतों का एक झुंड रहता था। एक दिन ऋषिवर को सूझा कि तोते उनके शिष्य हो सकते हैं और उन्होंने सभी तोतों को बुलाकर शिष्य बना लिया। अपने गुरु को पाकर तोते भी बहुत खुश हुए। गुरु ने अपने शिष्यों को पहला पाठ पढ़ाया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। गुरु ने इस पाठ को बार बार पढ़ाया ताकि तोते इसे याद रखें और किसी बहेलिए के फेर में ना पड़े। तोतों ने भी इसे ठीक से याद कर लिया। एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर चले गए तो एक बहेलिया मौका देखकर वहां आ गया, किंतु उसने सुना कि हर एक तोता कह रहा है बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। वह बहुत निराश हुआ, फिर भी उसने सोचा कि उसे अपना काम करना चाहिए। उसने जाल बिछाया और दाना बिखेर दिया। इसके बाद वह जाल की डोर पकड़कर छिप गया। उसको आश्चर्य तब हुआ जब तोते एक के बाद एक दाना चुगने के लिए उतरने लगे और साथ में कह भी रहे थे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। अंत में सारे तोते बहेलिए के जाल में फंस गए और जाल के अंदर से भी कह रहे थे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। संयोग से गुरुजी वहां आ गए। वे अपने शिष्यों को जाल में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें यह देखकर क्रोध भी आ रहा था कि तोते उनकी नसीहत को जाल के अंदर से रट रहे थे। उन्होंने कीमत चुकता करके तोतों को बहेलिए से मुक्त कराया। सायं सभी तोतों को बुलाकर समझाया कि तुम्हें रटना नहीं है बल्कि वैसा करना है जैसा मैंने तुमसे कहा था। तोतों ने कहा गुरुजी हमसे गलती हो गई और हम संकट में फंस गए। अब हम वादा करते हैं आपकी शिक्षा को रटने के बजाय उसे पालन करेंगे। इसी संदर्भ मेरी दो पंक्तियां हैं। मंजिल धूमिल राह अंधेरी, लक्ष्य असंभव लगता है। मंजिल धूमिल राह अंधेरी, लक्ष्य असंभव लगता है। कर्म मार्ग पर जब तक राही कदम नहीं खुद रखता है। कर्म मार्ग पर जब तक राही कदम नहीं खुद रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कुछ करने की एक योजना बना ली, किंतु जब तक आप उसे करना शुरू नहीं कर देते तब तक आगे क्या और कैसे होगा स्पष्ट नहीं होता। एक वैज्ञानिक किसी चीज की परिकल्पना करता है किंतु उसे अपना आविष्कार तब मानता है जब उसे प्रयोग करके सिद्ध कर देता है। एक गलत सिद्धांत ज्ञान नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन जो भी सोचते थे उसे स्वयं करके देखते थे। इसी वजह से वे बिजली के बल्ब का आविष्कार ही नहीं अपितु सैकड़ों पेटेंट हासिल करने में सफल हुए। उनके बचपन की एक घटना बहुत ही प्रचलित है। एक बार बालक एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है माँ। माँ ने बताया कि वह अंडों से चूजे निकालने के लिए उन्हें गर्म करती है बेटा। ऐसा सुनकर उनके मन में प्रयोग की इच्छा हुई और वे कुछ अंडे इकट्ठा करके एक खाली घोंसले में खुद बैठ गए। परिणाम तो आप सोच सकते हैं कि क्या निकला होगा, किंतु इस प्रवृत्ति ने उन्हें महान बना दिया। जो व्यक्ति ज्ञान को या ज्ञान अर्जन करने के लिए इच्छा करता है, तीव्र इच्छा के साथ ज्ञान अर्जन करता है और उसको अपने आचरण में उतार लेता है वही व्यक्ति महान बनता है। जिनकी कथनी और करनी एक होती है वही महापुरुष होते हैं। जो केवल गाल बजाते हैं उन पर लोगों का अंततः विश्वास उठ ही जाता है।
वे मजाक।

0: सुनकर रह जाते। गांधी जी किसी सलाह को देने से पहले उसका स्वयं पालन करते थे। उन्होंने सूत कातने की अपील की तो चरखा खुद चलाया। उन्होंने सलाह दी कि हर किसी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए तो झाड़ू लगाने से रसोई तैयार करने तक का कार्य स्वयं किया। योग बहुत बड़ी विद्या है, किंतु उसकी कीमत तब है जब उसका अभ्यास किया जाए। उससे संबंधित गूढ़ से गूढ़ जानकारी मात्र का कोई मतलब नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को ज्ञानार्जन के साथ में उसे आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करके जिंदगी जीना चाहिए, तब जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त होता है और सफलता मिलती है।
1: जीवन में उतारना ही ज्ञान का मूल्य है। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे रमेश चंद्र तिवारी की ये वार्ता, और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। आप प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रश्मि त्रिपाठी की गाई चंद।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में श्रोता आनंद दे रहे हैं रश्मि त्रिपाठी की गाई गजलों का। और कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे हैं इन्हीं की आवाज में अबरार कितरपुरी का लिखा ये कलाम।

सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में श्रोता आनंद दे रहे थे रश्मि त्रिपाठी की गायी चंद गजलों का। आपके साथ संगत करता थे तबले पर प्रखर प्रताप सिंह, हारमोनियम पर ऋषभ शुक्ला, गिटार पर सरबजीत सिंह मारवा और कीबोर्ड पर अरविंद कुमार वर्मा। और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के गीत के, बोल लिखे हैं संजय चहले और संगीत एडिशन है जतिन ललित का।

0: मिस्टर बेचारा फिल्म के संगीत के साथ ही चटपट संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
2: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
3: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
2: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
4: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
2: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
5: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी

0: से काम करते हैं।
1: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
3: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
4: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उपप्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा

0: किसानों के बीज दी जानी चाहिए।
1: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में झुमरू फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं किशोर कुमार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आरती फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं रोशन।

अगला गाना हमने लिया है रागिनी फिल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारीकर लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम किस्मत।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार की बोल और आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम परिचय।

है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्या हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की।

से छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं, अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामी बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: मेरी पसंद मीडिया वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं और अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन खेलों का बड़ा योगदान होता है। यूं तो भारत में खेलों के कई प्रकार सदियों से प्रचलित रहे हैं और आज जिन आधुनिक खेलों को हम देखते हैं वे हमारे पारंपरिक खेलों का ही बदला हुआ स्वरूप है। कैसे हमारे पारंपरिक खेल परिवर्तित होकर नए कलेवर में बदल गए, बता रहे हैं आलोक सिंह।
2: प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा थी, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे अपने गुरु के साथ जंगलों में आश्रम में रहते थे। वहां इन बालकों को वेदों आदि के अध्ययन के साथ ही विभिन्न शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। इनमें प्रमुख घुड़सवारी, तलवारबाजी, शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। पहलवानी, भाला फेंक, योगासन आदि थे। इन खेलों का उद्देश्य बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही युद्ध के लिए तैयार करना था। यही पारंपरिक खेल आज वर्तमान युग में आकर्षक एवं मनमोहक कलेवर में है। पहले का घुड़सवारी आज हॉर्स राइडिंग, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, पहलवानी, कुश्ती, योगासन, जिम्नास्टिक तथा भाला फेंक, एथलेटिक्स आदि पारंपरिक खेल नए अवतरित रूप में है हमारे बीच में। पहले यहाँ अखाड़ों में पहलवानों का जमघट शक्ति प्रदर्शन के लिए लगाया जाता था, वहीं आज कुश्ती की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे अधिक तो जिम्नास्टिक ने अचंभित किया है, कैसे कैसे ये पारंपरिक योग एक खेल के रूप में ढल गए। पहले जहां योग आसनों से शरीर को स्फूर्ति एवं लचीला बनाया जाता था, वहीं आज का जिम्नास्टिक लचीलेपन तथा ग्लैमर का मिश्रण हो गया है। तीरंदाजी जहां पहले शिकार करने एवं युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने के काम आती थी, वहीं आज यह डार्ट पर निशाना लगाने के लक्ष्य किया जाता है। आज का पोलो भी पारंपरिक राजघरानों का मनपसंद खेल था, तब इसकी स्टिक एवं गेंद में काफी अंतर था। डिस्कस थ्रो एवं हाई जंप भी पारंपरिक खेलों का नया अवतार है। भारत में सदैव ही खेल प्रेमी रहा है। यहाँ खेलों का जुनून ऐसा है कि उचित साधन न होने पर भी लोग अपने पास से उपलब्ध साधनों से ही खेल का मजा ले लेते हैं। कुछ एक पारंपरिक खेल उचित ध्यान न मिलने से बहुत ही निम्न दशा में है। ऐसे खेल जो गाँव की गलियों से निकलकर शहरों तक पहुँचे हैं, इनमें कबड्डी मुख्य है। पश्चिम का क्रिकेट भारत की गिल्ली डंडे से काफी मिलता है। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ खेलों के स्वरूप बदलते गए। भले ही आज इनका उद्देश्य भिन्न हो, परंतु इस प्रकार से हमारे पारंपरिक खेल संरक्षित तो हैं, परंतु आवश्यकता है आज भी इसके उचित संरक्षण की। भारतीय पारंपरिक खेल का एक अति उज्जवल समय था, तब इसी कारणवश भारत का वर्तमान खेल परिदृश्य इतना सुदृढ़ बन पाया, पर यह प्राचीन खेल की नई पीढ़ी का संज्ञान में तो है।
1: श्रोताओं, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाता है तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए पदक हासिल करता है और अपने देश का गौरव बढ़ाता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में, जिसमें भारत ने कुल 39 पदक जीतकर विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
3: राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम दुनिया का एक प्रमुख बहु खेल आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। इन खेलों की सबसे पहली अवधारणा 1891 में एस्टली कूपर ने सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसका पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ, जिसकी नींव खेल पत्रकार मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने रखी थी। पहले संस्करण में 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में भाग लिया था। समय के साथ इन खेलों के नाम चार बार बदलाव किए गए।

साल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। 1954 से 1966 तक इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया, लेकिन 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी इसी नाम से चल रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन है जहां पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की तर्ज पर इन खेलों में 1958 से बंकिंगम पैलेस से क्वीन वेटम रिले की शुरुआत की गई थी। यह खेल प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन बन चुका है, जिसमें ओलंपिक और एशियाई खेलों की तरह हर 4 साल में दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल नवाचार और लैंगिक समानता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इन खेलों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा खेल भावना को बढ़ावा देना भी है। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और अन्य खेल शामिल होते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो वे क्षण केवल खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का क्षण बन जाता है। ऐसे ही गौरवपूर्ण क्षण को बार बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में प्राप्त किया है। भारत को पहली बड़ी सफलता 1934 के खेलों में मिली, जब भारतीय पहलवान रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतकर पहला पदक दिलाया। यह भारतीय खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था। भारत को अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए 1958 में वेल्स के कार्डिक में आयोजित खेलों के महान धावक 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवानों ने हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। निशानेबाजी में भी भारत ने विश्व स्तर की पहचान बनाई और अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में रही। पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली को इन खेलों की मेजबानी मिली। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यह आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2010 के बाद से भारत में खेल संस्कृति को नई गति मिली। भारत में खेलो इंडिया के कारण भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा मिली। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान प्राप्त किया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेलों को हटाए जाने के कारण यह आयोजन भारत के लिए काफी सीमित था। इसके बावजूद भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का ये 4th स्थान रहा। सीमित खेलों के बावजूद 2026 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के खेल कौशल, विविधता और उभरती नई प्रतिभाओं के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में प्रतीकात्मक राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। इसे भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्राप्त किया। अब यह झंडा मशाल गुजरात पहुंच चुके हैं, जिससे शताब्दी संस्करण अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2030 के आयोजन में भारत को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत होगी। विभिन्न खेलों के अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और पर्यटक भारत आएंगे। इससे भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और अतिथि देवो भव का भाव व्यापक प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से होटल उद्योग, खेलों से जुड़े निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी

0: मौजूदगी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय उद्योग व छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: श्रोताओं, प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में ओलंपिक खेलों का विशेष स्थान है, जिसमें दुनिया भर के खेल महारथी भाग लेते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों में जीता हुआ एक पदक खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और इन खेलों का आयोजन अपने देश में होना अर्थात ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना किसी भी देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का अवसर देता है। क्या भारत वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अपना दावा पूरा करने में समर्थ होगा? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के लिए अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना गर्व और सम्मान की बात है। भारत में इस मिशन ओलंपिक 2036 की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं शरद श्रीवास्तव।
2: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इन खेलों के आयोजन के लिए किसी देश के दावे को स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब समिति उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, वहां के सुदृढ़ खेल ढांचे और इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कर पाने की उसकी योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अवसर एक राष्ट्र की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। वर्ष 2036 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए भी भारत के अलावा इंडोनेशिया और टर्की भी दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों के मुकाबले भारत का दावा कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2030 तक इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजबानी का फैसला करते समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक और पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है कि दावेदार राष्ट्र की सामान्य जनता ओलंपिक आयोजन को लेकर कितनी उत्साहित है। इस कसौटी पर भी हमारा देश पूरे अंक हासिल करता है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर नागरिक ओलंपिक आयोजन को लेकर बेहद उत्सुक, सजग और उत्साहित है। हर्ष का विषय है कि हमारे अहमदाबाद शहर को वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, और यह विशाल आयोजन एक प्रकार से ओलंपिक 2036 की मेजबानी का पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। इन दिनों अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह नए खेल परिसरों का निर्माण हो या फिर आवागमन और रिहायश सुविधाओं का विस्तार, ये सारे कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि राष्ट्रमंडल खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। गौर करने की बात यह भी है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी करके भारत पूरे विश्व को यह संदेश देने में भी कामयाब होगा कि वह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हो चुका है। यह दोनों आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन अब गुजरात का अहमदाबाद शहर देश में खेल संस्कृति के नए केंद्र के रूप में दुनिया के सामने आने जा रहा है। जैसा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित करने को प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व वर्ष 2029 में अहमदाबाद में ही यूथ ओलंपिक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें विश्व भर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। यूथ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दृष्टिगत इन दिनों अहमदाबाद और उसके निकटवर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर निर्माण और विस्तार कार्य जारी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण और विकास, जो कि आने वाले वर्षों में गुजरात प्रांत के खेल ढांचे की आधारभूत संरचना बनने वाला है। इस विशाल परिसर में विभिन्न खेलों के मैदान, टेनिस कोर्ट, प्रशिक्षण केंद्र और खेल गांव समाहित होगा। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रमंडल खेलों के संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार साबित होंगी, और इनमें विस्तार तथा नवीनीकरण करके इन्हें ओलंपिक 2036 के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी काफी दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि

0: युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी यह प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से मेजबान शहर या देश में नए स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का एक ऐसा विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध हो जाता है जो कि खिलाड़ियों की आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसे विश्व स्तरीय आयोजनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं है। रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में इन आयोजनों का विशेष लाभ मिलता है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक अनुमान के अनुसार अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20,000 अतिरिक्त होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि 2030 तक इस क्षेत्र में होटल सुविधाओं का विस्तार होना अनिवार्य है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर जाती है और भविष्य में उसके लिए इस प्रकार के अन्य आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का रास्ता भी खुल जाता है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस गंभीरता का ही परिणाम है कि हमारे देश का खेल बजट वर्ष 2014 तक मात्र 800 करोड़ रुपए का था, जो कि आज 3,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व स्तर की स्पर्धाओं के अपने देश में आयोजन का प्रभाव खिलाड़ियों की सफलता और प्रदर्शन पर भी पड़ता है, क्योंकि अपनी धरती पर अपने दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है और वे मैदान में जाकर बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाते हैं। 1978 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने कुल 28 पदक जीते थे, लेकिन इसके चार वर्ष बाद वर्ष 1982 में जब यह स्पर्धा नई दिल्ली में हुई तो भारतीय एथलीटों ने इसके दोगुने से भी ज्यादा कुल 57 पदकों पर कब्जा जमाया, जिनमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने 50 पदक जीते थे, लेकिन चार वर्ष बाद 2010 में जब यह स्पर्धा भारत में हुई तो हमारे एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक जमा दिया और कुल 101 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर हासिल होता है तो इन खेलों के सफल आयोजन के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में तो निखार आएगा ही, साथ ही हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए भी सर्वोच्च स्तर पर अपने जौहर दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व के इस सबसे बड़े खेल मंच पर पदकों का अंबार लगाकर हमारे खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
1: और श्रोताओं, अब खेल की सुर्खियों के साथ हैं विजय यादव।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भारत की तीन जोड़ियां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गईं। ये तीन जोड़ियां थीं पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानु शाह, महिला युगल में दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े तथा मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले। एकल रैंकिंग में मानव ठक्कर 38वें स्थान पर भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि मानुष शाह उनसे दो पायदान पीछे 40वें स्थान पर और मनिका बत्रा नंबर 51 पर भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ी बनी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन को 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया था। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी एशियाई खेल 2026 से ठीक दो महीने पहले हुई है, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागाया में होने वाले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि टेबल टेनिस के पावर हाउस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ियों की चुनौती तोड़कर भारतीय खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करके 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। चंद्रिका भोरेस पुजारी 51 किलोग्राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोगत मार्डोनोवा को 5-0 से हराकर, जबकि प्राची ने इंडोनेशिया की द्रा अर्टिका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 19 में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही

संतोष करना पड़ा। अंडर 23 महिला वर्ग में भी भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। निशा ने 54 किलोग्राम भार में जापान की कोइन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान में हुए जापान ओपन मुकाबलों में टोक्यो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। उन्होंने आक्रामक खेल के दम पर मेजबान खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस सुपर 750 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गयी। 31 वर्षीय सिंधु ने लगातार आक्रमण के साथ साथ बेहतरीन प्लेसमेंट और अहम पलों में संयम रखते हुए 3 बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच का इकलौता गोल फॉरेन टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। इस बार स्पेन ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि व्यक्तिगत अवार्ड्स पर भी अपना दबदबा कायम रखा। टीम के कप्तान और मिडफील्ड के मास्टर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना सके लेकिन उन्होंने 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। इसके साथ ही वह लगातार दूसरी बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 7 क्लीन शीट रखी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को गोल खाने से बचाया। उन्हें गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप के समाप्त होने के तुरंत बाद खेल प्रेमियों के लिए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2 अगस्त तक हुआ। इस बार इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक शुभंकर फिन्नी द यूनिकॉर्न बनाया गया। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 10 खेलों को ही शामिल किया गया था जबकि पिछली बार इसमें कुल 19 खेल थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थे। बर्मिंगम 2022 में भारत ने इन्हीं खेलों में 30 मेडल जीते थे। बर्मिंगम 2022 में 210 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जबकि ग्लासगो में कुल 125 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे। ऐसे में इस बार का प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत के लिए 7 स्वर्ण समेत सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में आए जबकि एथलेटिक्स ने भी हमें कुल 10 पदक जिताए। भारोत्तोलन में 8, जूडो में 4 और पैरा खेलों में कुल 7 पदक मिले। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हमारे हाथ खाली रहे जबकि नेटबॉल और बास्केटबॉल में हमारे देश से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं गया था। बास्केटबॉल के महिला व्हीलचेयर इवेंट में जरूर हमारी टीम थी लेकिन ये टीम एक भी मुकाबला जीते बिना ही पहले चरण से बाहर हो गई। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में सर्वेश कुमार ऊंची कूद, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर, श्री शंकर मुरली लंबी कूद, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप ने चांदी जीती जबकि गुलबीर सिंह 5,000 मीटर, सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, यशवीर सिंह भाला फेंक, तेजस्विनी शंकर डिकातलान और सीमा कालीरमण चक्का फेंक ने कांस्य पदक जीते जबकि 14 मुक्केबाजों में से साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस, अरंधुति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंधाल ने सोना जीता जबकि नरेंद्र बरवाल, जादूमणि सिंह, लवलीना बोर गोहाई ने चांदी जीती। 14 सदस्यों वाले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता जबकि यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 12 सदस्यों वाले भारोत्तोलन दल में मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह ने स्वर्ण जबकि राजू मुत्तु पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह ने रजत पदक और विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनगढ़ ने शॉर्टपुट F57 में स्वर्ण जबकि मोहम्मद बासिल 100 मीटर T47 में रजत पदक के विजेता रहे। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार और महिला शॉर्टपुट F57 में शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया 166 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 61 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान की रेस में भारत ने बाजी मारी। भारत ने 39 पदक हासिल किए जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा।
जबकि स्कॉट

0: स्कॉटलैंड ने कुल 13 पदक और नाइजीरिया ने 10 पदक जीते। भारत का माइपे ओपन में 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिन्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आई। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली योंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 2006 में मेंस डबल्स के फाइनल में खेलते समय 17 साल 287 दिन के थे। इसके अलावा तन्वी एशियाई टीम चैंपियनशिप का इकलौता खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी रह चुकी हैं। श्रीलंका के गाल में चल रहे विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 5 दिन अभ्यास किया और 3 दिन अभ्यास मैच खेला, जिसका फल उसे गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 165 रन की जीत के रूप में मिला। 372 रनों के असंभव लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान धनंजय डिसिल्वा 59 और पिछले मैच के शतकवीर सोनल दिनुषा 84 ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके भारतीय आक्रमण को रोकने की कोशिश की। पहले कप्तान और उसके बाद डिकवेला के आउट होते ही मानव सुथार ने यहां श्रीलंकाई किले को ऐसे ध्वस्त किया जैसे 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने गाल फोर्ट को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका के विरुद्ध भारत को मिली शानदार जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बूस्टर डोज का काम किया है। श्रीलंका पर जीत के बाद भारत की जीत का प्रतिशत बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि अंक तालिका में भारतीय टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 5वें स्थान पर भी है। इस जीत से पहले भारत का जीत प्रतिशत 48.15 था। इस जीत ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जरूर मजबूती मिली है। विश्व कप हॉकी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर अभिषेक के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक दशक लंबा अजेय अभियान जारी रखते हुए FIH विश्व कप के पूल डी के हाई वोल्टेज मुकाबले में 5-3 से जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभियान ही समाप्त हो गया है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के संक को यहीं विराम। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे OP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जी पीजीआईएमएस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए शरद कुमार का राग मारू विहाग में शहनाई वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शरद कुमार का रागमारू विहाग में शहनाई वादन। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित

0: किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries.